FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 की वैसाख मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 16 मई सन 2026। इस वक्त प्रातः की 5:57 हुई हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

FM बैंड 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस वक्त सुबह की 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। विदेश मंत्री तोम बेरेंटसेन ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। 2 दिन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और महामहिम राजा और महारानी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री प्रवासी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच विशेष रूप से सेमीकंडक्टर चिप और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। नीदरलैंड्स इन क्षेत्रों में विश्व का अग्रणी देश है। नीदरलैंड्स भारत का प्रमुख आर्थिक साझेदार और यूरोप में 3रा सबसे बड़ा निर्यात स्थल है। दोनों देशों के बीच 2024-25 में 27 अरब 80 करोड़ डॉलर का व्यापार

0: हुआ था। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात यूएई की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबूधाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर
0: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, एआई सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार करना आसान बनाने और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 23 रुपये से घटाकर 16.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। एविएशन टर्बाइन फ्यूल ATF पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। उम्मीदवारों और अभिभावकों से केवल NTA के आधिकारिक माध्यमों पर ही भरोसा करने का अनुरोध किया गया है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जांच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की यह पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले और केंद्रीय पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। IPL क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: अभी आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 6:05 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं भक्ति संगीत के कार्यक्रम आराधना का। आराधना में आइए सबसे पहले करें अपनी मातृभूमि को नमन इस देश वंदना के साथ।

समूह स्वर में अभी आपने सुनी देश वंदना। आइए अब करें ईश वंदना सोनू निगम के गाए इस शिव भजन के साथ।

सोनू निगम की आवाज़ में अभी आप सुन रही थी शिव भजन। आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। इसी कड़ी में आइए अब सुनते हैं राम भजन अनूप जलूटा की स्वर में।

अनूप जलोटा के स्वर में अभी हमने सुना राम भजन। आइए अब सुनते हैं अगली भक्ति रचना बनी सचदेवा की स्वर में।

सुधा मल्होत्रा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये भक्ति रचना, और इस भक्ति रचना के साथ ही आज की आराधना यहीं संपन्न होती है।

0: कार्यक्रम आराधना FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस वक्त सुबह की 6:30 हुए हैं। समय हो चला है श्रोताओं कार्यक्रम खेती की बात का। इसमें आज जानकारी दी जाएगी ग्रीष्मकालीन रमकेरिया के उन्नत खेती के बारे में। जानकारी दे रहे हैं त्रिलोकी सिंह क्षत्रिय।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। खेती की बात में आज बात करबो ग्रीष्मकालीन रमकेरिया के उन्नत खेती। वैसे तो रमकेरिया साल भर उगाए जाए वाले फसल है संगवारी हो, और एकरे सेती 12 महीना बाजार में ओखर मांग रही थे। रमकेरिया में फाइबर, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम और अबड़कन खनिज और पोषक तत्व पाए जाते। रमकेरिया के खेती के हम बात करी तो वैसे तो यह जम्मो प्रकार के माटी में उगाए जाते, रेतीलहा और चिकनी माटी जेमा जीवाश्म रहे, बढ़िया जैविक तत्व भरपूर रहे। खास बात यह है कि जिन भूया में रमकेरिया के खेती करना है ओखर जल निकासी के व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए। भूया के pH मान 6 ले 6.5 होना चाहिए। बीजा के जहाँ तक बात करथन संगवारी हो, उन्नत किस्म के रमकेरिया के बीजा हैं पूसा महाकाली, परभनी क्रांति, पूसा सवानी, अर्का अनामिका। जमीन के तैयारी के बात करी तो सबसे पहली जमीन ला 5 ले 6 फीट बढ़िया गहरा जुताई कर लें। जमीन ला समतल कर लेना है और भुरभुरा कर लेना है, ज्यादा ढेला माटी झन रहे, बढ़िया वाला छोटे छोटे कर लेना है। जुताई के आखिरी समय में कम से कम 100 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब ले बढ़िया सरे हुए गोबर के खातू ओमा मिला देना है। बीजोपचार करे के बाद में फसल ला जब लगाना है तो पंक्ति के पंक्ति जो मादा ले मादा के फासला है वो 45 सेंटीमीटर और पौधा ले पौधा के जो दूरी है 15 ले 20 सेंटीमीटर रखना चाहिए। और बीजा जो लगाना है वो जो है 1 ले 2 सेंटीमीटर गहराई में बोना चाहिए। बीजा के मात्रा के हमन बात करी 5 ले 6 किलो प्रति एकड़ भर बीजा के जरूरत पड़ते। बीजोपचार भर बीज ला कार्बेंडा जिम ले उपचार कर लेना बहुत जरूरी है। उपचार करे बार बीज का 2 ग्राम कार्बेंडा जिम घोल प्रति लीटर पानी में मिला के 6 घंटा तक के बोर के रखना है बीज हला। तेखर पाछू छाव में बढ़िया ढंग ले वाला सुखो लेना है और तहाँ फिर वाला बुआई करना है। खाद के प्रयोग सॉइल हेल्थ कार्ड बनवाए हुआ जरूर तो ओखर प्रयोग करके माटी के परीक्षण करके विशेषज्ञ मन जौन प्रकार ले आप मन बताते ओखरो आप मन प्रयोग कर सका था। शुरुआती तौर में खाद के प्रयोग 120 ले 150 क्विंटल सरे हुए खाद भिंडी के फसल पर नाइट्रोजन 36 किलो 80 किलो यूरिया प्रति एकड़ में प्रयोग करे जा सके। नाइट्रोजन की आधा मात्रा बिजाई के समय और बाकी आधा बचे मात्रा जो उन्हें पहला तोड़ाई के बाद डालना चाहिए। खरपतवार ला बीच बीच में चेत रखना है, ओला निकालत रहना है, खरपतवार ला बाढ़े नहीं देना है। और खरपतवार ज़्यादा हो जाते तो उमा उत्पादन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ते। सिंचाई की हम बात करी संगवारी हो तो ये है निर्भर करते कि माटी कितना है। माटी अगर बढ़िया है तो गर्मी में 4 ले 5 दिन के बाद सिंचाई जरूर करना चाहिए। रही बात पौधा मन के रोकथाम के हानिकारक कीट ले रोकथाम करना है तो शाखा उफल्ली के जो उन कीट है एकर विकास के समय शाखा में पैदा होते जो उन हमला करते जेकर से शाखा सूख के सड़ जाते और बाद में फल में भी ये अपन मल भर देते। तो ऐसा पौधा दिखे तो पौधा मन ला उखाड़ के या काट के नष्ट कर देना है। यदि एकर संख्या ज़्यादा है तो स्पाइनोसाइड 1 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से प्रति एकड़ के हिसाब ले 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करके एकर रोकथाम कर सकत हो। फल के तोड़ाई सुबह और शाम के समय करना चाहिए। तोड़ाई में देरी से रमकेरिया में रेशा भर जाते और एकर कच्चापन और स्वाद भी चले जाते। तो आज की खेती के बाद यह सिरावत है। राम राम, जय जोहार।
0: ग्रीष्मकालीन रमकेरिया की उन्नत खेती, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस वक्त सुबह की 6:35 हुए हैं। आइए श्रोताओं अब आनंद लेते हैं श्री रामचरित मानस गान का।

मुख्य गायन स्वर हैं शोभा जोशी के, संगीत संयोजक हैं सतीश भाटिया। 8-1

जनकपुर में सीता स्वयंवर में उपस्थित होने के लिए मुनि विश्वामित्र श्री राम, लक्ष्मण तथा अन्य शिष्य ऋषियों के साथ राजा जनक की नगरी पहुंचे। सबने स्नान, पूजा, भोजन आदि के बाद विश्राम किया। एक पहर दिन शेष था जब लक्ष्मण जी के मन में नगर देख आने की लालसा जगी, किंतु गुरु विश्वामित्र तथा बड़े भाई राम के सामने अपनी इच्छा प्रकट करने में उन्हें संकोच हो रहा था। अंतर्यामी श्री राम ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। गुरुदेव से लक्ष्मण के संकोच की बात कहकर उन्होंने उन्हें नगर दिखा लाने की आज्ञा मांगी और दोनों भाई नगर देखने चले। श्याम और गौर वर्ण वाले इन दो ऋषि कुमारों का आकर्षक रूप देख नगर के बालक झुंड बनाकर इनके पीछे हो लिए। इस मनोहारी जोड़ी ने पीले रंग के वस्त्र धारण किए हैं, कमर में लिपटे दुपट्टों में तरकश बंधे हैं और हाथों में धनुष वाण सुशोभित हैं। सिंह के समान पुष्ट ग्रीवा, विशाल भुजाएं, चौड़ी छाती पर राजमुक्ता की माला, सुंदर लाल कमल के समान नेत्र, जो भी ये रूप देखता है ठगा सा खड़ा रह जाता है।

0: शोभा जोशी के स्वर में अभी आप आनंद ले रही थी श्री रामचरित मानस गान का। संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 6:45 हुए हैं। समय है चिंतन का। आज का विषय है मनोबल। आलेख है श्री हरि प्रकाश वत्स का।
1: एक बार की बात है, पाकिस्तान से लूटे हुए दो व्यक्ति एक नगर में आए। वे फटे हाल में थे, उनके हाथ में पैसा भी नहीं था। एक कहता, मेरा सर्वस्व लूट गया, मेरी आलिशान इमारतें थीं, बड़ा कारोबार था, अनेक नौकर चाकर थे, शहर में बड़ी प्रतिष्ठा थी, अब सब कुछ लूट गया, मेरे बच्चों का क्या होगा, कोई मेरी सहायता करो। दूसरा कहता, मेरे मित्र, मेरे पास भी ये सब कुछ था, पर मुझमें वो मनोबल है जिसके कारण मैं फिर हिंदुस्तान में भी वही इज्जत पैदा करूंगा जो पाकिस्तान में थी। इस दूसरे व्यक्ति को किसी ने मुफ्त ही अपने यहां एक कमरा दे दिया। उसने अखबार बेचने का व्यवसाय किया। वो सारे दिन लगाता कमीशन पर अखबार बेचता। उसकी लगन देखकर उसके मालिक ने कमीशन बढ़ा दिया। फिर उसने दो चार अखबारों की एजेंसी ले ली। पुस्तकें बेचने का काम भी शुरू कर दिया। किराए पर उपन्यास भी पढ़ने को देने लगा। जमीन बेचने की दलाली का काम भी हाथ में ले लिया। 15 वर्षों बाद वो उस शहर का एक मालदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति गिना जाने लगा। मजबूत मनोबल के कारण हम बड़ी बड़ी मुसीबतें, हानि, संबंधियों की दुखद मृत्यु, नौकरी छूटना आदि बिना हानि के सहन कर लेते हैं। जिनके पास मनोबल का अभाव है, वे दिल के धक्कों से मानसिक आघात न सह सकने के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं। पहले छोटे कार्य, मामूली व्यापार, साधारण नौकरी से महान कार्य आरंभ करें। इनमें सफलता पाने से उत्तरोत्तर मनोबल बढ़ता रहता है। सफल व्यक्तियों ने किसी विशेष दिशा में जो अद्भुत सफलता प्राप्त की है, उसका कारण उनकी रुचि, इच्छा, लगन और श्रमशीलता का सतेज होकर अभीष्ट मार्ग में संलग्न होना ही रहा है। मन की मजबूती, स्थिरता, संतुलन और अपनी शक्तियों के प्रति पूर्ण विश्वास, अर्थात लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निरंतर बढ़ते चलने की दृढ़ता का यदि समुचित रीति से विकास किया जाए तो अंत में सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन एक संग्राम है जिसमें विजय केवल उन्हें ही मिलती है जिनमें दृढ़ और उन्नत मनोबल होता है और जो अपने निहित पराक्रम और पौरुष की उत्कृष्टता सिद्ध करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो पर मनोबल न हो तो आदमी मानसिक आघात से अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। अविकसित मनोबल के कारण हमारी योजनाएं सफल नहीं होती। हमारा मन हारा रहता है तो शरीर भी हारता है और व्यक्ति पराजित होता है। जिंदगी में मुसीबतों को परास्त करने का आधार है व्यक्ति का मनोबल। प्रत्येक सफलता मनुष्य का मनोबल बढ़ाती है पर क्रिया क्षेत्र में यह बात सदैव संभव नहीं है। संघर्ष करते हुए सफलता के साथ असफलता भी मिल सकती है, आशा के साथ निराशा भी मिल सकती है। मनोबल की परीक्षा का यही समय होता है। मनोबल टूटने नहीं देना चाहिए। इसलिए यह जरूरी है कि सफलता की आशा रखें पर साथ ही में असफलता के समय धैर्य भी रखें। किसी भी अवस्था में मनोबल क्षीण न हो तो रुका कदम रुका नहीं रहता। निराशा आशा में बदलती है और हारी बाजी फिर से जीत में बदल जाती है। पहले छोटी इच्छाएं करें और उन्हें संकल्प का रूप दें। एक संकल्प पूरा होगा तो आपका मनोबल बढ़ेगा, उत्साह और उल्लास बढ़ेगा। क्रमशः अपने संकल्प का स्तर बड़ा बनाइए और इस प्रकार अपने मनोबल को और भी ऊंचा उठाते चले जाइए। पर याद रहे कि संकल्प टूटना नहीं चाहिए, अन्यथा मन में निराशा उत्पन्न होगी और मानसिक क्रिया शक्ति को छिन्न भिन्न कर देगी।

मनोबल इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन। आलेख था श्री हरि प्रकाश वत्स का। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं। ये समय होता है श्रोताओं आपको कार्यक्रम संबंधी जानकारी देने का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण।

आइए श्रोताओं, अब हम आपको आज प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज सुबह 8:30 पर सुनिएगा समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह बातों बातों में। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9:00। ये दोनों ही कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह सुनिएगा, सुबह 7:05 पर। सदाबहार नगमे फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगी सुबह 7:30 पर। दिन में 10:00 का समय होगा छत्तीसगढ़ी लोक गीतों के कार्यक्रम अमराई का। इसमें आज के कलाकार होंगी रामेश्वर खांडे, राम नारायण ध्रुव और साथी। कार्यक्रम नए तराने का आनंद लीजिएगा दिन में 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट का प्रसारण किया जाएगा संध्या 5:00। कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुनी आज आप सुन सकते हैं संध्या 5:35, 6:20 और संध्या 7:00।

संध्या 7:20 पर चलेंगी ग्राम सभा की ओर। इसमें बेरा के गोट में चर्चा होगी प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना और मौसम ऐप और किसान पर। कार्यक्रम किसान वाणी का समय होगा 7:30 पर। इसमें आज की बात का विषय होगा पुष्प विकास कार्यक्रम, साथ ही सुनेगा टिश्यू कल्चर किले की उन्नत खेती विषय पर कार्यालय उपसंचालक उद्यान सरकंडा बिलासपुर की ग्रामीण विस्तार अधिकारी श्रीमती वंदना एक्का से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता होंगी कजरी बहनी। रात्रि 8:00 गायक शंकर महादेवन के गाए गीतों का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत में। कार्यक्रम रजनीगंधा का प्रसारण किया जाएगा रात्रि 8:15 पर। आकाशवाणी दिल्ली और आकाशवाणी रायपुर से समाचार अपने निर्धारित समय पर अनुप्रसारित किए जाएंगे।

हम आपको एक बार और बता दें श्रोताओं कि कार्यक्रम किसान वाणी में आप सुनेंगी आज की बात, जिसका विषय होगा पुष्प विकास कार्यक्रम। साथ ही सुनेगा टिश्यू कल्चर केले की उन्नत खेती विषय पर कार्यालय उप संचालक उद्यान सरकंडा बिलासपुर की ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी श्रीमती वंदना एक्का से ली गई भेंट वार्ता। भेंट करता हूँगी कजरी बहनी।

0: दलेन सप्तदशैव क्षेपणचक्रेषु सम्प्राप्तम्। यत्र केवलम् अष्टत्रिंशत् कन्दुकेषु मिचेल् मार्शल् इत्यस्य नवतिधावनाङ्कानां भूमिका निर्णायिका अभवत्। मार्शः उत्तमक्रीडकत्वेन पुरस्कृतः इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कल रात नीदरलैंड्स पहुंचे। नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने हेमस्टरडम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस यात्रा का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। हेग में प्रवासी भारतीय समुदाय ने सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। डच सैनिकों ने भी उनका औपचारिक रूप से अभिनंदन किया। यात्रा के तीसरे चरण में प्रधानमंत्री कल स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ किस्टन्स के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लाइन के साथ यूरोपीय राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संबोधित करेंगे। ये यूरोप का करीब 60 सबसे बड़ी औद्योगिक और तकनीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अध्यक्षों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का मंच है। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया के साथ मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के लिए भारत का समर्थन दोहराया। उन्होंने क्षेत्रीय स्थिरता के साथ साथ वैश्विक ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के लिए इसके महत्व पर बल दिया। अबू धाबी में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ उच्च स्तरीय वार्ता के बाद श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक संघर्ष के वर्तमान दौर में संवाद और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है।
2: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी का प्राथमिकता दी है। होर्मुज को फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखना ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में यूएई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा।
1: भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एलपीजी आपूर्ति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर निर्माण, रणनीतिक रक्षा साझेदारी, निवेश और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोलियम के निर्यात पर ₹3 प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹23 से घटाकर ₹16.50 प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को ₹33 प्रति लीटर से घटाकर ₹16 कर दिया गया है। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जाँच कर रही है। सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई

0: 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन गंगटोक में मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह।

श्रोताओ नमस्कार, लीजिए हाजिर हैं हम आपका अपना पसंदीदा सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह लेकर, और मैं हूँ आज आपके साथ आपकी रेडियो मित्र पुष्पा साव। करती हूँ आप सभी का वंदन और अभिनंदन।

श्रोताओं, जेठ की तपती दोपहरी के बीच जब धरती प्यास से तपने लगती है, जब कहीं किसी गांव के चौपाल में, किसी मंदिर के आंगन में एक विशाल वटवृक्ष अपनी घनी छांव फैलाकर मानो जीवन का आश्वासन देता दिखाई देता है। उसकी फैली शाखाएं, झूलती जटाएं और शीतल छाया, जैसे प्रकृति स्वयं अपनी बाहें फैलाकर कह रही हूं, मैं हूं तुम्हारे साथ। श्रोताओं, हमारी भारतीय संस्कृति में प्रकृति केवल उपभोग की वस्तु नहीं, बल्कि पूजा और संवेदना का आधार रही है। नदियों को माँ कहा गया, धरती को देवी और वृक्षों को जीवनदाता। इन्हीं जीवनदायी वृक्षों में सबसे विशेष माना गया है वट वृक्ष यानी बरगद, जो केवल एक पेड़ नहीं बल्कि अटलता, दीर्घायु और संरक्षण का प्रतीक है। और इसी वट वृक्ष की छांव में मनाया जाता है वट सावित्री व्रत, एक ऐसा पर्व जहां आस्था के साथ प्रकृति भी पूजी जाती है, जहां प्रेम के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी छिपा होता है। श्रोताओं, वट सावित्री व्रत भारतीय नारी के अटूट विश्वास, समर्पण और साहस का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री ने सत्यवान को अपना जीवन साथी चुना, जबकि उन्हें ज्ञात था कि सत्यवान अल्पायु है। और जब यमराज उनके प्राण हरने आए, तब सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प, बुद्धिमता और अटल प्रेम से उन्हें पुनः जीवन दान दिलाया। यह कथा केवल पतिव्रता धर्म की नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और सकारात्मक शक्ति का भी प्रतीक है। और शायद यही कारण है कि इस व्रत में वट वृक्ष को विशेष महत्व दिया गया है। वट वृक्ष, जिसकी जड़ें गहरी होती हैं, जिसकी शाखाएं दूर तक फैलती हैं और जो वर्षों तक अडिग खड़ा रहता है, यह वृक्ष हमें सिखाता है कि जीवन में रिश्ते भी इसी तरह मजबूत और स्थायी होने चाहिए। श्रोताओं, आज जब पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और कटते जंगलों की चिंता कर रही है, तब हमारे ये पारंपरिक पर्व हमें फिर से प्रकृति के करीब ले जाने का काम करते हैं। वट सावित्री व्रत हमें याद दिलाता है कि पेड़ केवल ऑक्सीजन नहीं देते, वे संस्कृति देते हैं, छांव देते हैं, जीवन देते हैं।

बरगद का वृक्ष अनेक जीव जंतुओं का आश्रय बनता है। उनकी विशाल छाया राहगीरों को विश्राम देती है और उसकी लंबी आयु हमें यह संदेश देती है कि जो प्रकृति से जुड़ा रहता है वही स्थिर और समृद्ध रहता है। शायद इसी सोच के कारण हमारे पूर्वजों ने पूजा को प्रकृति से जोड़ा, ताकि श्रद्धा के बहाने ही सही वृक्ष सुरक्षित रहें, हरियाली बनी रहे और आने वाली पीढ़ियां भी शुद्ध हवा में सांस ले सकें।

तो श्रोताओं, वट सावित्री व्रत में वृक्ष की पूजा के साथ साथ वृक्ष लगाने का प्रण भी ले, उसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी ले। साथ ही एक और जिम्मेदारी ले कि सड़क पर चलते समय यातायात नियमों का पालन करेंगे, पेट्रोल की खपत को कम करने में योगदान देंगी, सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करेंगी। और अब सुनते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट उमा शंकर पांडे जी से।

0: नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमाशंकर पांडे। अब आप सुनेंगे ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर, अर्थात अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था संबंधी जानकारी। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज महिलाओं के अखंड सुहाग संबंधी वट सावित्री का पर्व है। शुभकामनाएं। आज बरगद के वृक्ष की पूजा का विधान है। महिलाएं आज सुबह से लेकर दोपहर तक जगह जगह वट वृक्ष की पूजा परिक्रमा बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ करते देखी जा सकती हैं। कहीं कहीं सड़कों के किनारे स्थित वट वृक्ष में बड़ी संख्या में पूजा अर्चना हेतु महिलाएं आती हैं। कुछ महिलाओं के साथ छोटे बच्चे भी आते हैं। चूंकि महिलाएं पूजा में व्यस्त होती हैं और सड़कों में छोटे से लेकर भारी से भारी वाहनों से सर्वथा अनजान ये बच्चे सड़कों में खेलने लगते हैं, अतः उन सभी महिलाओं से अनुरोध है जिनके साथ ये छोटे बच्चे आए हैं उनके प्रति पर्याप्त ध्यान रखें या बच्चों की देखभाल के लिए किसी को साथ मिलाएं। इसके साथ ही शहर से लेकर गांव-गांव तक सभी सड़कों में यातायात व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। मित्रों, प्रकृति की विशिष्ट कृतियों में से नारी एक है। आज के परिवेश में स्त्री पुरुष से कम नहीं है। जहां जहां पुरुष है वहां वहां नारी भी है। पुरुषों की तरह सड़कों में दो पहिया, तीन पहिया या चार पहिया वाहन ये बाखूबी दौड़ा रही हैं। इतना ही नहीं, पुरुषों के वाहन से आगे भी निकल रही हैं। निश्चित रूप से ये मानव समाज की अभिन्न अंग महिलाओं की इस उपलब्धि को देखकर हम सभी को गर्व होता है। किंतु कहीं कहीं इन महिलाओं को और भी सजग या चैतन्य होने की आवश्यकता है। कई बार दो पहिया वाहन लेकर चल रही महिलाओं की चुन्नी या साड़ी का पल्लू हवा में लहराता रहता है। यह साड़ी का पल्लू या चुन्नी के हर पल स्वयं के वाहन के पहिए में या अगल बगल से गुजर रहे किसी अन्य वाहन से अथवा बिजली के पोल आदि से उलझने की आशंका बनी होती है। एक बार नहीं, अनेकों बार इस प्रकार की गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अतः इन वस्त्रों को विशेष संभाल कर रखें, क्योंकि हवा में उड़ता हुआ लाल दुपट्टा सिर्फ फिल्मों में शोभा देता है, यथार्थ जीवन में ये घातक है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये तो था आज का ट्रैफिक अपडेट। इसका पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं आज दिन में 10:30 से 11 के बीच। साथियों, आकाश जितना विशाल हो जाए, तकनीक जितनी तेज हो जाए, लेकिन इंसान के दिलों के बीच अगर दूरी बढ़ जाए तो विकास अधूरा रह जाता है। आज की भागती दौड़ती इस दुनिया में जहां छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट रहे हैं, सोशल मीडिया की बहस मन में कटुता भर रही है, और मैं सही हूं कि होड़ हम साथ है की भावना को पीछे छोड़ती जा रही है। ऐसे समय में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, यानी साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, हमें याद दिलाता है कि शांति केवल युद्ध का ना होना नहीं, बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करना, समझना और सम्मान देना भी है। श्रोताओं, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मनाया जाने वाला यह दिवस हमें सिखाता है कि भाषा, धर्म, संस्कृति, विचार या रहन सहन अलग हो सकते हैं, लेकिन इंसानियत का रंग हमेशा एक ही होता है। कभी सोचिए कि एक ही मोहल्ले में रहने वाले लोग एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, दुख में कंधा देते हैं और खुशी में साथ मुस्कुराते हैं, तो वही समाज सबसे मजबूत बनता है। आज जब दुनिया तनाव, युद्ध, हिंसा और मानसिक अकेलेपन जैसी चुनौतियों से जूझ रही है, तब साथ रहने की शांति केवल एक विचार नहीं है, बल्कि समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन चुकी है। हमारे देश भारत की पहचान भी तो विविधता में एकता रही है। यहाँ अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग पहनावे हैं, लेकिन दिलों में अपना

अपन है। कबीर दास जी ने भी कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हु शीतल हो। यानी हमारी बोली ही रिश्तों में शांति ला सकती है। श्रोताओं, तो आओ शुरुआत करें, कभी किसी की बात धैर्य से सुन ले, किसी की गलती को माफ कर दे, या मतभेद होने पर भी सम्मान बनाए रखें। यही लिविंग टुगेदर इन पीस की असली भावना है। साथियों, दीवारें बनाना आसान है, लेकिन पुल बनाने में इंसानियत लगती है।

0: तो आपस में शांति से रहने की इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर हम सब वादा करें कि नफरत से नहीं संवाद से रास्ता निकालेंगे, भेदभाव से नहीं सहयोग से समाज बनाएंगे और अपने व्यवहार से आने वाली पीढ़ियों को यह सिखाएंगे कि सच्ची ताकत साथ रहने में है, सच्ची जीत शांति में है।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, कभी सुबह की पहली किरण ने आपको उम्मीद दी है, कभी दीपक की लौ ने अंधेरे कमरे में सुकून भर दिया है, तो कभी मोबाइल की स्क्रीन पर चमकती रोशनी ने

0: दूर बैठे अपनों को करीब ला दिया है। साथियों, प्रकाश यानी रोशनी केवल देखने का माध्यम नहीं बल्कि जीवन, विज्ञान, संस्कृति और विकास की धड़कन है। इसी महत्व को समझने के लिए हर साल 16 मई को दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट यानी अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत यूनेस्को ने की थी ताकि लोगों को यह बताया जा सके कि प्रकाश विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, ऊर्जा और शांति के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम प्रकाश से जुड़ी कुछ रोचक तथ्य जानते हैं। श्रोताओं, सूर्य की रोशनी को धरती पर आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं, यानी जो सूरज अभी हम देख रहे हैं उसकी रोशनी वास्तव में कुछ मिनट पहले निकली थी। इंद्रधनुष तो हमने देखा ही है, इसमें दिखाई देने वाली 7 रंग वास्तव में सफेद प्रकाश का जादू है। जब सूर्य की किरणें पानी की बूंदों से गुजरती हैं तो प्रकाश कई रंगों में बढ़ जाता है। पौधे भी प्रकाश के बिना जीवित नहीं रह सकते। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से पौधे भोजन बनाते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं, यानी हरियाली और रोशनी का रिश्ता जीवन से जुड़ा है। आज की इंटरनेट दुनिया भी प्रकाश पर ही टिकी है। फाइबर ऑप्टिक केबल्स में प्रकाश संकेतों के जरिए ही डेटा तेजी से दुनिया भर में पहुंचता है, यानी आपकी वीडियो कॉल से लेकर ऑनलाइन रेडियो तक सब कहीं ना कहीं प्रकाश विज्ञान का कमाल है। चिकित्सा क्षेत्र में भी प्रकाश चमत्कार करता है। लेजर तकनीक से आंखों के ऑपरेशन, त्वचा उपचार और कई आधुनिक चिकित्सा प्रक्रियाएं संभव हो पाई हैं। आज जब दुनिया ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संतुलन की बात कर रही है तब प्रकाश का सही उपयोग भी बेहद जरूरी हो गया है। एलईडी बल्ब कम बिजली खर्च करते हैं, सोलर लाइट गांवों तक उजाला पहुंचा रही है और स्मार्ट तकनीकें ऊर्जा बचाने में मदद कर रही हैं। हमारे छत्तीसगढ़ सहित देश के कई ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा से घरों और स्कूलों में रोशनी पहुंच रही है। यह केवल बिजली नहीं, शिक्षा, सुरक्षा और नए सपनों की किरण भी है। तो श्रोताओं, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक छोटी सी लौ उसे चुनौती दे सकती है। ठीक वैसे ही ज्ञान, सकारात्मक सोच और जागरूकता समाज के अंधेरे को दूर कर सकती है। साथियों, हम केवल अपने घरों में नहीं बल्कि अपने विचारों और व्यवहार में भी उजाला फैलाएं। रोशनी का असली अर्थ केवल चमकना नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रकाशित करना है।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

तो श्रोताओं, इन्हीं संदेशों, बातों और जानकारियों के साथ ही समय हो चला है कार्यक्रम आज सुबह से विदा लेने का। तो दीजिए अपनी रेडियो साथी पुष्पा को अनुमति। आपका दिन मंगलमय हो।

अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह FM बैंड 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 7:30 हुए हैं।

फिल्म गीतों के कार्यक्रम सदाबहार नगमे में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। श्रोताओं, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और एसपी बालसुब्रमण्यम के गाए इस गीत के साथ, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम है एक दूजे के लिए।

कार्यक्रम सदाबहार नगमे का पहला नगमा आपने सुना फिल्म एक दूजे के लिए सी। आवाजें थी लता मंगेशकर और एसपी बाल सुब्रमण्यम की। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: पुनः स्वागत है श्रोताओं आप सभी का कार्यक्रम सदाबहार नगमे में। आइए अब सुनते हैं उषा खन्ना की संगीत निर्देशन में इंदिवर के लिखा गीत, जिसे आवाज दी है मोहम्मद रफी ने और फिल्म का नाम है साजन बिन सुहागन।

ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

आइए अब सुनते हैं सागर फिल्म का गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में, जावेद अख्तर के बोल और आर डी बर्मन का संगीत।

FM 103.2 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर और कार्यक्रम चल रहा है सदाबहार नगमे। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार के गाए इस गीत को, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतबद्ध किया है RD बर्मन ने। फिल्म का नाम है बेताब।

0: स्वस्थ तन स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम नगमा धर्मात्मा फिल्म से। किशोर कुमार की आवाज, इंदिवर की बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

धर्मात्मा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, आवाज़ थी किशोर कुमार की। गीत लिखा था इंदीवर ने और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। इसी के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार नगमे का ये अंक हम यहीं संपन्न करते हैं।

आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस वक्त सुबह की 8 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने की सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इसराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशियाई जोड़ी से। भारत और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने पेट्रोलियम भंडार, दीर्घकालिक LPG आपूर्ति और रक्षा सहयोग से संबंधित कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौते पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच अबू धाबी में उच्च स्तरीय वार्ता के बाद हुए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर के निवेश का भी वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी कल 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में UAE गए थे। इन समझौतों में इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी के बीच भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए रणनीतिक सहयोग समझौता शामिल हैं। पेट्रोलियम भंडार में सहयोग और तरल प्राकृतिक गैस और LPG भंडारण सुविधाओं पर सहयोग के लिए समझौता किया गया। इस समझौते से भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में UAE की हिस्सेदारी बढ़कर 3 करोड़ बैरल हो जाएगी और भारत में रणनीतिक गैस भंडार स्थापित किए जाएंगे। दोनों पक्षों ने LPG पर रणनीतिक सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। इससे भारत में व्यापक रूप से ईंधन की दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित होने की संभावना है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी के ढांचे पर भी हस्ताक्षर किए, जो रक्षा औद्योगिक सहयोग, प्रौद्योगिकी साझाकरण, नवाचार और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित हैं। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जायद अल नाहयान ने पश्चिम एशिया संकट पर भी चर्चा की। श्री मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के नेतृत्व और लोगों के साथ भारत की एकजुटता की पुष्टि की।
1: पश्चिम एशिया क्षेत्र में युद्ध की परिस्थिति का प्रभाव पूरे विश्व पर दिखाई दे रहा है। भारत ने हमेशा समस्याओं के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी को प्राथमिकता दी है और उसको फ्री, ओपन और सेफ बनाए रखा, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत हर परिस्थिति में UAE के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने 5 देशों के दौरे के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य यूरोपीय देशों के साथ भारत के रणनीतिक और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करना है। एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री टॉम बेरेंसन ने किया।
2: इससे भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संबंधों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और नीदरलैंड्स की प्रमुख कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। कहीं अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है, खासकर सेमीकंडक्टर चिप्स और AI के क्षेत्रों में, जहां नीदरलैंड्स वैश्विक लीडर है। नीदरलैंड्स भारत का अहम आर्थिक साझेदार है। ये भारत के लिए सबसे बड़े निर्यात स्थलों में से एक होने के साथ साथ भारत में निवेश वाला प्रमुख देश भी है। दोनों देशों के बीच जल प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, अर्थव्यवस्था, कृषि तकनीकों और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी और सहयोग है। हेग नीदरलैंड से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देशवासियों के लिए व्यापार में आसानी और जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने विदेश यात्रा पर उपकर, कर या अधिभार लगाने से संबंधित रिपोर्ट खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी और निराधार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश यात्रा पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपए से घटाकर 16 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमानन ईंधन पर भी इसे 33 रुपए प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपए कर दिया गया। संशोधित दरें आज से 15 दिन तक लागू रहेंगी। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए परिणाम घोषित होने के बाद उपलब्ध सुविधाओं के बारे में नोटिस जारी किया है। इसमें निष्पक्ष, पारदर्शी और समान मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्धता को दोहराया गया है। बोर्ड ने कहा कि जो विद्यार्थी अपने परिणामों से संतुष्ट नहीं हैं, वो 2 चरणों वाली समीक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं। इसके पहले चरण में विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक अपना वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। परीक्षा दोपहर बाद 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। पेपर लीक होने के कारण 3 मई को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी गई थी। CBI इस मामले की जाँच कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल वर्चुअल माध्यम से राजस्थान के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का शुभारंभ किया।
3: भिवाड़ी के सालारपुर में यह प्लांट इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण और सेमीकंडक्टर के लिए वैश्विक केंद्र बनने की दिशा में भारत की यात्रा में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सहस्रा सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड का यह प्लांट भारत का पहला लघु और मध्यम उद्यम है, जिसने सेमीकंडक्टर चिप्स का वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है। यह प्लांट 150 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से स्थापित किया गया है। यहां प्रतिवर्ष 60 मिलियन सेमीकंडक्टर यूनिट्स बनाई जा सकेंगी। अगले 2 से 3 वर्ष में इसकी वार्षिक क्षमता बढ़ाकर 400 से 600 मिलियन यूनिट्स तक करने की योजना है। यह प्लांट अपने उत्पादन का 60% से अधिक हिस्सा अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पूर्वी यूरोप, चीन और नेपाल जैसे वैश्विक बाजारों में निर्यात कर रहा है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत में कोई भी गरीब व्यक्ति स्थायी घर के बिना नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि सभी को पक्के मकान उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की प्रमुख प्रतिबद्धता है। श्री चौहान महाराष्ट्र के सतारा में आयोजित महा आवास अभियान के अंतर्गत नए घरों के उद्घाटन और राज्य स्तरीय पुरस्कार समारोह के बाद सभा को संबोधित कर रहे थे।
4: भारत की धरती पर कोई भी गरीब कच्चे मकान में नहीं रहेगा। हर एक गरीब को पक्की छत मुहैया कराई जाएगी। फिर से हमारी सरकार बनी, देवेंद्र जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि 2 लाख बहुत है शिवराज, हमें तो बहुत मकान चाहिए। और मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से उनकी पहल पर लगभग 1 साल के अंतराल में 30 लाख मकान महाराष्ट्र को मिले, इतिहास में आज तक नहीं हुआ है।
0: सिक्किम आज अपना स्थापना दिवस मना रहा है। राज्य 16 मई 1975 को आधिकारिक रूप से भारत में शामिल हुआ था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन गंगटोक के मनन केंद्र में राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। पदभार ग्रहण करने के बाद उपराष्ट्रपति की ये पहली सिक्किम यात्रा है। इस कार्यक्रम में राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि विश्व का पहला पूर्णतः जैविक राज्य बनने से लेकर पर्वतीय पर्यटन को नई परिभाषा देने तक सिक्किम की उपलब्धियां पूरे देश को प्रेरित करती हैं। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के नेता और सांसद अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ टिप्पणियों के संबंध में FIR दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह को लक्षित करके की गई टिप्पणियां सांसद अभिषेक बैनर्जी के आधिकारिक फेसबुक पेज सहित सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित की गईं। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन के लिए बढ़ाने पर सहमत हो गए हैं। अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता टॉमी पिगोट ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि वॉशिंगटन में 2 दिन की वार्ता के बाद यह समझौता हुआ है। 2 या 3 जून को बातचीत करने पर भी सहमति बनी है। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्ला

0: का आतंकी समूह के बीच युद्ध विराम कल समाप्त हो रहा था। बैडमिंटन में भारतीय पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी आज बैंकॉक में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल में मलेशियाई शटलर नूर इज्जुद्दीन और गोह श्रीफेई से भिड़ेंगे। इस बीच पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से बाहर हो गए। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवर में 187 रन बनाए। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 17वें ओवर में ही जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। मिचेल मार्श ने शानदार 90 रन बनाए। उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज शाम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 7:30 बजे से गुजरात टाइटंस का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया जा रहा है। ये दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को भौतिकी विज्ञानी और अभियंता थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की स्मृति में मनाया जाता है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं जया भारती।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच ऊर्जा आपूर्ति समझौते की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत और यूएई के बीच एलपीजी की आपूर्ति समेत कई अहम समझौते। जनसत्ता के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पश्चिम एशिया में शांति के लिए हर संभव सहयोग को तैयार। पंजाब केसरी की सुर्खी है, खत्म होगा एलपीजी संकट, यूएई से डील पत्र के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हमलों की निंदा की। लोकसत्य का कहना है कि भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई। दैनिक जागरण ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय देते हुए लिखा है, मंदिर ही है भोजशाला, नमाज की अनुमति का आदेश निरस्त। हिंदुस्तान की सुर्खी है, धार भोजशाला मस्जिद नहीं वाग्देवी का मंदिर। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, नीट यूजी की रद्द हो चुकी परीक्षा अब 21 जून को होगी, लेकिन अगले साल से कंप्यूटर आधारित होगी ये परीक्षा। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने परीक्षा सुधार का समय शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, भारत में परीक्षाओं को 16 आना चाक चौबंद बनाने की कोशिश सराहनीय है। सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं को भी अब ऑनलाइन कराने का फैसला लिया है। परीक्षा की कमियों को दूर करने के प्रयास प्रशंसनीय है। साथ ही पेपर लीक की जांच कर रही सीबीआई दोषियों को कड़ी सजा दिला पाए तो पूरी शिक्षा का भला होगा। अमर उजाला की सुर्खी है, पेट्रोल डीजल 3 रुपए महंगे, सीएनजी के दाम 2 रुपए बढ़े, पत्र के अनुसार 4 साल बाद वृद्धि। दैनिक भास्कर ने सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के हवाले से लिखा है, बेरोजगार युवा कॉकरोच की तरह एक्टिविस्ट बनकर सिस्टम पर हमला करते हैं, वकीलों की प्रामाणिकता पर गंभीर संदेह जताया। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, ईरान युद्ध पर मतभेद, ब्रिक्स का संयुक्त बयान नहीं हो सका जारी। ईरान का आरोप, नाम लिए बिना यूएई पर रोड़ा लगाने का आरोप जड़ा। पत्र के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने कहा, शांति में भारत निभाए भूमिका। पंजाब केसरी का शीर्षक है, 26 मई को केरल तट पर दस्तक देगा मॉनसून, समय से 4 दिन पहले आएंगी बौछारें।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम और गैस भंडार स्थापित करने सहित कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में नीदरलैंड्स पहुंचे। प्रधानमंत्री ने विदेश यात्रा पर कर लगाने की खबर का खंडन किया। CBSE ने कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा शुरू करने की घोषणा की। इजराइल और लेबनान युद्ध विराम को 45 दिन बढ़ाने पर सहमत हुए। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल सेमीफाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी का सामना मलेशियाई जोड़ी से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम वीसी प्रमोद। द हेडलाइंस: इंडिया एंड द यूएई साइन स्लू ऑफ एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग

0: श्रोताओं नमस्कार। डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, स्वास्थ्य हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, इसे बरकरार रखना बहुत ही आवश्यक होता है। स्वस्थ रहने पर ही हमारा समस्त जीवन अच्छे से हम बिता सकते हैं, और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है कि हमें अपनी दैनिक क्रियाकलापों पर संयम रखना चाहिए। खाने पीने, अपने सोने जागने जैसे महत्वपूर्ण कामों के लिए हमें सजग रहना चाहिए। श्रोताओं, बीमारी से बचने के भी कई तरीके होते हैं और सरकार द्वारा इस हेतु कई प्रयास किए जा रहे हैं, इसके लाभ आम जनों को भी मिलते हैं। और श्रोताओं, इसी में से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है राष्ट्रीय आयुष मिशन, जो भारत सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो श्रोताओं, डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम में आज हम राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है डॉक्टर सुनील दास, जो संयुक्त संचालक है आयुष विभाग छत्तीसगढ़ शासन में। तो डॉक्टर सुनील दास जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी धन्यवाद, नमस्कार।
0: तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये राष्ट्रीय आयुष मिशन क्या है और इसका क्या उद्देश्य है।
1: राष्ट्रीय आयुष मिशन भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, इसके माध्यम से जो है व्यक्तियों को समग्र स्वास्थ्य कैसे उपलब्ध हो सके, यह कार्य राष्ट्रीय आयुष मिशन के माध्यम से किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना, पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देना और आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ समन्वय कर संपूर्ण स्वास्थ्य जो है मनुष्य मात्र को उपलब्ध कराना, यह इसका उद्देश्य है। इसके कई सारे घटक हैं। इसके अंतर्गत जो है आयुष सेवाओं का विकास करना, आयुष शिक्षा और प्रशिक्षण उपलब्ध कराना, आयुष की दवाओं में गुणवत्ता नियंत्रण और इन सब के प्रचार प्रसार का कार्य इस आयुष मिशन के माध्यम से किया जाता है।
0: जी जी। तो डॉक्टर साहब, जब हम राष्ट्रीय आयुष मिशन की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चिकित्सा पद्धति आती है?
1: इसके अंतर्गत आयुष की पूरी चिकित्सा पद्धतियां आती हैं। आयुष मतलब आयुर्वेद, वाई फॉर यूनानी,
0: जी
1: वाई फॉर योग, यू फॉर यूनानी, एस फॉर सिद्धा, एस फॉर सुवारिकबा और होम्योपैथी, ये चिकित्सा पद्धतियां इसके अंतर्गत आती हैं। इन चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से लोगों को संपूर्ण समग्र स्वास्थ्य प्रदान करना ये आयुष मिशन का कार्य है।
0: जी जी। तो डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ में इस मिशन से स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में क्या लाभ लोगों को मिल पा रहा है?
1: इसके माध्यम से लोगों को बहुत सारे लाभ प्राप्त हो रहे हैं। जैसे आयुष मिशन के द्वारा कुछ पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स प्रारंभ किए गए हैं
0: जी,
1: लोक स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसमें एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है सुप्रजा।
0: जी
1: सुप्रजा जैसे सर्वविदित है कि जब बच्चा माता के गर्भ में आता है तब से ही उसके संस्कार प्रारंभ होते हैं, और हमारे महर्षियों के द्वारा यह निर्देश दिया गया है, आधुनिक विज्ञान ने भी इस बात को सिद्ध किया हुआ है कि माता के गर्भ में जब कोई भ्रूण पल रहा है उसको अच्छे वातावरण देना, अच्छे संस्कार देना और अच्छी शिक्षा देना, इसके माध्यम से जो है वह जब गर्भ परिपक्व होता है तो गर्भ में जो पल रहा होता है शिशु, उसका भी उसी प्रकार से विकास गर्भ से ही प्रारंभ होता है। ये एक सुप्रजा का कार्यक्रम।
0: जी
1: आगे ऑस्टियोआर्थराइटिस मस्कुलोस्केलेटल डिजीज, ऐसा एक प्रोग्राम है
0: जी,
1: जिसके अंतर्गत जो है ऐसे मैं कहूंगा कि पूरी आबादी में ऐसे कोई व्यक्ति नहीं होंगे, 70-80 से 90% जिनको कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई दर्द ना हुआ हो, कोई पीड़ा ना हुई हो
0: जी।
1: और खास करके हमारे भारतीय परंपरा में तो ये माना जाता है कि 60 के बाद शरीर में वात का जो है प्रकोप होना शुरू होता है, वात हो गया, वात रोग हो गया है, ये सामान्य बोलचाल की भाषा में हम सब जानते सुनते हैं
0: जी जी।
1: तो उसके रोकथाम के लिए, चिकित्सा के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। एक आयुर्विद्या का कार्यक्रम है, उस आयुर्विद्या के कार्यक्रम में 4 स्तर उसका बनाया गया है
0: जी,
1: प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर, उच्च माध्यमिक स्तर, उच्चतर माध्यमिक स्तर
0: जी।
1: तो उस अलग अलग स्तर के लिए अलग अलग विषय वस्तु तैयार किए गए हैं, और जो विद्यार्थी हैं उनके मन में प्रकृति के प्रति

0: लगाव, अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से उनका परिचय, ताकि आगे चल करके वो बच्चे जो है अपने आगामी जीवन के लक्ष्य के रूप में आयुर्वेद को स्वीकारें, आयुर्वेद के पाठ्यक्रम को वह जो है सहज रूप से अपनाएं और समाज में आकर के समाज को समग्र स्वास्थ्य देने के लिए कार्य करें, ऐसा एक आयुर्विद्या का यह कार्यक्रम संचालित होता है।
1: जी जी,
0: NPCDCS है जो जीवन पद्धति जन्य रोगों की रोकथाम और उसकी चिकित्सा,
1: जी
0: यह भी आयुर्वेद के माध्यम से बहुत अच्छे से किया जा सकता है, क्योंकि आज के इस भागदौड़ के जीवन में व्यक्ति शुद्ध आहार से वंचित होता जा रहा है।
1: जी,
0: भौतिकता जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, उत्पादकता बढ़ाने के पीछे जो है कृषक खेतों में अनावश्यक रासायनिक खाद, कीटनाशक, इन सब औषधि का छिड़काव कर जब फसल का उत्पादन किया जा रहा है, तो उस फसल में भी वह कीटनाशक और उस प्रकार के वो जो सारी चीजें उस फसल में भी आ रही हैं, तो व्यक्ति जो है वह स्वाभाविक रूप से कई ऐसे असाध्य रोगों की ओर अग्रसर हो रहा है। उसका रोकथाम का उपाय भी जो है यह NPCDCS कार्यक्रम के माध्यम से करने का, ये आयुष मिशन के द्वारा ये प्रारंभ किया गया है।
1: जी जी, तो डॉक्टर साहब, ये NPCDCS कार्यक्रम का जो पूर्ण रूप क्या है?
0: नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, डायबिटीज एंड स्ट्रोक, एन फॉर नेशनल, पी फॉर प्रोग्राम, एंड सी फॉर कैंसर, डी फॉर डायबिटीज, एस फॉर स्ट्रोक, NPCDCS।
1: तो डॉक्टर साहब, हम देखें कि हमारी अनियमित दिनचर्या और जो आजकल मिलावटी खान पान है, इसका काफी असर पड़ता है स्वास्थ्य पर, और इस तरह की बीमारी जो NPCDCS में आपने बताया, इससे वो व्यक्ति ग्रसित हो जाते हैं। तो इसके लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो इसके अंतर्गत इन इन बीमारियों के लिए क्या कार्य किए जाते हैं?
0: एक तो इन बीमारियों के लिए शास्त्र में जैसे निर्देश दिया गया है, महर्षि चरक कहते हैं कि तत्र मात्रा सी, व्यक्ति को मात्रा पूर्वक भोजन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आहार अपि पुनरग्निवलापेक्षिणी, अर्थात आपको जैसा भूख हो उसके अनुसार भोजन करना चाहिए। ऋतुचर्या के बारे में बताते हैं, अभी ग्रीष्म का ऋतु है, स्वाभाविक रूप से बाहर की गर्मी जो है बहुत तेज, बाहर का तापमान बहुत तेज बढ़ा हुआ है, तो आपके अंदर का तापमान स्वयं में जो है शांत है, तो आप अगर अभी के समय में गरिष्ठ भोजन लेंगे, गुरु आहार लेंगे, तो निश्चित ही जो है आपका आहार पचेगा नहीं, क्योंकि आपकी अग्नि उतनी प्रबल नहीं है, और आपका आहार नहीं पचेगा तो आपका आहार जो है फिर आम दोष में परिवर्तित हो जाएगा, और आम दोष जो होता है वह सभी रोगों का उत्पत्ति का कारण, ऐसा हमारे आयुर्वेद के मनुष्यों ने और हमारी भारतीय परंपरा में भी, लोक जीवन में भी यह बात जो है स्वीकार्य है, सर्वमान्य है, कि इस भोजन जब नहीं पचता है तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होती हैं, तो यह आम जनों में यह है। तो एक डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, ये बीमारियां जो है मुख्य रूप से आहार और विहार, निद्रा सही तरीके से नहीं होना, मन में अनावश्यक तनाव रखना, इन सब कारणों से ये बीमारियां होती हैं, और इसका उपचार आधुनिक चिकित्सा शास्त्र कहता है कि इसका उपचार है ही नहीं, इसका सिर्फ जो है दवाई खा करके इसको मैनेज किया जा सकता है, किंतु अगर आयुर्वेदी आहार विहार लेकर के, आयुर्वेद वैद्य के परामर्श को मानकर अगर कोई चलता है, तो निश्चित रूप से जो है इस रोग से वह मुक्त हो सकता है।
1: जी जी जी, बहुत अच्छी बात अभी आपने बताया डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में एक छोटा सा अंतराल लेंगे और चाहेंगे कि आपकी पसंद का हमें गीत सुने।
0: चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो।
1: तो आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत।

0: श्रोताओं, इस गीत के पहले हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में, और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सुनील दास जी, जो संयुक्त संचालक है आयुष विभाग छत्तीसगढ़ शासन में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है, और अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम राष्ट्रीय आयुष मिशन की बात करते हैं तो इसमें स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का क्या महत्व होता है?
1: आयुष्मान आरोग्य मंदिर है, स्वास्थ्य कल्याण केंद्र जो है इसका बहुत महत्व है
0: जी।
1: आयुर्वेद कहता है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षण आतुरस्य विकार प्रशमनम च, अर्थात एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की हम पूर्ण रक्षा करेंगे
0: जी,
1: उसके उपरांत अगर वह व्याधिग्रस्त होता है तो उसका उपचार करेंगे
0: जी। जी,
1: तो यह जो स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र है जिसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष ऐसा हम कहते हैं, और हमारे प्रदेश में 400 केंद्र संचालित हैं
0: जी।
1: उन केंद्रों से हम प्रतिदिन
0: जी
1: योग की शिक्षा देते हैं, उसके बाद आयुर्वेद रस रसायन का प्रयोग कैसे करना है इसकी शिक्षा देते हैं, दिनचर्या ऋतुचर्या आहारचर्या इसकी शिक्षा हमारे वैद्य जो वहाँ पर पदस्थ हैं वे देते हैं। और ये प्रयास यह है कि एक ग्रामीण जनता जहाँ पर हमारा औषधालय है वह पूर्ण आरोग्य को प्राप्त हो और वहाँ पर कोई भी रोगग्रस्त ना हो
0: जी,
1: ऐसा आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष का जो है यह प्रयास है और यह उसका उद्देश्य भी है
0: जी। जी जी, तो डॉक्टर साहब जब हम आयुष मिशन की बात करते हैं तो इसमें कितने घटक हो सकते हैं?
1: आयुष मिशन के घटक, जैसे आयुष मिशन क्या है बताएं, उस समय ही मैंने बताया आयुष मिशन में सर्विसेज है प्रमुख रूप से, सेवाएं
0: जी,
1: शिक्षा
0: जी,
1: आयुष सर्विसेज को जो है बढ़ावा देना, आयुष की शिक्षा को गुणवत्ता युक्त करना
0: जी,
1: और इसके और जो भी घटक छूट जाते हैं उसके लिए उसमें जो फ्लेक्सी पुल का भी है उसके अंतर्गत जो है और अन्य घटकों को समाहित करके हम भारत सरकार को प्रेषित करके भारत सरकार से इसके लिए हम सहायता प्राप्त करते हैं
0: जी। जी जी, तो डॉक्टर साहब जब हम राष्ट्रीय आयुष मिशन की बात करते हैं तो इसमें आयुर्वेद एक बहुत महत्वपूर्ण इसका अंग है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत आयुर्वेद का क्या महत्व है, और जब हम देखते हैं बच्चों के संदर्भ में तो इसमें कुछ स्वर्ण प्राशन जैसी जो है महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाए जाते हैं, तो इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
1: स्वर्ण प्राशन ऐसा है, स्वर्ण को जो है मेधा बुद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। उस स्वर्ण का जब हम प्राशन करवाते हैं या उस स्वर्ण को घृत और मधु के साथ में जब हम पुष्य नक्षत्र के समय

0: तत्काल जन्म लिए हुए बच्चे से 14 साल तक के बच्चे को जब उसका उपयोग कराते हैं तो धीरे धीरे उसकी बुद्धि, उसकी कांति, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसमें सब में पर्याप्त वृद्धि होती है और वह एक स्वस्थ बालक जो होता है, स्वस्थ शिशु जो होता है, वो धीरे धीरे धीरे धीरे एक स्वस्थ नागरिक के रूप में परिणत होता है और वह उसके जीवन में रोगग्रस्तता जो है नहीं के बराबर होती है।
1: जी,
0: और यह स्वर्ण प्राशन का कार्यक्रम जो है प्रत्येक माह के पुष्य नक्षत्र में हमारे आयुर्वेदिक महाविद्यालय रायपुर एवं आयुर्वेदिक महाविद्यालय बिलासपुर में संचालित है और जिसको जनता का जो है बहुत ही ज्यादा उनका विश्वास प्राप्त हो चुका है। हजारों लोग उस दिन जो है स्वर्ण प्राशन के लिए अपने बच्चों के साथ हमारे चिकित्सालयों में उपस्थित होते हैं।
1: जी जी जी जी। तो डॉक्टर साहब, जब हम स्वस्थ रहने की बात करते हैं और आयुष मिशन की बात करते हैं तो योग जो है काफी महत्वपूर्ण होता है और हम हर वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, तो आयुष मिशन के अंतर्गत योग का क्या महत्व है?
0: जैसे कि आयुष मिशन के अंतर्गत हम सभी भारतीय पद्धतियों को शामिल करते हुए एक समग्र स्वास्थ्य की बात करते हैं और इसमें योग तो है ही है, बहुत महत्वपूर्ण अंग घटक है उसका योग जो है। और प्रत्येक आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो हमारे यहाँ 400 संचालित हैं हमारे छत्तीसगढ़ में
1: जी,
0: उन 400 आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हमने योग प्रशिक्षक रखा हुआ है और एक योग प्रशिक्षक, प्रत्येक योग प्रशिक्षक को हमने 32 घंटे के योग के सत्र लेने के लिए उनके लिए वह समय सारणी तय करके उन्हें दिया हुआ है। साथ ही योग वेलनेस सेंटर भी हमारे इस प्रदेश के अंदर में संचालित हैं। उस योग वेलनेस सेंटर के माध्यम से प्रत्येक दिन योग का अभ्यास तो करना ही है, साथ ही योग के षटक्रिया को भी लोगों के बीच में हम एक लाभकारी और लोकप्रिय बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, जिससे सामान्य सी समस्या बड़ी विकराल रूप न ले और जो समस्या प्रारंभ हुई है तत्काल हमारे आयुर्वेद और योग के माध्यम से उसका समाधान हो सके, इसलिए योग बहुत बड़ा, इसमें उसकी योग की बहुत बड़ी भूमिका है।
1: तो डॉक्टर साहब, जब हम रोगों की बात करते हैं तो आयुर्वेद जो है इससे बचने के लिए काफी महत्वपूर्ण एक पद्धति मानी जाती है, तो कुछ रोग ऐसे होते हैं जो असाध्य होते हैं, जिनका इलाज किया गया है लेकिन जो है व्यक्ति काफी अंत समय में और गंभीर समय में डॉक्टर के पास पहुंचा है, उस समय रोगी के बचने की या जीवित रहने की संभावना बहुत कम हो जाती है, तो उसके लिए आयुर्वेद में एक पैलिएटिव केयर का जो विकल्प दिया जाता है, तो इसका क्या महत्व होता है?
0: पैलिएटिव केयर, देखिए, प्रशामक उपचार, ऐसे रोगी जो बिस्तर में बंध गए हैं, घर में बंध गए हैं और न उनकी रोग ठीक होने की संभावना है और न तत्काल उनके कहना चाहिए कि मृत्यु की संभावना है, तो उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए, उनके मनोबल को बनाए रखने के लिए, उन्हें मानसिक शांति के लिए यह जो प्रशामक उपचार जिसे पैलिएटिव केयर कह रहे हैं, इसकी भी प्रावधान हमारे आयुष मिशन के अंतर्गत किया गया है
1: जी।
0: इसके तहत हमारे चिकित्सक जो है, अभी हमारे रायपुर और बिलासपुर आयुर्वेद महाविद्यालय जो हैं इसके नोडल हैं और उनके माध्यम से यह कार्यक्रम जमीनी स्तर पर चल रहा है
1: जी,
0: जिसमें हमारे चिकित्सक ऐसे रोगियों का चिन्हांकन करते हैं जो कि बिस्तर पर बंध गए हैं और घर में बंध गए हैं और ऐसे असाध्य रोगों से ग्रसित हो गए हैं जिसका रोग तो ठीक होना ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमारे चिकित्सक उनके घर जा करके उस रोगी के साथ, परिवार के लोगों के साथ संवाद करते हैं, उनके साथ समन्वय करते हैं और परिवार वालों को भी जो है उस रोगी के प्रति उनके मन में सदैव एक ऐसा प्रेम का भाव बना रहे और रोगी को भी यह आश्वस्त करते हैं कि भाई आपका रोग जो है वह ठीक होगा नहीं होगा ये नहीं कह सकते, किंतु आप हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आप कभी न कभी हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, ऐसा उनके साथ संवाद करके रोगी को और परिवार को आश्वस्त करते हैं और उनको एक दूसरे के प्रति, जैसे रोगी के प्रति परिवार के सदस्य यदि नहीं करेंगे तो वो रोगी और परेशानी आएगा उसको, तो दोनों के बीच भी सामंजस्य, हमारे चिकित्सक उनके परिवार के साथ, रोगी के साथ सामंजस्य रख करके इस कार्यक्रम को अच्छे से चला रहे हैं ताकि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसे एक सुखपूर्वक मृत्यु मिले और वह शांत होकर के इस दुनिया से जाए, ऐसा इसका उद्देश्य है।
1: जी जी जी जी, ये बहुत अच्छी जानकारी है डॉक्टर सुनीता जी। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे, उससे पहले चाहेंगे आपकी पसंद का एक और गीत हम सुने।
0: तेरे चेहरे में वो जादू है, जाना होता है क्यों तेरी ओर चला, मैं ये गीत सुनना चाहता हूँ।
1: जी जी जी, तो आइए सुनते हैं डॉक्टर साहब की पसंद का ये गीत।

0: श्रोता, इस गीत की पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर सुनील दास जी से, जो संयुक्त संचालक है आयुष विभाग छत्तीसगढ़ में। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम अब आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद के हिसाब से हम रोगों से ग्रसित ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए?
1: रोगों से ग्रसित न हो इसके लिए ही आयुर्वेद है।
0: जी
1: तो आपके इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं हर व्यक्ति से यह प्रार्थना करता हूं कि वह हमारे स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, आयुष औषधालय में, और हमारे चिकित्सक से परामर्श लें, स्वस्थ रहने का परामर्श लें।
0: जी
1: रोगों का उपचार तो हम करते ही हैं,
0: जी जी
1: किंतु हमारा आयुर्वेद स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम बोला हुआ है,
0: जी
1: तो हम आजीवन स्वस्थ कैसे रहें,
0: जी
1: उसके लिए महर्षि चरक है, महर्षि

0: श्रुत हैं, महर्षि वाग्भट्ट हैं, ये विहत्रयी जो महर्षि हैं, इन्होंने कई सारे हमें निर्देश दिए हुए हैं। एक निर्देश तो जैसे मैंने बताया आहार को लेकर के, क्योंकि इस यह आहार ही हमारे शरीर के लिए औषधि है, यह आहार ही हमारे शरीर के लिए विष है। तो इस आहार का हम किस प्रकार भक्षण करें, कौन सी ऋतु में कैसा आहार खाएं। जैसे अभी ग्रीष्म ऋतु चल रहा है, इस ग्रीष्म ऋतु में यदि हम बहुत भारी भोजन करेंगे जो पचने में बहुत विलंब हो, तो उससे निश्चित रूप से हमें व्याधि होगा ही होगा।
1: जी।
0: जैसे ये सर्वविदित है कि ग्रीष्म ऋतु जाता है, प्रावृत्त ऋतु जब आता है, हल्की सी बारिश होती है, तो आप देखिएगा कि लोग जो है बहुत से बीमार पड़ते हैं।
1: जी
0: तो क्या वह बीमार पड़ने की घटना एक दिन में होती है?
1: जी जी
0: नहीं,
1: जी
0: वह बीमार पड़ने की घटना जो है उसके पूर्व के 2-3 माह से प्रारंभ होती है।
1: जी
0: जब व्यक्ति अपने मुख के स्वाद के लिए, अपनी जिह्वा लोलुपता के कारण से, जो उसे नहीं खाना चाहिए या उसके मात्रा से ज्यादा नहीं, मात्रा पूर्वक खाना चाहिए, मात्रा का उल्लंघन कर जाता है। अब ग्रीष्म ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु में आप मद्यपान करेंगे, ग्रीष्म ऋतु में मद्यपान तो निषेध ही है। ग्रीष्म ऋतु के समय में बहुत कहना चाहिए कि कड़ा व्यायाम,
1: जी
0: यह भी निषेध है। और ग्रीष्म ऋतु के समय में हल्का तरल भोजन लेना, और कहीं पर भी हम ग्रीष्म में अपने कार्य के कारण से कहीं पर भी हम जब प्रस्थान करते हैं, कहीं जाते हैं, सिर पर गमछा होना चाहिए, और गर्मी से बचाव के सभी उपाय करके हमें जाना चाहिए। पर्याप्त जो है पानी पीते रहना चाहिए, शरीर में पसीना बहुत होता है तो उससे नमक की कमी ना हो, यह ध्यान में रखते हुए इसका भी उपयोग करना चाहिए। प्रातः काल जो है आयुर्वेद ने ब्रह्म मुहूर्त को बहुत ही उपयोगी माना है। सूर्योदय के 1 से 1.5 घंटा पूर्व जागरण, और साथ ही जागरण करने के उपरांत जो है आप एक अच्छे शौच के उपरांत आप अपने शरीर के लिए कुछ समय दें। योग है, प्राणायाम है, व्यायाम है, सूर्य नमस्कार है, ये सबको अपने अपने शरीर के हिसाब से, अपने अपने सुविधाजनक हिसाब से, यह सभी प्रकार का कार्य व्यायाम इन्हें करना चाहिए। व्यायाम से जो है शरीर का दृढ़ीकरण बोलो कहा गया है आयुर्वेद के अंदर में, व्यायाम से जो है आपके रूप और आपके कांति में निखार आती है, ये कहा गया है। और व्यायाम जो होता है वो अग्निवर्धक होता है, अर्थात हमारी अग्नि प्रदीप्त होती है, और उसके बाद जब हम आहार करते हैं तो वह समग्र रूप से पचता है, और समग्र रूप से पचा हुआ आहार जो है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र उत्तरोत्तर धातुओं का पोषण करता है, जिससे हमारे शरीर में न रक्त की कमी होती है, न हमारे शरीर का अस्थि क्षय होता है, न हमारे शरीर का मांस क्षय होता है, और हम एक बलिष्ठ और सुंदर रूपमान और एक शक्तिशाली और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में, एक स्वस्थ व्यक्ति के रूप में इस जीवन का आनंद ले सकते हैं।
1: जी, डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आज आपने राष्ट्रीय आयुष मिशन और आयुर्वेद से हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं इसके बारे में जो जानकारी दी वो बेहद ही खास और महत्वपूर्ण थी, और हम चाहते हैं कि हमारे श्रोता डॉक्टर साहब की कही गई बातों का पूरा ध्यान रखें और बीमार ना हो, इसके लिए कार्यक्रम में आज जैसा बताया गया है इस प्रकार की खान पान और इस प्रकार की दिनचर्या को अपनाने की कोशिश करें। और डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आप आए और हमारे श्रोताओं को जो जानकारी दी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद, नमस्कार।
1: डॉक्टर की सलाह कार्यक्रम से आज हमें यही अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह में आप सुन रहे थे राष्ट्रीय आयुष मिशन और बीमारियों से सुरक्षा पर छत्तीसगढ़ आयुष विभाग के संयुक्त संचालक डॉक्टर सुनील दास से रमाशंकर की बातचीत। मीडियम वेव एफएम बैंड पर आकाशवाणी का यह रायपुर केंद्र है। 9 बजे हैं, प्रस्तुत है समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में। इसमें आइए सुनते हैं गर्मी के मौसम में लू से बचाव और सावधानी पर डॉक्टर विमल किशोर राय से ली गई भेंट वार्ता। प्रस्तुत करता है विकल्प रंजन शुक्ला।
1: श्रोताओं नमस्कार, समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बात

0: तो बातों में के आज के अंक के साथ मैं राहुल सिन्हा। श्रोताओं, प्रदेश में मौसम का मिजाज पिछले करीब एक हफ्ते में बदला है। हालांकि भीषण गर्मी का दौर फिर से शुरू होने वाला है। ऐसे मौसम में लापरवाही स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकती है। तेज धूप, गर्म हवाएं और बढ़ता तापमान लोगों को डिहाइड्रेशन, उल्टी दस्त, चक्कर आना, सरदर्द, बुखार और लू जैसी गंभीर समस्याओं की चपेट में ला सकता है। खासकर बच्चे, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और बाहर काम करने वाले लोग इस मौसम में अधिक जोखिम में रहते हैं। लू लगने के मामलों में हर साल बढ़ोतरी देखी जाती है, लेकिन सही जानकारी और समय पर सावधानी बरतकर इससे बचा जा सकता है। आखिर लू लगने के प्रमुख लक्षण क्या है, किन परिस्थितियों में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, गर्मी के दिनों में खान पान कैसा हो, शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए क्या उपाय अपनाए जाएं और धूप में निकलते समय किन बातों का ध्यान रखा जाए, इन्हीं महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के एकीकृत रोग निगरानी परियोजना के रायपुर जिलाधिकारी डॉक्टर विमल किशोर राय जी। श्रोताओं, हम डॉक्टर राय से गर्मी से बचाव, लू के लक्षण और स्वस्थ रहने के जरूरी उपायों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रदेश में गर्मी बढ़ती जा रही है, हमें किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: देखिए, गर्मी अब सिर्फ मौसम नहीं है बल्कि स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई है। सबसे महत्वपूर्ण सावधानी है शरीर को कभी भी डिहाइड्रेट ना होने देना, मतलब शरीर में पानी की कमी ना होने देना। साथ ही सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचना चाहिए। ढीले सूती कपड़े पहनना चाहिए, हल्के रंग के कपड़े पहने। घर के अंदर पंखा, कूलर, एसी का इस्तेमाल करें, लेकिन अचानक ठंड से गर्म में न जाएं, ये शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पानी, नींबू पानी, छाछ, लस्सी पानी और नारियल पानी का हमेशा सेवन करते रहना है। और पुरानी बीमारियों के जितने भी मरीज हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हृदय रोग और किडनी से संबंधित रोगों के जो मरीज हैं, समय समय पर दवा लेते रहें और अपने डॉक्टर से लगातार संपर्क बनाए रखें।
0: डॉक्टर साहब, ये हीट वेव जिसे लू भी कहते हैं और सामान्य गर्मी में क्या फर्क होता है, किस तरीके से ये आम जन को प्रभावित करती है?
1: देखिए, सामान्य गर्मी में वातावरण का तापमान बढ़ जाता है, लेकिन इसे शरीर सहन कर लेता है। हीट वेव की कंडीशन तब मानी जाती है जब मैदानी इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा हो जाए या पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे ज़्यादा हो जाए। यह स्थिति कम से कम 2 या 3 दिन तक लगातार बनी रहे तो उस स्थिति को हम हीट वेव की स्थिति कहते हैं। हीट वेव में शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता बहुत तेज़ी से कम हो जाती है, खतरा कई गुना बढ़ जाता है, इसलिए इन मामलों में हमें विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है।
0: हीट स्ट्रोक अगर लग जाए, लू जिसे कहते हैं, जो लू लग जाए, तो ये पहली बात तो ये कैसे पता चले कि अभी जो व्यक्ति है उसे लू लग चुकी है और उससे किस तरीके से बचाव किया जाए?
1: देखिए, लू लगने के शुरुआती जो संकेत होते हैं उसमें व्यक्ति को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, चक्कर आने लगते हैं, कमजोरी लगती है, उल्टी जैसा लगता है, सिर में दर्द होता है, मांसपेशियों में ऐठन होती है, पसीना आता है और साथ ही व्यक्ति को बहुत ज़्यादा थकान लगती है। यह तो प्रारंभिक और मॉडरेट कंडीशन होती है, लेकिन एक मेडिकल इमरजेंसी हीट स्ट्रोक कहते हैं। यह एक खतरनाक स्थिति होती है। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर चला जाता है, पसीना आना बंद हो जाता है और जो मरीज बेहोश होने लगता है, कन्फ्यूजन की स्थिति आ जाती है
0: जी।
1: हो सकता है मरीज को दौरे पड़ जाएं और चिड़चिड़ापन, बेहोशी तक की स्थिति आ सकती है। यह एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, हमें इसमें विशेष एहतियात बरतना होता है और तत्काल इलाज की आवश्यकता होती है।
0: क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जो लोग बाहर काम करने के लिए अक्सर जाते हैं उन्हें किन बातों का ख्याल रखना होता है?
1: देखिए, जो लोग घर से बाहर काम करने के लिए अक्सर जाते हैं उन्हें लू से बचने के लिए तमाम सावधानियों का ध्यान रखना होगा। सुबह 8 बजे से पहले या शाम 5 बजे के बाद उन्हें अपने कार्य को करने की प्राथमिकता देनी चाहिए। साथ ही सफ़ेद हल्के रंग के टोपी, गमछा का प्रयोग करना चाहिए, सिर को ढककर रखना चाहिए और हर एक घंटे में लगभग 10 से 15 मिनट का उन्हें आराम करना चाहिए, छाया में रहना चाहिए। साथ ही पानी की बोतल और ORS साथ में रखना चाहिए। साथ ही एक महत्वपूर्ण बात एक और है कि व्यक्ति को अकेले काम नहीं करना चाहिए, साथ में मिलकर काम करना चाहिए ताकि यदि कोई इमरजेंसी आ जाए तो तत्काल सहयोग मिल सके
0: जी।

0: मौसम चाहे कोई भी हो डॉक्टर साहब, बच्चों और बुजुर्गों के लिए थोड़ी सी अलग बातों का ख्याल रखना होता है, और किन किन बातों का खास ध्यान
1: जी
0: गर्मी के
1: हाँ,
0: मौसम में बुजुर्गों और बच्चों के लिए रखना
1: जी हाँ,
0: होगा?
1: आपने सही कहा। बच्चों और बुजुर्गों के लिए हमें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चों को दिन में बाहर खेलने जाने से रोकना चाहिए, वो धूप में न खेलें। साथ ही उन्हें इंडोर गेम खेलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उनके कपड़े सूती कपड़े होने चाहिए, ढीले ढाले हवादार कपड़े पहनाने चाहिए। बार बार पानी पिलाना चाहिए, ऐसा न हो कि केवल प्यास लगने पर ही पानी पीना है। बिना प्यास लगे भी उन्हें समय समय पर पानी देते रहना है। डिहाइड्रेशन के लक्षण देखते रहना है, जैसे कम पेशाब का होना, होंठ सूख जाना, त्वचा का शुष्क होना, इन परिस्थितियों में विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही बुजुर्गों के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश होते हैं। बुजुर्गों को अकेले नहीं छोड़ना है, उन्हें समय पर दवाइयां देना है, कमरे को ठंडा रखना है, रोजाना शरीर का तापमान चेक करना है। यदि किसी भी तरह की समस्या आती है तो तत्काल अपने डॉक्टर से संपर्क करना है।
0: जी, पानी के अलावा डिहाइड्रेशन कम करने के लिए और किस तरीके के आहार लेना चाहिए, क्या पेय पदार्थ लेना चाहिए?
1: देखिए, पानी के अतिरिक्त जो पेय पदार्थ लाभदायक होते हैं और जिन्हें प्रेफरेंस देना चाहिए, उसमें नारियल का पानी लिया जा सकता है, छाछ या मठा सबसे अच्छा पेय माना जाता है, नींबू पानी लें, शहद नमक का सेवन किया जा सकता है, ओआरएस दिया जा सकता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक और चाय और कॉफी लेने से बचना चाहिए, ये नुकसानदायक साबित हो सकता है।
0: जी, खान पान की बात चल रही है डॉक्टर साहब, क्योंकि आपने बताया कि किन किन पेय पदार्थों को पीना चाहिए, किन्हें नहीं लेना चाहिए, लेकिन खाने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरीके का खाना गर्मी के मौसम में ध्यान देना चाहिए व्यक्ति को खाने के लिए?
1: जी हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। खाने पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। गर्मी के दिनों में सादा भोजन का सेवन करना चाहिए। सादी भोजन में दाल, चावल, दही और सलाद का सेवन करना स्वास्थ्यवर्धक रहेगा। सब्जियों में लौकी, तोरई, परवल, पालक, टमाटर का सेवन किया जा सकता है। फल
0: जी
1: में गर्मी में मिलने वाले फल, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, संतरा, आम का सेवन किया जा सकता है। खाना आपका हल्का होना चाहिए, कम मसालेदार होना चाहिए और रात का खाना हल्का रहना चाहिए। साथ ही तला भुना मसालेदार स्ट्रीट फूड खाने से बचना चाहिए।
0: क्योंकि खान पान की ही बात चल रही है डॉक्टर साहब, बीते दिनों हमने देखा कि प्रदेश में कुछ स्थानों पर फूड पॉइजनिंग की घटनाएं सामने आई, लोग बीमार हुए। तो पहली बात तो यह कि फूड पॉइजनिंग हुआ है, ये कैसे हम पता करेंगे, कैसे पता चलेगा कि फूड पॉइजनिंग हुआ है? दूसरा ये कि इस तरह के मामले अक्सर गर्मी के मौसम में क्यों बढ़ जाते हैं?
1: देखिए, फूड पॉइजनिंग में गर्मी के दिनों में फूड पॉइजनिंग के केसेस बढ़ जाते हैं, अस्पताल में इनके मरीज ज़्यादा आते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि या तो भोजन दूषित हो या बासी भोजन का सेवन किया गया हो। इन परिस्थितियों में फूड पॉइजनिंग के केसेस आते हैं, क्योंकि गर्मी में बैक्टीरिया का ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। यदि खाना बासी है, बाहर रखा हुआ है, तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। साथ ही दूध, मांस, मछली, मिठाइयाँ, ये सभी खाद्य पदार्थ बहुत जल्दी खराब होते हैं। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि हमेशा ताज़ा भोजन का ही सेवन किया जाए।
0: जी, कौन कौन सी बीमारियां जो हैं गर्मी के मौसम में तेजी से फैलती हैं?
1: गर्मी के मौसम में बहुत सारी बीमारियां बहुत ही तेजी से फैलती हैं, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, जैसे डायरिया, फूड पॉइजनिंग, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, क्योंकि मच्छरों की भी संख्या बढ़ जाती है। साथ ही गर्मी से संबंधित बीमारियां, हीट रिलेटेड इलनेस, साथ में कई मरीजों को पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन होने लगता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन की कंडीशन में पानी की कमी हो जाती है और पेशाब कम हो जाता है, तो इसकी वजह से उनके पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और स्किन इन्फेक्शन भी इन दिनों काफ़ी बढ़ जाते हैं, यदि मरीज फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट इस
0: जी
1: सीजन में ज़्यादा आने लगते हैं।
0: जी मौसम बहुत लगातार अभी पिछले कुछ दिनों में बदला है, सुबह धूप और शाम को बारिश हो जा रही है, ऐसी परिस्थितियों में किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?
1: देखिए, सुबह धूप और शाम को बारिश हो रही है, ये बदलता हुआ मौसम में हमें बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इन दिनों सुबह शाम जब पानी गिरने का समय बताया जा रहा है, इन समय हमें अपने साथ छाता, रेनकोट हमेशा रखना चाहिए, ताकि हम भीगने से बचें। और सपोज यदि भीग जाते हैं, तो भीगे हुए कपड़े में हमें ज़्यादा देर नहीं रहना है, इससे फंगल इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही साथ अचानक ठंडा गर्म होने से भी बचना चाहिए। शाम को मच्छर से बचाव जरूर करना चाहिए।
0: अब प्रशासन की ओर से जो दिशा निर्देश हैं डॉक्टर साहब, उसके बारे में बात करते हैं। प्रशासन किन किन बातों का निर्देश देता है, और साथ ही क्या क्या व्यवस्थाएं जो हैं आम लोगों के लिए, जो गर्मी से बचाव के लिए जो शासन की जिम्मेदारी है वो दी जाती है, क्या क्या सुविधाएं स्वास्थ्य केंद्रों में उपलब्ध होती हैं?
1: शासन स्तर पर गर्मी से बचाव के लिए हीट स्ट्रोक से बचाव के

0: के लिए समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। हमारे जितने भी स्वास्थ्य संस्थाएं हैं, सभी संस्थानों में लू से बचाव के सारे संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं और मरीजों को ओआरएस काउंटर बनाकर उन्हें ओआरएस प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही यदि मरीज कोई गंभीर स्थिति में पहुंच रहा है, हीट स्ट्रोक का मरीज है, गंभीर है, तो उसे तत्काल जिला अस्पताल भेजकर उसकी इलाज की संपूर्ण व्यवस्था की गई है।
1: आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम को बहुत सारे हमारे श्रोता इस वक्त सुन रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे अगर वो बीमार पड़ रहे हैं या उनमें किसी तरीके के लक्षण आ रहे हैं, तो उन्हें त्वरित तौर पर सबसे पहले क्या करना होगा?
0: देखिए, त्वरित तौर पर यदि किसी भी लू लगने के लक्षण लग रहे हैं तो प्रारंभिक अवस्था में तो घर में ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उन्हें तत्काल किसी छाँव में ठंडे स्थान पर लिटा दिया जाए, उनके बदन को गीले कपड़े से पोंछा जाए और ओआरएस का घोल पिलाया जाए। इन परिस्थितियों में सामान्य अवस्था तो कंट्रोल की जा सकती है, लेकिन यदि मरीज बेहोश होने लगे, उसकी स्थिति ज़्यादा गंभीर होने लगे, तो तत्काल 108 नंबर पर फोन करके जो भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पर मरीज को हमें तत्काल पहुँचाना है ताकि उसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
1: कहाँ कहाँ मिल सकती है ये स्वास्थ्य सेवाएं? स्वास्थ्य केंद्रों में, किन किन स्वास्थ्य केंद्रों में, किन किन जगहों पर किस तरह की व्यवस्थाएं शासन की ओर से की जाती हैं?
0: हमारे प्रदेश के समस्त स्वास्थ्य केंद्रों में जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र, हमर क्लिनिक, सभी जगहों पर गर्मी और लू से बचाव के सारे संसाधन उपलब्ध हैं।
1: डॉक्टर साहब, गर्मी के दिनों में क्या सिर्फ पानी पीना पर्याप्त है, और डिहाइड्रेशन के लिए किन किन बातों का ख्याल रखना होता है?
0: नहीं, केवल प्यास लगने पर ही पानी पीना अपने आप में पर्याप्त नहीं माना जाता है, क्योंकि प्यास लगना डिहाइड्रेशन का एक लेट साइन है, देर से आने वाला संकेत है। डिहाइड्रेशन के संकेत होते हैं गहरे पीले रंग का पेशाब होना, कम पेशाब का आना, सूखे होंठ, मुंह का सूखापन, थकान, चिड़चिड़ापन, सिर में दर्द होना, त्वचा का सूखना। और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए रोजाना कम से कम 3.5 से 4.5 लीटर पानी का सेवन करना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, काफी जानकारी हमारे श्रोताओं को मिली है। अंत में आप हमारे श्रोताओं से क्या कहना चाहेंगे, क्या जरूरी सलाह देना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
0: मैं सभी श्रोताओं को यह संदेश देना चाहूँगा कि गर्मी से हमें लड़ना नहीं है, गर्मी के साथ जीना सीखिए, पानी को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए, शरीर की बातें सुनिए, थकान, चक्कर, कम पेशाब, ये सारी चेतावनियाँ हैं, इन्हें हमें गंभीरता से लेना चाहिए। साथ ही समाज में बुजुर्गों, बच्चों और मजदूर वर्ग का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई लक्षण दिखे तो तत्काल 108 पर कॉल करें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।
1: डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी, धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के रायपुर जिला निगरानी अधिकारी डॉक्टर विमल किशोर राय से ली गई भेंटवार्ता। अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।

0: बातों बातों में इस कार्यक्रम में आपने सुना गर्मी के मौसम में लू से बचाव और सावधानी पर डॉक्टर विमल किशोर राय से ली गई भेंटवार्ता। प्रस्तुतकर्ता थे विकल्प रंजन शुक्ला। अगला कार्यक्रम कुछ ही पलों में। मीडियम वेव 305.81 मीटर।
1: अभी आप सुन रहे थे समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस वक्त सुबह के 9:15 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

दम लगा के आयशा फिल्म का ये गाना आपने सुना। वरुण ग्रोवर की बोलते हैं अनु मलिक की तरह से। और अब कार्यक्रम का आखिरी गाना अरिजीत सिंह की आवाज, फिल्म का नाम है छिछोरे, अमिताभ भट्टाचार्य, प्रीतम।

0: और ये थी आज के चित्रलोक कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। और चलते चलते आपको एक जरूरी सूचना दे दें कि विविध भारती सृजन भारती का आयोजन कर रहा है और इस सृजन भारती में क्या होने वाला है। अगर आप मुंबई में हैं तो 21 तारीख की शाम 6:30 बजे जरूर आइए। सारा ब्यौरा इस प्रोमो में है। जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर। 21 मई शाम 6:30 पर लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा।

0: वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
1: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में जिस शख्सियत की आज बातें हो रही हैं, उनकी कहानी शुरू होती है हिंदी सिनेमा के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर के साथ। वो एक्शन डायरेक्टर जिसने स्लमडॉग मिलियनियर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के स्टंट्स का डायरेक्शन किया।

0: बेटा सेल्फी ले ले रे।
1: फिल्मी दुनिया में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है इस एक्शन डायरेक्टर का, लेकिन ये नहीं है हमारे आज के फनकार। हमारे आज के फनकार हैं इनके बेटे। हमने बात की जिस एक्शन डायरेक्टर की, उनका नाम है श्याम कौशल, और आज के फनकार हैं इनके बेटे, जाने माने अभिनेता विकी कौशल।

विकी कौशल मुंबई के एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए। वैसे तो इनका परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था, लेकिन विकी कौशल मुंबई के मलाड उपनगर में पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े। और असल में उनके पिता ने 70 के दशक से आगे कड़ा संघर्ष किया और वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर बन गए थे। जाहिर है घर में फिल्मों का माहौल था और इसीलिए विकी कौशल को फिल्मों का माहौल घुट्टी में मिला था।

की माँ वीणा एक गृहिणी हैं और इसके अलावा परिवार में एक भाई भी है सनी कौशल, जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और माय फ्रेंड पिंटू और गुंडे जैसी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। बहरहाल बातें विकी कौशल की हो रही हैं, उनके बचपन की हो रही हैं। हमने आपको बताया कि विकी का जो परिवार है वो मलाड में रहता था और बचपन से ही फिल्मों का माहौल मिला क्योंकि पिता थे एक्शन डायरेक्टर। बचपन से ही विकी कौशल के शौक थे फिल्में देखना और क्रिकेट खेलना। मुंबई में उनकी स्कूली शिक्षा जब हो रही थी तो वो छोटी छोटी स्किट्स करते थे, ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे और इसके अलावा फैंसी ड्रेस और डांस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सेदारी किया करते थे। पिता ये सोचते थे कि बेटा टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाए, एक अच्छा इंजीनियर बने। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विकी कौशल ने आगे दाखिला लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और इस तरह से अपने पिता की इच्छा के मुताबिक वो बन गए एक इंजीनियर। एक आईटी कंपनी में विकी कौशल काम कर रहे थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी लेकिन मन में कहीं एक बेचैनी थी। बेचैनी का एक उबाल आया, उन्होंने ये महसूस किया कि ये वो काम नहीं है जो वो जिंदगी भर करना चाहते हैं, उन्हें तो फिल्मों में करियर बनाना है। थोड़े दिन उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी और इसके बाद अपने पिता से कहा कि वो फिल्मों के सेट पर जाना चाहते हैं। थोड़े दिन ये भी किया और आगे चलकर मुंबई में किशोर नमित कपूर की एक्टिंग एकेडमी में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया ताकि अभिनय की बारीकियां सीख पाए। आगे चलकर विकी कौशल ने अनुभव हासिल करने के लिए नसीरुद्दीन शाह और मानव कॉल के थिएटर ग्रुप्स के साथ ड्रामा भी किया, रंगमंच पर भी सक्रिय रहे और फिर उनकी मुलाकात हुई अनुराग कश्यप से। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बन रही थी और इस फिल्म की यूनिट में विकी कौशल बतौर सहायक निर्देशक शामिल हो गए।

साल 2012 चल रहा था। गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 में विकी कौशल ने न केवल सहायक निर्देशन किया बल्कि छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। इसके बाद हुआ ये कि अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक नए निर्देशक नीरज गायवान को मौका दिया, जिसने बनाई फिल्म मसान। और इस फिल्म के जरिए विकी कौशल रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आए। एक ऑफबीट कला फिल्म में, बिल्कुल अलग तरह की फिल्म में, और उन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान कायम की।

साल 2015 में मसान आई और साल 2016 में आई विकी कौशल की फिल्म रमन राघव। आज लोग इस फिल्म में उनके अभिनय की

वैसे एक दिलचस्प बात आपको बता दें, साल 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक फिल्म बनाई लव शव ते चिकन खुराना, इसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। 2016 में विकी कौशल की एक फिल्म आई जुबान।

2018 में विकी कौशल ने एक रोमांटिक फिल्म की जिसका नाम था लव पर स्क्वायर फुट। अब तक एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर विकी कौशल की अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। फिर यूं हुआ कि एक जाने माने लेखक हैं हरिंदर सिंह का, जिनका नॉवेल कॉलिंग सहमत पढ़ा मेघना गुलजार ने, जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजी। राजी में विकी कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार निभाया था और आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया था। सहमत और इकबाल की शादी हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम कितना नाटकीय बन जाता है, इसी की कहानी थी राजी।

फिल्म संजू के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार उन्होंने अभिनेता गजराज राव के साथ शेयर किया था, जिन्हें फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता माना गया था। साल 2018 में विकी कौशल ने काम किया फिल्म मन मर्जियां में।

0: साल 2019 विकी कौशल की एक फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म में विकी कौशल ने विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था। फिल्म उरी न केवल कमर्शियल सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गई बल्कि इसने विकी कौशल का झंडा भी बहुत ऊंचा बुलंद किया।
1: जिद है मेरी।

इसके बाद विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार ऊधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। साल 2022 में विकी कौशल की एक फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में उनकी सह कलाकार थी भूमिका पेडनेकर और कियारा अडवाणी। साल 2020 में विकी कौशल ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था भूत पार्ट वन द हॉन्टेड शिप। साल 2021 में विकी कौशल ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से ब्याह रचा लिया।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह की 9:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगी प्रादेशिक समाचार।
1: मीडियम वेव FM बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है, आप सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा और छत्तीसगढ़ में द्वीपती योजना के तहत गांवों में सोलर दीदी तैयार की जाएंगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 19 मई को बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री श्री साय ने कल मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस्तर में इस राष्ट्रीय स्तर की बैठक का आयोजन प्रदेश के लिए गौरव की बात है। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए राज्य शासन 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाएगा। ये अभियान प्रदेश के 8,000 से अधिक गांवों में संचालित होगा। आदिम जाति विकास विभाग के इस अभियान

0: के तहत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़े गांवों को शामिल किया गया है। रायपुर जिले को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पोषण और पेयजल योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को ऊर्जा क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए द्वीप्ति योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत गांवों में सोलर दीदी तैयार की जाएंगी, जिन्हें सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना, संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये महिलाएं सोलर मिल, कोल्ड स्टोरेज और सिंचाई जैसी ऊर्जा सुविधाओं का संचालन करेंगी। योजना में क्लस्टर लेवल फेडरेशन को महिला ऊर्जा सहकारी समितियों के रूप में विकसित किया जाएगा। महासमुंद और बस्तर के कुछ समूह पहले ही विक्रेता के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं। बस्तर संभाग में नक्सलवाद की समस्या समाप्त हो जाने के बाद अब विभिन्न जिलों में माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए डंप को बरामद करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसके लिए सुरक्षा बलों द्वारा सतत रूप से अभियान चलाया जा रहा है। कांकेर जिले में इस अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए डंप से 50 से अधिक हथियार तथा गोला बारूद बरामद किया है। इसमें SLR 303 राइफल, सिंगल शॉट देसी गन, BGL लॉन्चर, भरमार बंदूक, देशी कट्टा और कुकर बम सहित विभिन्न हथियार शामिल हैं। जगदलपुर में कल डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए क्षमता विकास कार्यशाला आयोजित की। बस्तर चैंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में बस्तर संभाग के लगभग 180 ग्रामीण डाक सेवकों ने हिस्सा लिया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए महानिदेशक डाक सेवाएं जितेंद्र गुप्ता ने कहा कि ग्रामीण डाक सेवक दूरस्थ क्षेत्रों में डाक, बैंकिंग, बीमा और सामाजिक सुरक्षा सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। सर्वोच्च न्यायालय ने ईंधन बचाने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। इनमें वर्चुअल सुनवाई, न्यायाधीशों की कारपूलिंग और 50% रजिस्ट्री कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था शामिल है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने कल वर्चुअल माध्यम से मनेन्द्रगढ़ में कुटुंब न्यायालय के नए भवन और जनकपुर में न्यायिक कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कल कबीरधाम जिले के बोड़ला विकासखंड के बैगा बहुल ग्राम सिंघारी में विशेष पिछड़ी जनजाति के विद्यार्थियों के लिए 50 सीटर छात्रावास भवन का भूमि पूजन किया। रायपुर ग्रामीण पुलिस ने विधानसभा थाना क्षेत्र में 620 लीटर डीजल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। और आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। छत्तीसगढ़ के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा। और छत्तीसगढ़ में द्वीप्ति योजना के तहत गांवों में सोलर दीदी तैयार की जाएंगी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक हिंदी समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से FM बैंड 103.2 MHz पर। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस वक्त दिन के 10 बजे हैं। लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का कार्यक्रम अमराई। कार्यक्रम अमराई में आज आप जिन कलाकारों के गीत सुनेंगे उनके नाम हैं रामेश्वर खांडे, राम नारायण ध्रुव और साथी। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं रामेश्वर खांडे के गाए इस लोकगीत के साथ।

रामेश्वर खांडे के स्वर में अभी आप सुन रही थी पंथी गीत। कार्यक्रम अमराई का अगला लोकगीत आइए अब सुनते हैं रामनारायण ध्रुव और साथियों की आवाजों में।

0: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
1: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
0: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
1: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
0: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
1: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
2: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
3: आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं छत्तीसगढ़ी लोक गीतों के कार्यक्रम अमराई का। आइए अब सुनते हैं रामेश्वर खांडे और साथियों की आवाजों में ये धरती गीत।

अभी आप सुन रहे थे रामेश्वर खांडे और साथियों की आवाज़ों में ये धरती गीत। कार्यक्रम अमराई का अगला लोकगीत लीजिए, पेश है राम नारायण ध्रुव और साथियों की आवाज़ों में।

राम नारायण ध्रुव और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने सुना ये लोकगीत। आइए अब सुनते हैं भजन निशुबन जारे की आवाज़ में।

इंदिरा चंद्राकर और संती यादव के गाए इस लोकगीत के साथ ही कार्यक्रम अमराई का ये अंक हम यहीं संपन्न करते हैं। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस वक्त दिन के 10:30 हुए हैं। आइए श्रोताओं, अब आनंद लेते हैं नए फिल्मी गीतों के कार्यक्रम नए तराने का।

कार्यक्रम नए तराने में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत श्रोताओं। कार्यक्रम नए तराने की शुरुआत करते हैं हम एक्शन रिप्ले फिल्म के इस गीत के साथ जिसे गाया है श्रेया घोषाल ने। गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने और धुन बनाई है प्रीतम ने।

अभी आप सुन रही थी श्रेया घोषाल की आवाज में एक्शन रिप्ले फिल्म का ये नगमा, इरशाद कामिल के बोल और प्रीतम का संगीत। आइए अब सुनते हैं प्रीतम के ही संगीत निर्देशन में नीलेश मिश्रा का लिखा ये नगमा, जिसे अपनी आवाज दी है तुलसी कुमार और केके ने। फिल्म का नाम है रेडी।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए तराने, और कार्यक्रम नए तराने में और भी तराने हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले समय हो चला है श्रोताओं ट्रैफिक अपडेट के पुनः प्रसारण का। तो आइए सुनते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
3: नमस्कार मित्रों, मैं हूं उमाशंकर पांडे। अब आप सुनेंगे ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर।

0: साथ अपने जिले की आज की यातायात व्यवस्था संबंधी जानकारी। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज महिलाओं के अखंड सुहाग संबंधी वट सावित्री का पर्व है। शुभकामनाएं। आज बरगद के वृक्ष की पूजा का विधान है। महिलाएं आज सुबह से लेकर दोपहर तक जगह जगह वट वृक्ष की पूजा परिक्रमा बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ करते देखी जा सकती हैं। कहीं कहीं सड़कों के किनारे स्थित वट वृक्ष में बड़ी संख्या में पूजा अर्चना हेतु महिलाएं आती हैं। कुछ महिलाओं के साथ छोटे बच्चे भी आते हैं। चूंकि महिलाएं पूजा में व्यस्त होती हैं और सड़कों में छोटे से लेकर भारी से भारी वाहनों से सर्वथा अनजान ये बच्चे सड़कों में खेलने लगते हैं, अतः उन सभी महिलाओं से अनुरोध है जिनके साथ ये छोटे बच्चे आए हैं उनके प्रति पर्याप्त ध्यान रखें या बच्चों की देखभाल के लिए किसी को साथ में लाएं। इसके साथ ही शहर से लेकर गांव-गांव तक सभी सड़कों में यातायात व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है। मित्रों, प्रकृति की विशिष्ट कृतियों में से नारी एक है। आज के परिवेश में स्त्री पुरुष से कम नहीं है। जहां जहां पुरुष है वहां वहां नारी भी है। पुरुषों की तरह सड़कों में दो पहिया, तीन पहिया या चार पहिया वाहन ये बाखूबी दौड़ा रही हैं। इतना ही नहीं, पुरुषों के वाहन से आगे भी निकल रही हैं। निश्चित रूप से ये मानव समाज की अभिन्न अंग महिलाओं की इस उपलब्धि को देखकर हम सभी को गर्व होता है। किंतु कहीं कहीं इन महिलाओं को और भी सजग या चैतन्य होने की आवश्यकता है। कई बार दो पहिया वाहन लेकर चल रही महिलाओं की चुन्नी या साड़ी का पल्लू हवा में लहराता रहता है। यह साड़ी का पल्लू या चुन्नी के हर पल स्वयं के वाहन के पहिए में या अगल बगल से गुजर रहे किसी अन्य वाहन से अथवा बिजली के पोल आदि से उलझने की आशंका बनी होती है। एक बार नहीं, अनेकों बार इस प्रकार की गंभीर सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। अतः इन वस्त्रों को विशेष संभाल कर रखें, क्योंकि हवा में उड़ता हुआ लाल दुपट्टा सिर्फ फिल्मों में शोभा देता है, यथार्थ जीवन में ये घातक है। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: अभी आपने सुना आज का ट्रैफिक अपडेट। और श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं शांतनु मोइत्रा की संगीत निर्देशन में अमिताभ वर्मा का लिखा ये नगमा, जिसे गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल ने। फिल्म का नाम है पीके।

0: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
1: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
0: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
1: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
0: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
1: क्यों?
0: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
2: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
3: आकाशवाणी बिलासपुर से इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम नए तराने का। इसी कड़ी में आइए अब सुनते हैं अन्वेषा अविदत्ता, पुनीत शर्मा और शाहीन की आवाजों में रिवाल्वर रानी फिल्म का ये नगमा, जिसे लिखा है इकबाल कुरैशी ने और संगीतबद्ध किया है संजीव श्रीवास्तव ने।

कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं रॉकी हैंडसम फिल्म का ये नगमा श्रेया घोषाल और इंदर बावरा की आवाज़ों में। मनोज मंतसिर का लिखा ये गीत है और धुन बनाई है सागर लहरी, सन्नी और इंदर बावरा ने।

0: रॉकी हैंडसम फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नए तराने हम यहीं संपन्न करते हैं। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। दिन की 11 बजे हैं। आइए श्रोताओं, अब जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।
2: रंग तरंग
1: रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अनजान का लिखा यह गीत। संगीत सपन जगमोहन का है।

देश में निकला होगा चांद और मधुर मन में गीत गाता होगा। सुनते हैं आशा भोसले और साथियों की आवाजों में भरत व्यास का लिखा ये गीत। संगीत रमेश नायडू का है।

मन अड्डे के स्वर में आपने सुना ये गीत श्याम सागर का संगीत था। और अब सुनते हैं इंद्राणी रिजवी और राजकुमार रिजवी की गाई ये गजल। कलाम डॉक्टर बशीर बद्र का है और संगीत है बेनी सतमाकर का।

आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम मैटनी शो। मैटनी शो में आज बातें और गाने उन फिल्मों के जो अपनी रिलीज के बरस के मुताबिक आज उम्र के खास पायदान पर जा पहुंची हैं, यानी साल 2026 में या तो पहुंच चुकी हैं या पहुंच जाएंगी। रिलीज से अब तक 25 बरस या 50 बरस का सफर पूरा कर चुकी हैं या कि आने वाले महीनों में पूरा कर लेंगी ये फिल्में। तो सबसे पहले बात करते हैं फिल्म लगान की। साल 2001 में रिलीज हुई ऐतिहासिक खेल ड्रामा फिल्म लगान, निर्माता आमिर खान और निर्देशक आशुतोष गोवारिकर। इस फिल्म की पृष्ठभूमि थी ब्रिटिश शासनकाल, जिसमें एक छोटे से गांव के लोग करों के बोझ से दबे हैं और उस पर सूखा पड़ जाता है। ऐसे में एक घमंडी ब्रिटिश अधिकारी उनके सामने क्रिकेट खेलने की शर्त रखता है। गांव वालों के लिए ये बिल्कुल नया खेल है, उन्हें क्रिकेट सीखना भी होगा और जीत के लिए खेलना भी होगा। फिल्म की कहानी आशुतोष गोवारिकर ने लिखी थी और इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थी आमिर खान और क्रेसी सिंह ने। चुनौतीपूर्ण कहानी को फिल्म का रूप देने में कई चुनौतियां आईं और आखिरकार ये फिल्म 15 जून 2000 को सिनेमा घरों में रिलीज हुई। देखते ही देखते साल 2001 की सफलतम फिल्मों में शुमार होने लगा फिल्म लगान का और जल्द ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना एक खास मुकाम बनाया इस फिल्म ने। साथ ही मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे के बाद एकेडमी पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की कैटेगरी में नामांकित होने वाली फिल्म भी ये बन गई। गीत संगीत बहुत मधुर था। चलिए इस गीत की एक झलक सुनते हैं।

मायूसी के वक्त में करुण पुकार बनकर ऊपर वाले को पुकारने वाली ये प्रार्थना वाकई बहुत हिट हुई और साथ ही फिल्म लगान भी आज भी प्रासंगिक है और इसके गीत तो और भी धूम मचाते रहे हैं। फिल्म का संगीत दिया था ए आर रहमान ने, तो आइए अब सुनते हैं ये गाना।

उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह और श्रीनिवास की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा यह गीत आपने सुना, और हमने जैसा कि बताया था एआर रहमान का संगीत था इस फिल्म में। और अब अगर हम बात करें तो बात हो रही है उस फिल्म की जो जून में ही रिलीज हुई थी, 15 जून 2001 को, और काफ़ी हिट हुई थी। ये फिल्म थी गदर। अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित ये फिल्म शक्तिमान तलवार की कहानी पर आधारित थी, जिसमें ऐतिहासिक एक्शन ड्रामा का ताना बाना बुना गया था। 1947 की पृष्ठभूमि में घटित होती घटनाओं के बीच तारा सिंह और सकीना की प्रेम कहानी कैसे परवान चढ़ती है और कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचती है, यही इस फिल्म में दिखाया गया था। मुख्य भूमिकाएं निभाई थी सनी देओल, अमीषा पटेल, अमरीश पुरी, विवेक शौक, लिलिट दुबे और उत्कर्ष शर्मा ने। 25 बरस पहले रिलीज हुई ये फिल्म, इसके संवाद आज भी लोगों की जुबान पर हैं और साथ ही इसके गीत भी अक्सर गुनगुनाए जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

और ये जो गाना आपने सुना गदर फिल्म का, उदित नारायण, अलका याग्निक और निहार की आवाजों में था, आनंद बख्शी का लिखा हुआ गीत था और उत्तम सिंह का संगीत था। 2001 से अब चलते हैं 1976 की ओर। फिल्म चरस, एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसे निर्माता निर्देशक रामानंद सागर ने बनाया था। फिल्म में धर्मेंद्र हेमा मालिनी की जोड़ी का जादू सिर चढ़कर बोला और साथ में नजर आए अजीत, अमजद खान, अरुणा ईरानी और असरानी। नशे की तस्करी के काले पहलू को दर्शाती हुई ये फिल्म बहुत हिट रही और इसका संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनते हैं ये गाना।

गाना आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, आनंद बख्शी की आवाज शुरू में गीत के आपको सुनाई दी होगी। और आनंद बख्शी का ही लिखा ये गीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था। 1976 की फिल्मों की बात हो रही है तो कई फिल्में इस साल रिलीज हुई थी, नागिन, लाला मजनू, कभी कभी, दस नंबरी, हेरा फेरी, चरस की तो हमने बात की अभी, फकीरा, कालीचरण, माँ, दो अनजाने, नहले पे दहला, शंकर दादा, बारूद, चिच्चोर, छोटी सी बात, ये सभी फिल्में काफ़ी हिट रही थी। हालांकि फिल्में तो बहुत सारी रिलीज हुई थी, लेकिन हम उन फिल्मों की बात कर रहे हैं जिन्होंने बहुत सारी भीड़ बटोरी थी। अब बात कर रहे हैं फिल्म बारूद की, जो 2 अप्रैल 1976 को रिलीज हुई थी। बारूद फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आए थे अशोक कुमार, ऋषि कपूर, शोमानंद, अजीत और रीना रॉय। और इस फिल्म का संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने। तो चलिए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। दिन के 11:55 होने वाले हैं। अब से कुछ ही देर में आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: मीडिया और एफएम बैंड पर आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। 11:55 होने को हैं। आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार आप सुनिए।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कांकेर जिले में माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और गोला बारूद बरामद। और महासमुंद पुलिस ने अपहरण के एक मामले में 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 19 मई को बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। बैठक की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री श्री साय ने कल मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बस्तर में इस राष्ट्रीय स्तर की बैठक का आयोजन प्रदेश के लिए गौरव की बात है। राज्यपाल रमन डेका ने कबीरधाम जिले में विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को वर्षा जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे भूजल स्तर बढ़ाने में मदद मिलेगी। राज्यपाल ने हर पक्के भवन और प्रधानमंत्री आवास में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने तथा खेतों में डबरी निर्माण को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कांकेर जिले में सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपा कर रखे गए डंप से 50 से अधिक हथियार तथा गोला बारूद बरामद किया है। इसमें एसएलआर 303 राइफल, सिंगल शॉट देसी गन, बीजीएल लॉन्चर, भरमार बंदूक, देशी कट्टा और कुकर बम सहित विभिन्न हथियार शामिल हैं। महासमुंद जिले की सरायपाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अपहरण के एक मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 14 मई को सूचना मिली थी कि कुछ लोग एक व्यक्ति का अपहरण कर उसे कार से ओडिशा ले जा रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस ने नाकेबंदी कर वाहन को रोक लिया और अपहृत युवक को सुरक्षित मुक्त कराया। पूछताछ में पता चला कि आरोपियों ने उधारी की रकम वसूलने के लिए युवक का जबरन अपहरण किया था। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल कार जब्त कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन संरक्षण की अपील का समर्थन करते हुए नई दिल्ली स्थित अपने आवास से संकल्प भवन तक 3 किलोमीटर साइकिल चलाई। इस अवसर पर श्री साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस और वर्चुअल

0: मीटिंग को फिर शुरू करने का आह्वान अनिश्चित वैश्विक परिस्थितियों के बीच व्यापक राष्ट्रीय हित में है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रमेश सिन्हा ने कल वर्चुअल माध्यम से मनेन्द्रगढ़ में कुटुंब न्यायालय के नए भवन और जनकपुर में न्यायिक कर्मचारियों के लिए आवासीय भवनों का भूमि पूजन और शिलान्यास किया। जगदलपुर में कल डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवकों के लिए क्षमता विकास कार्यशाला आयोजित की। इस कार्यक्रम में बस्तर संभाग के लगभग 180 ग्रामीण डाक सेवकों ने हिस्सा लिया। बालोद जिले की जीवनदायिनी तांदुला नदी के पुनर्जीवन और इको रिवर फ्रंट विकास परियोजना के तहत कल यूएवी ड्रोन सर्वेक्षण कार्य का शुभारंभ किया गया। बिलासपुर में 7 वर्ष पहले 2019 में हुए विराट अपहरण कांड में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने सभी 5 आरोपियों की अपील खारिज कर उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। और आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस दिवस का उद्देश्य डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मानसून से पहले इसके खिलाफ निवारक उपायों को मजबूत करना है। छत्तीसगढ़ का स्मार्ट रजिस्ट्री मॉडल अब देशभर के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बनकर उभरा है। भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग के सचिव नरेंद्र भूषण ने राज्य के पंजीयन तथा मुद्रांक विभाग द्वारा किए गए तकनीकी नवाचारों और नागरिक केंद्रित सुधारों की सराहना की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 मई को बस्तर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कांकेर जिले में माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए हथियार और गोला बारूद बरामद। और महासमुंद पुलिस ने अपहरण के एक मामले में 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम आकाशवाणी रायपुर से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। दिन की 12 बजे हैं। अब से लेकर संध्या 5 बजे तक हम जुड़े रहेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित करेंगे। समारोह में हजारों लोगों के शामिल होने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंचे, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। विभिन्न आयु वर्ग के लोग पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुतियों के साथ उनका स्वागत करने के लिए एकत्रित हुए। प्रवासी भारतीयों ने भोजपुरी गीत से प्रधानमंत्री का स्वागत किया।

इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। इस सामुदायिक कार्यक्रम में भारत नीदरलैंड संबंधों, प्रवासी समुदायों की भूमिका और भारत की वैश्विक पहुंच पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। सरकार ने तेल निर्यात पर उत्पाद शुल्क में परिवर्तन किया है। पेट्रोल के निर्यात पर 3 रुपये प्रति लीटर का विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया गया है। डीजल के निर्यात पर यह शुल्क 23 रुपये से घटाकर 16 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर कर दिया गया है। विमान ईंधन पर भी इसे 33 रुपये प्रति लीटर से घटाकर 16 रुपये कर दिया गया है। घरेलू खपत के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन पदभार ग्रहण करने के बाद आज सिक्किम की अपनी पहली यात्रा पर जाएंगे। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति गंगटोक में सिक्किम के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग, साथ ही उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। नीट यूजी परीक्षा 21 जून को होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के उम्मीदवार बृहस्पतिवार तक वर्तमान पता और प्रथम तथा दूसरी वरीयता के शहर का नाम अपडेट कर सकते हैं। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित हुई नीट परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई थी। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही

0: है। त्रिपुरा में कानून व्यवस्था और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने एक अतिरिक्त इंडिया रिजर्व बटालियन के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इसके गठन के लिए 50 करोड़ रुपए का एकमुश्त वित्तीय अनुदान और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए तक की राशि मंजूर की है। मुख्यमंत्री माणिक साह ने आशा कार्यकर्ताओं के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और देश के कई अन्य हिस्सों में हुई तेज वर्षा और तूफान से हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार प्रभावित राज्यों को हर संभव सहायता प्रदान कर रही है। मौसम विभाग ने आज झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में लू चलने का पूर्वानुमान लगाया है। विभाग ने कोंकण और गोवा में भी दिन भर गर्म और उमस भरे मौसम की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, दक्षिणांतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा की संभावना जताई है। आज राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने नागरिकों से डेंगू की रोकथाम के प्रति जागरूकता बढ़ाने और स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। इस वर्ष का विषय है डेंगू नियंत्रण के लिए सामुदायिक भागीदारी, जांच करें, साफ करें और ढकें। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हराया। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष डबल सेमीफाइनल में आज सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के नूर इजुद्दीन और गो सीफेई की जोड़ी से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं आमने सामने फिल्म के इस गीत से। मोहम्मद रफी की आवाज है, आनंद बख्शी के बोल हैं और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

आनंद बख्शी का लिखा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीतबद्ध किया हुआ अगला गाना मस्ताना फिल्म से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें हैं।

शोर मचाते मनमोर के अंदर एक सवाल। आसरा फिल्म का ये गाना लेकर आ रहा है लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोलों को संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को थमारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

यादों की महफिल प्रोग्राम में अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी का गाया हुआ उपहार फिल्म का गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

जैसे कि आप जानते हैं विविध भारती हर महीने करता है अपनी एक महफिल सृजन भारती। इस बार सृजन भारती लेकर आ रहा है लोक संगीत की भीनी खुशबू और कुछ दिलचस्प बातों का गुलदस्ता। और ये कार्यक्रम होगा एक मुक्ताकाशी रंगमंच पर 21 मई शाम 6:30 पर। लोक संगीत और कुछ दिलचस्प बातों से सजा रंगारंग कार्यक्रम। आयोजन स्थल है ज्ञान सागर मुक्ताकाशी ऑडिटोरियम रघुनाथ टावर के सामने देवीदास लेन बोरीवली पश्चिम मुंबई। प्रवेश बिल्कुल मुफ्त। आप सभी खुद आएं और अपने दोस्तों को लेकर आएं।

आए दिन बहार के फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में, बोल आनंद बख्शी के थे, धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और अब इसी जोड़ी का एक और गीत सुनवा रहे हैं महबूब की मेहंदी फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में।

किशोर कुमार और साथियों के स्वरों में आपने सुना फिल्म राजपूत का ये गाना, और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में राजा मेहंदी अली खान के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

यादों के महफिल कार्यक्रम में चलते चलते राजा जानी फिल्म का ये गाना सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। बोल आनंद बख्शी के, धुन बनाई लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

नमस्कार, मई की ये तपती हुई दोपहर शीतल छांव में बदल जाएगी जब शुरू होगा एक सुरीला सफर जो कि बस शुरू ही हो गया है। आज है इस कार्यक्रम में आप मेरे यानी राजुल के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप सभी को सादर नमस्कार। सुरीला सफर कार्यक्रम में हम जो इबारत या टेक्स्ट या वाक्यांश पोस्ट करते हैं फेसबुक पर, उसी में वो शब्द समाए होते हैं जिनमें जिन पर कोई गीत सुना जा सकता है, और वो गीत आप अंदाजा लगाते हैं कि कौन से शब्दों पर गीत सुने जा सकते हैं। तो वे बता दें कि आज भी बहुत सारे अंदाजे लगाए गए हैं, और सच में हमारी और आपकी पसंद तो काफ़ी मिलती जुलती सी लग रही है। वैसे अगर आपका हमारी लिस्ट से मैच कर जाए गाना तो वाह वाह, और मान लीजिए आपके गाने अलग भी हैं तो फेसबुक पोस्ट पर आपने जो बताया है हो सकता है वो गाने आज के कार्यक्रम में शामिल कर ही लिए जाएं। तो अब आज की इबारत हम आपको बताए दे रहे हैं उन सभी श्रोताओं के लिए भी जो फेसबुक पर नहीं देख पाए हैं। आज की इबारत है, जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगन विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं, मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया, और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, कभी किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी।

ये पूछो कहाँ नहीं है रोशनी। हाँ तो भाई, रोशनी को लेकर अपने अपने विचार, अपनी अपनी बातें आप सबने रखी हैं, और बहुत सारी ऐसी भी संदेश हैं जिनमें जीवन से जुड़ी हुई बातें छिपी हुई हैं। क्या बात है, संदेशों तक हम आए तब तक एक सवाल पूछ लेते हैं कि रोशनी के लिए हमारे एक श्रोता ने कहा भी है कि शुरुआत हुई थी सूरज की रोशनी से, और उसके बाद बात सूरज की रोशनी की होते होते दिए की रोशनी पर पहुंच गई। सूरज का महत्व अलग है, वो प्रकाश ही नहीं देता, प्राणियों को ऊर्जा भी देता है, जीवन देता है। बिना सूरज के जीवन की कल्पना भी बेईमानी है। रही बात दिए की रोशनी की, तो सूरज के छिप जाने के बाद अंधेरे से लड़ने का प्रबल शस्त्र यदि है तो दिया ही है, जिसकी रोशनी में हम कुछ ताने बाने बुनते हैं और जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात कही है आपने। वाकई दिया सूरज की रोशनी की अनुपस्थिति में जलता है, लेकिन रोशनी तो देता है और बहुत सी बातें भी रोशनी देती हैं। तो दिया की बात चली है तो हमें ये बताइए कि क्या वो वक्त याद है जब, अभी तो हम बिजली का उपयोग करते हैं और बड़े धड़ल्ले से बत्ती जलाते हैं, बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने इन्वर्टर की भी बात कही है, वैसे जब इस बिजली का आविष्कार नहीं हुआ था उस वक्त दिए के अलावा एक और चीज थी जो बहुत सारे घरों में जलती थी। अगर आपने वो देखा हो या उसका नाम याद आ रहा हो तो हमें जरूर बताएं। एक संदेश है कि आज के कार्यक्रम के लिए शब्दों का अनुमान लगाना बहुत रोमांचक है। जलते सूरज और रोशनी के शब्द पर तो कई शब्द हो कई गाने हो सकते हैं। वाह क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि रोशनी सिर्फ अंधेरों को दूर करने का नाम नहीं बल्कि ये उम्मीद, विश्वास और नई शुरुआत का प्रतीक है। जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है हर तरफ एक नई ऊर्जा फैल जाती है। रोशनी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जीवन में हमेशा अपने भीतर उम्मीद और अच्छाई की रोशनी जलाए रखनी चाहिए। बिल्कुल सही। एक और श्रोता का संदेश है, आसमान से जब रोशनी आती है तो वो जर्रे जर्रे में बिखर जाती है, हर तरफ रोशनी ही रोशनी। सुबह सवेरे की रोशनी कितनी सुखद होती है, मगर जो जो धूप चढ़ती है ये रोशनी आंखों को चुभने लगती है, खासकर गर्मी के दिनों में। अगर देखें तो जीवन और रोशनी में बहुत सारी समानताएं हैं, दोनों में ही चुनौती होती है। रोशनी के साथ जुड़ा है धूप छांव का खेल, रोशनी एक उपहार है, अगर ये ना हो तो जीवन कैसा हो जाए। और बाकी सब तो परीक्षा है, ये डर, ये मंजिल तक पहुंचने की सुगबुगाहट। रोशनी को जीवन से जोड़ने का हुनर सीखिए, कभी कभी ये रिश्तों को संजीवनी देने का भी काम करती हैं। क्या बात कही। तो अब कार्यक्रम का ये गाना, बताइए किनके स्वरों में ये गाना है।

0: सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम।
1: बहुत खूब जवाब आ गया। परिणय फिल्म का गाना, जयदेव का संगीत और शर्मा बंधु की आवाजें थी ये इस कार्यक्रम में। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, धूप ज्यादा है, गर्मी बहुत है, मगर काम तो करना पड़ेगा। वैसे ही जैसे बॉर्डर पर हमारे सैनिक हमारी और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, जैसे हमारे किसान हमारे लिए खेतों में अनाज उगाने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं और हमें खाना मिले इसलिए किचन में हमारी माँ बहन बेटी और पत्नी इतनी गर्मी में खाना पकाती है। वाकई गर्मी तो बहुत है। अब सवाल के जवाब की बारी है। हमने पूछा था कि बिजली के आविष्कार के पहले दिए के अलावा कुछ चीजें और भी जलती थीं और कई चीजों के नाम हमारे श्रोताओं ने लिखे हैं। एक श्रोता कह रहे हैं मिट्टी के तेल पर चलने वाला कंदील। एक साथी ने लिखा है डिबरी जलती थी, लालटेन की रोशनी एक साथी का जवाब है। और एक और श्रोता ने बताया कि लालटेन, और लालटेन के पहले थी चिमनी कांच की बोतल में थोड़ा सा घास लेट भरकर एक नाड़ी की बत्ती बनाकर जलाते थे। सुबह उठते थे तो उसका धुआं हमारी नाक पर जम जाता था, इसे ही शायद डिबरी कहते हैं, है ना। एक और श्रोता कह रहे हैं कि जब बिजली नहीं थी तब विकल्प में लालटेन, पेट्रोमैक्स और मशाल से रोशन किया जाता था। भाई ये तो बात है ही है कि कई बार जब हमें वो पुरानी चीजें याद आती हैं, लालटेन जलाने में जो मशक्कत करनी पड़ती थी, कई बार बत्ती चली जाने के बाद, जब बिजली चली जाती थी उसके बाद जब लालटेन जलाई जाती थी तो उसका भी एक अलग ही अनुभव होता था। क्या कभी आपको ऐसा अनुभव हुआ है? एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की गर्मी को शीतल चांद ही ठंडा कर सकता है। वैसे ही जीवन में ऐसे लोग जो दूसरों को नीचा दिखाने में धन्यता मानते हैं, उन्हें शांत और संयमित रहकर शांत कर देना चाहिए। संदेशों की बात करें तो एक

और संदेश है, सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ धूप या रोशनी जीवन के अनुभवों और संघर्षों का भी प्रतीक है, जो इंसान को निखारती है। रोशनी हमें स्पष्टता देती है, जैसे भौतिक रोशनी में हमें चीजें साफ दिखाई देती हैं, वैसे ही ज्ञान की रोशनी हमें सही और गलत में अंतर करने और जीवन के सही फैसले लेने में समझ देती है। एक बड़ा सा संदेश है, काफी सारगर्भित बातें लिखी हैं, हम समय की कमी के चलते थोड़ा छोटा करके पढ़ेंगे। ये अंधेरे और उजाले का क्रम अपने जीवन के सुख दुख के समान ही लगता है, उनके बीच भेद केवल सामयिक के साथ ही अनुभूति परक ही है। दूसरे महत्वपूर्ण भेद जो नजर आते हैं वो ये है कि एक अंधेरे को दूर करने के लिए हमें दीपक जलाने जैसे प्रयास स्वयं करने पड़ते हैं, दूसरे में स्वस्थ प्रकृति से स्वस्थ ऋतु चक्र के चलते सामयिक षड ऋतुओं का चक्र सतत चलता रहता है। आगे लिखते हैं ये कि जब हम ही अपने अज्ञान परक अंधेरे को दूर करने के प्रयास की तरह ही पर्यावरण को प्रदूषित करते रहने का कार्य संपादित करते रहते हैं, फिर भीषण गर्मी जैसे ग्लोबल वार्मिंग का सामना भी तो हमें ही करना पड़ेगा। भाई, कृत्रिम दीपक जलाकर उजाले रूपी आनंद लेने के क्रम में भी तो हम ही हैं। अपने वैदिक संस्कृति में तो सायंकाल में ही शयन और उषा काल में ही चारपाई छोड़ देने का विधान है। आगे लिखते हैं कि हम अपने ही हितपोषक स्वस्थ प्रकृति को अस्वस्थ करते रहने के ही प्रयासों में ही हैं। ऐसे में स्वयं की अज्ञानता से जनित ग्लोबल वार्मिंग के दंश को झेलते रहने में गुरेज कैसा। वाकई बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ इन्होंने ध्यान आकर्षित किया है, और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने अपनी अपनी बात के साथ साथ वो शब्द भी लिखे हैं जिनसे गाने हो सकते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की तरह तो सब चमकना चाहते हैं, पर उसकी तरह जलना किसी के बस की बात नहीं। सुबह सुबह निकलता सूरज किरणों को फैलाता है, जब किरणें धरती पर पड़ती सारा जग खिल जाता है, चिड़िया चहकती, कलियां महकती, फूल भी खिल जाता है, आसमान पे नीला बादल अपना रंग दिखाता है। तो चलिए जरा ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए। और हाँ, ये बताइए कि क्या लालटेन जलाई है आपने कभी?

बहुत बहुत शुक्रिया, एकदम सही जवाब आया। हमराज फिल्म का ये गाना सुनील दत्त साहब का नाम भी लिखा है हमारे कुछ साथियों ने। महेंद्र कपूर की आवाज, साहिर के बोल, रवि का संगीत। और बात कर रहे हैं हमारे साथी कांच से निर्मित लैंप, जिस पर कांच का ही कवर होता था फ्लेम को हवा से बचाने के लिए। इसके अतिरिक्त पेट्रोमैक्स लैंप भी चलते थे बचपन में हमारे घर में। एक और श्रोता ने कहा है, जब बिजली नहीं थी तब अंधेरी रात में लालटेन काम आता था। मैंने छुट्टियों में दूर गांव ननिहाल में लालटेन के उजाले में दिन गुजारे हैं। इसके अलावा पड़ती, समई, चिमड़ी, दिवटी, पलिता, मशाल, दीपमाल, मोमबत्ती, ये भी साधन प्रकाश देते हैं। क्या बात है। एक और श्रोता बता रही हैं कि लालटेन और केरोसिन के पहले महुआ के फल से तेल निकालकर घरों में उसी को जलाया जाता था। और याद किया है एक श्रोता ने उस जमाने को, जब कोई शादी या ऐसे कोई प्रसंग होते थे तो पेट्रोमैक्स चलाकर रोशनी की जाती थी। शीशे वाले लैम्प की याद दिलाई है हमारे एक श्रोता ने। और एक और श्रोता बता रही हैं कि जी जलाई है और उसका शीशा भी साफ किया है। इन्होंने लालटेन की बात कही है। और कितने शीशे तोड़े और डांट खाई पापा की। फिल्म हमराज का नाम भी इन्होंने पहचान लिया। एक और श्रोता ने कहा है कि गांव में पोस्टिंग के दौरान नियमित शाम को बिजली कटौती होती थी, तब हम लालटेन ही चलाते थे। शाम होते ही उसे साफ करके तैयार कर लेते थे। और हमारे जो कविता लिखने वाले श्रोता हैं, उन्होंने एक लंबी सी कविता लिखी है, बहुत खूबसूरत कविता है, लेकिन उस कविता का थोड़ा सा अंश हम पढ़ रहे हैं। जलता रहा वो उम्र भर, मगर किसी ने ये ना पूछा कि जो सबको उजाला देता है उसके हिस्से में आखिर कितनी रातें आती हैं। नीले गगन ने जब कहा तुम अकेले नहीं हो रोशनी के रखवाले, तो सूरज हल्का सा मुस्कुराया, मगर उस मुस्कान के पीछे सदियों की थकान छुपी थी। आगे इन्होंने लिखा है कि मैं जलता हूं तब किसी बच्चे की हंसी में चमक आती है, किसी माँ की दुआ में उजाला रहता है, किसी मुसाफिर को रास्ता मिलता है, किसी उदास चेहरे पर उम्मीद की किरण उतरती है। मगर मेरी किस्मत देख, जिसे भी रोशनी मिली वो उसी का हो गया, कोई मेरा ना हुआ। इतना कहकर सूरज चुप हो गया। उसकी तपिश में अब दर्द पिघलने लगा था। आसमान भी खामोश था, क्योंकि पहली बार उसने देखा जो पूरी दुनिया को रोशन करता है उसके भीतर कितना गहरा अंधेरा था। दिल को छू लेने वाला संदेश, बहुत सुंदर। तो अब अगले गीत की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उसके पहले संदेश भी हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि गर्मी ने तो अप्रैल में ही मई जून की याद दिला दी थी, सो अब भी गर्मी ही गर्मी, पसीना ही पसीना। फिल्म जवाब का इन्होंने गीत याद किया है। और बहुत सारे गाने भी इन्होंने बताए हैं, सूरज को लेकर, नीले गगन को लेकर, और बहुत सारी गानों की बात की है। ऐसे ही हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि रोशनी चाहे चांद की हो या सूरज की, दोनों का ही अपना अलग जादू और सुकून है। जहां सूरज की रोशनी हमें ऊर्जा, गर्मी और नया दिन जीने की प्रेरणा देती है, वहीं चांद की रोशनी हमें शीतलता, सुकून और रात का ठहराव देती है। और सौर ऊर्जा की बात की है हमारे एक और साथी ने। लिखते हैं कि जगत भर की रोशनी के लिए सूरज जलते रहता है, और अब सौर ऊर्जा का जमाना आया है, वो भी सूरज पर ही निर्भर है। अब हम बिजली का चालू रखने के लिए इन्वर्टर चलाते हैं, उसको रिचार्ज मेंटेन करना पड़ता है। चांद और सूरज हमारे रोशनी के नैसर्गिक साधन है। आज हमें अपना सुरीला सफर गीतों से रोशन करके पूरा करना है, और इन्होंने कई गीत याद किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये गाना आपकी लिस्ट से मैच करता है या नहीं। शब्द है माना जनाब। फिल्म का नाम बताइए और आवाज पहचानिए किनकी है।

0: सही जवाब आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उन सभी श्रोताओं का। पेइंग गेस्ट फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज है, और हम बता देते हैं मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा और सचिन देव बर्मन ने संगीत तैयार किया था। एक श्रोता कह रहे हैं कि सोच लो, अगर सूरज दादा न होते तो पृथ्वी एक बेजान अंधेरी बर्फ का गोला बन जाती, न पेड़ पौधे होते, न हम होते, न पशु पक्षी होते। शुक्र है सूर्य नारायण देव का कि जिनकी कृपा से आज पृथ्वीवासी हर जीव अपने अपने तरीके से जी रहे हैं। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और एक और श्रोता ने याद किया है, काइन फल निकलता था इसको मशीन में तेल पिराकर, और घी के समान उसका तेल निकलता था, उसे भी घर में दिया बत्ती के रूप में जलाया जाता था। एक और श्रोता ने याद किया है हमराज फिल्म के गाने का की बात करते हुए कि मैं बिहार से हूँ और आज के जमाने में बिहार में ऐसा समय आया जब 15 सालों तक हमारे गांव में 1989 से 2005 तक बिजली नहीं थी, तब लालटेन ही एक सहारा थी हमारे लिए, फिर मैंने सोलर लालटेन खरीदा। क्या बात है। एक साथी ने खुश होकर कहा है कि रोज रोज ध्यान लगाते हुए आज एक गाना मेरा लिस्ट में आया है, क्या बात है। और एक श्रोता कह रही है कि लालटेन के शीशे को उपले की राख से साफ करना पड़ता था, साफ करते समय बहुत एहतियात बरतना पड़ता था, ज्यादातर घर के बड़े लोग ही इसे शाम को करके रख देते थे। एक और श्रोता ने याद किया है कि दुकान में शाम होते ही लालटेन जलाते थे और कांच को साफ करना पड़ता था, बाती मिट्टी का तेल चिमनी भी बेचते थे, आज ये सब बंद हो गए हैं बिकने। एक श्रोता कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी से दिन निकलता है, चांद की रोशनी से रात का एहसास होता है, ज्ञान की रोशनी से जीवन संवरता है, वैसे ही अच्छे जीवन साथी से जीवन रोशनदान हो जाता है। क्या बात है। तो अब अगले गाने की तरफ बढ़ा जाए, लेकिन उससे पहले एक संदेश सुन लिया जाए।
1: आएगी जरूर।
2: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है

0: जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
2: हम इंतजार करेंगे।
0: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
3: सुहाने सुरीले सफर की बात जब हो रही है तो हमारी एक श्रोता ने याद किया है, हमें एक हल्की सी याद है कि गलियों और सड़कों पर लैंप पोस्ट हुआ करते थे, जिसमें एक सरकारी आदमी आता था जो लैंप पोस्ट में तेल भरता था और जला देता था। रात भर लैंप पोस्ट जलता था, सुबह अपने आप बुझ जाता था, तब सूरज की रोशनी से काम चलता था। जी हाँ, वो भी एक जमाना था। एक श्रोता कह रहे हैं कि हमारी मम्मी दादी नानी ने लालटेन की रोशनी में कढ़ाई और सिलाई भी की है। हाँ वाकई, और बहुत सुंदर कशीदाकारी की है। अब सवाल जरा गौर से सुनिएगा, गाना पहचानना है आपको और फिल्म का नाम बताना है। कुछ इस तरह की लाइनें हैं कि चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। तो पहचानिए कौन सा गाना है ये और किस फिल्म का है। और हम जब संदेशों की बात करते हैं तो एक बड़ा ही प्यारा सा संदेश दिख रहा है। जीवन की छोटी छोटी खुशियों और शांति मन से है, जो अकेलेपन या बड़ी मुश्किलों के बावजूद मन को सुकून देती हैं। अकेले होने पर भी क्या छोटी सी बात से माँ को मन को सुकून दे जाते हैं। विशाल रोशनी की गर्मी में भी एक छोटी सी छांव मिल जाए तो वो मन को सुकून देती है। नीले गगन की विशालता में जब कोई एक चिड़िया चहकती है तो ये अकेलापन दूर कर देती है। जीवन की यही बड़ी बड़ी चुनौतियों के बीच किसी अपने का एक छोटा सा प्यार भरा शब्द या एक मुस्कान मन को शीतलता और राहत प्रदान करती है। यही जीवन है कि विपत्ति में भी छोटी छोटी सकारात्मक बातों को ढूंढ लिया जाए, जग ही नहीं मन भी रोशन हो जाए। क्या बात है। और अब अगला गाना जरा सुनिए और बताइए ये आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं। हंसने की बात है।

पारस मणि फिल्म का ये गीत आपने बताया और हमारे एक श्रोता ने कहा कि अगला गीत बचेगा हंसता हुआ नूरानी चेहरा, और वो बच गया, क्या बात है। और जो हमने पहेली पूछी है, हमारे एक श्रोता ने कहा है कि गीत तो कुछ कुछ याद आ रहा है मगर शब्द नहीं आ रहे। एक श्रोता कह रहे हैं कि पहेली के इंद्रजाल ने उलझा दिया। ओहो हो, उलझिए मत, हम सुलझाए देते हैं। चलिए हम एक बार फिर से पढ़ देते हैं। जलते सूरज की गर्मी से बेहाल नीले गगन विशाल ने उसे टोका तो वो बोला, मैं जलूंगा तभी तो रोशनी आएगी। आसमान बोला, माना जनाब रोशनी लेकर आते हैं मगर जहां को रोशन करने वाले अकेले आप ही नहीं। सूरज ने देखा तो हंसता हुआ नूरानी चेहरा लिए रोशनी एक दिए पर बैठी मिली। अपने सबसे बड़े डर को जीतकर मंजिल तक पहुंचने वाले के साथ मिली रोशनी। वो वहां भी थी जहां किसी की छोटी सी बात ने जीवन बदल दिया, और वहां भी जहां एक खूबसूरत रिश्ता कायम हुआ। कभी किसी की समझ में, किसी के फैसले में, तो कभी किसी के चुप रह जाने पर आ गई रोशनी। ये पूछो कहां नहीं है रोशनी। एक संदेश है, सूर्यदेव की महिमा निराली है, जब से धरती अस्तित्व में आई है सूर्यदेव की कृपा बनी हुई है। दिन और रात होते हैं, वनस्पति को जीवन मिलता है, हमारे यहाँ प्रतिदिन सूर्यदेव को पूजा जाता है। सूरज और रोशनी की बातचीत की कल्पना अद्भुत है। एक और श्रोता ने कहा है कि जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है जब साल 1960 से मैं विविध भारती के शरण में आया, मेरे आकाशवाणी राम। बहुत सुंदर। जैसे जगत भर की रोशनी के लिए सूरज को जलते रहना जरूरी है, उसी तरह जगत भर के श्रोताओं के मनोरंजन के लिए विविध भारती का चलना जरूरी है। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। हम वो गीत की लाइनें एक बार फिर से बता देते हैं। गाना है, अंतरे की लाइनें हैं, चांद से देखा दूर चकोरा, धरती दूर गगन से, आंख से दूर है आंख का तारा, बिछड़ा फूल चमन से, ये कैसा दस्तूर यहाँ, ये कैसा दस्तूर यहाँ। बताइए कि ये कौन सा गाना है और किस फिल्म का है। और अब ये अगला गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, ये देखिए आपकी लिस्ट से मैच हो रहा है या नहीं, और फिल्म का नाम बताना है आपको। जहां शब्द से ये गाना।

0: को पाता है जहाँ जहाँ ख्याल जाता है वहाँ वहाँ तुम्हें को पाता है।
1: ये कब हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्या हुआ मुझे, ये कब हुआ, ये क्यों हुआ।
2: तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उस पहेली की जो हमने गाने के रूप में पूछी थी। बिल्कुल सही जवाब दिया है और इसीलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई पहले उसी का जवाब। आपने अभी जो पहेली पूछी, गाने के शब्द याद नहीं आ रहे पर ऐसा लग रहा है कि फिल्म चिराग कहाँ रोशनी कहाँ का गाना है, बड़ा बेदर्द जहाँ है यहाँ इंसाफ कहाँ है, कुछ इस तरह की इन्होंने बात कही है। बिल्कुल सही बात है, अजब है मालिक तेरा जहां चिराग कहां रोशनी कहां, ये है गाने की पहली लाइन। बहुत बहुत शुक्रिया। पारसमणि फिल्म के गाने के गीतकार और संगीतकार का नाम हमने पूछा था, सही जवाब आया पारसमणि फिल्म की का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और गीत रचना असद भोपाली की।

गीता रॉय और मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने जो गाना सुना, उसको सुनकर हमारे कुछ श्रोताओं को लगा कि हमने पहली बार सुना है ये गाना। ये गाना बड़े सरकार फिल्म का है, जैसा कि हमारे एक साथी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के साथ तुरंत अपना संदेश भेजने के लिए। और अब अगला गाना आपकी लिस्ट से मैच होता है या नहीं, बताइए हमें गाना मंजिल शब्द पर।

0: गजब कमाल, बड़ा ही दिलचस्प। हमारे एक श्रोता ने कहा है कि मंजिल शब्द पर फिल्म संजोग से ये गाना आपकी लिस्ट से मिल गया, मैं डिस्टिंक्शन में पास हो गया। क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। एक श्रोता ने बताया है प्रदीप कुमार और अनीता गुहा ने इस फिल्म में मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं, और एक और श्रोता कह रहे हैं कि मंजिल तक पहुंचने के लिए इंसान को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। एक साथी ने याद किया है, जहां तक मुझे याद है पुराने जमाने में शादी की बारात में लालटेन गैस बत्ती से उजाला किया जाता था और बारात ले जाई जाती थी, और गांव की पंचायत में भी गैस बत्ती का उपयोग किया जाता था। इसको पंच बत्ती कहा जाता था। इस दृश्य को राज कपूर की एक फिल्म में भी दिखाया गया था। कौन सी फिल्म थी वो, याद है आपको? शोले फिल्म में जया भादुड़ी को लालटेन जलाते और उसको धीमा करते हुए याद किया है एक श्रोता ने, और अंदाजा लगा रहे हैं एक और साथी कि ये जिंदगी के साथ ये अगला गाना बज सकता है। तो देखिए भाई कि ये गाना आपकी बात आपके लिस्ट से मैच कर रहा है या नहीं। हमें ये भी बताइए कि किसी की छोटी सी बात ने आपका जीवन क्या कभी बदला, या आपकी किसी छोटी सी बात ने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई और आपको याद रह गया।
1: छोटी सी ये दुनिया।

सही जवाब आया, बहुत बहुत शुक्रिया। रंगोली फिल्म गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, स्वर और अभिनय किशोर कुमार। क्या बात है, पूरा जवाब। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी सी ये दुनिया पहचाने लगते हैं। श्रोता जो विविध भारती फेसबुक पेज से जुड़कर मिले हैं, हर रोज मिल रहे हैं। और एक और श्रोता ने कहा कि ये गीत मेरी लिस्ट में था। एक श्रोता ने अंधेरे की बात की है और अंधेरे को विसंगतियों और असमानता का प्रतीक बताया है। रोशनी के लिए सूरज एकमात्र पर्याय नहीं, भौतिकवादी संसार के संदर्भ में या फिर मनुष्य के अंतर मन में गुरु के द्वारा दिया गया ज्ञान, सच्ची भक्ति और आंतरिक प्रेम ही एक दिव्य रोशनी है जो अंतर मन में व्याप्त अंधेरे को दूर कर मार्ग प्रशस्त करती है। सृजन और कला के माध्यम से भी रोशनी प्राप्त की जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो बताइए कि सृजन और कला या आपकी किसी छोटी सी बात से किसके जीवन में रोशनी आई या किसी ने आपके जीवन में इस तरह से रोशनी भर दी, एक पल के लिए लगा जैसे उजाला ही उजाला हो गया। याद हो तो बताएं और अब ये गाना सुनिए और हमें ये बताएं कि फिल्म में फिल्म का नाम क्या है और प्रमुख कलाकार कौन है।

हमारी जो बात थी कि क्या किसी ने आपके चेहरे पर मुस्कान सजाई या आपने किसी के चेहरे पर मुस्कान सजाई है, छोटी सी रोशनी अदा की है उसे, इसके जवाब में हमारे एक श्रोता लिखते हैं, मैंने अपने सहयोगी को कार्यक्षेत्र में कहा था, तुम टूर पे जाते हो क्या करते, कोई नहीं देखता, सिर्फ दो व्यक्ति तुम्हारा काम देखते हैं, एक ऊपर वाला एक स्वयं तुम, अतः खुद से पूछो। उसे बात लग गई और वो सुधर गया। क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि छोटी छोटी बातों से कई बातों का समाधान हो जाता है, कई बार बात बिगड़ भी जाती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बनेगी या बिगड़ेगी ये तो बिल्कुल दूसरे के कई बार मूड पर भी डिपेंड करता है। और ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, क्या वो बात दूसरे को भली लगने वाली है या नहीं। एक श्रोता ने किशोर दा कहा है कि किशोर दा ने ये गाना एकदम हेमंत कुमार जी के अंदाज में गाया है, कभी कभी तो धोखा भी हो जाता है कि किसकी आवाज है, छोटी सी दुनिया की बात कर रही है ये। हाँ भाई, छोटी सी दुनिया है, आवाजें भी मिल जाती हैं, अंदाज भी मिल जाते हैं। और एक और श्रोता ने गुस्सा जताया है कि 60 और 70 के दशक के गानों में ही सिमट कर रह गया है कार्यक्रम। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम और गाने भी शामिल करते जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जब बात हो रही थी, जिस तरह के विषयों की बात हो रही थी, जिस तरह के शब्दों की बात हो रही थी, तो जो गाने अच्छे लगे और जो गाने हिट रहे, ज्यादा सुने गए, उन्हें ही हमने छांटा है। तीसरी कसम फिल्म और हरियाली और रास्ता में लालटेन दिखाई गई है। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और बात हो रही थी मिस्टर एक्स इन बॉम्बे की, लेकिन उसके पहले हम सोचते हैं कि ये गाना जल्दी से सुन लिया जाए। हम आपको बताते हैं इसका जवाब भी। ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम पहचानिए, आवाजें पहचानिए किनकी है।

की मुस्कान याद आ गई। हमारे घर के सामने छोटा सा पार्क बना हुआ है पानी की टंकी के चारों तरफ, और उसमें इतनी गर्मी में रोज एक बूढ़ा माली छतरी लगा करके घास काटते हैं। हम एक गिलास नींबू पानी देने गए तो इतनी गर्मी में मानो उन्हें तड़क मिल गई। उनकी मुस्कान से हमें जो खुशी मिली नहीं बता सकते। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही आपने। और एक और श्रोता ने बताया किशोर कुमार और कुमकुम मिस्टर एक्स इन बॉम्बे के प्रमुख कलाकार। और एक और श्रोता ने कहा है कि पत्नी धर्मपत्नी के आगमन से 1975 में मेरी किस्मत बदल गई। उसके पहले शून्य में था, वो आई तो आगे एक लग गया यानी 10 बन गया। ये पढ़कर आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई ना? बिल्कुल आ गई। और मुस्कान के साथ साथ वक्त की ये घंटी भी आ गई कि अब आपसे इजाजत लेनी है। तो सुरीला सफर कार्यक्रम को यहीं देते हैं विराम। फिर मिलेंगे। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

संदेश आए हैं लता मंगेशकर और प्रेमलता की आवाजों में। बड़ी बहन फिल्म का ये गाना आपने सुना था, सही जवाब। एक श्रोता ने कहा है कि हमें एक बूढ़े माली

नमस्कार दोस्तों, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के दिन मनाया जाता है गंगा दशहरा का पावन पर्व। ये दिन माँ गंगा के पृथ्वी पर आगमन का प्रतीक है। कुछ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुई थी। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने के लिए हिमालय में कठिन तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर गंगा जी धरती पर आने को तैयार हुई। जब गंगा धरती पर उतरी तो उनका वेग इतना प्रचंड था कि उसको संभालने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया। इसीलिए इस दिन शिव जी की पूजा भी की जाती है और माना जाता है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान और पूजा करने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा न केवल एक पवित्र नदी है बल्कि इसे भारत का हृदय भी कहा जाता है। शांति और अच्छाई की प्रतीक गंगा नदी के बहते पानी में हजारों दीपक प्रवाहित किए जाते हैं। देश के कई प्रदेशों में बड़ी धूमधाम से गंगा दशहरा का पर्व मनाया जाता है, लेकिन हरिद्वार, प्रयाग और वाराणसी में ये एक बेहद लोकप्रिय उत्सव है।

गंगा ना सिर्फ भारत की बल्कि दुनिया की भी पवित्र नदियों में से एक कहलाती है। गंगा के निर्मल और पावन जल पर समय समय पर बहुत सारे शोध भी किए गए हैं और विज्ञान की हर कसौटी पर गंगा का जल भी खरा उतरा है। विज्ञान भी मानता है कि गंगा जल में कीटाणुओं को मारने की क्षमता है। इसका जल हमेशा ही पवित्र रहता है। लेकिन जिस प्रकार आजकल न सिर्फ गंगा नदी बल्कि अन्य बहुत सारी नदियों का पानी भी दूषित हो रहा है, इसे रोकने की जरूरत है। हमें समझने की आवश्यकता है कि गंगा केवल एक जलधारा नहीं बल्कि जीवनकाल और लोक संस्कृति का भी अभिन्न अंग है। गंगा सभ्यताओं और संस्कृतियों के साथ साथ विकास की जननी भी रही है।

दोस्तों, भारत को नदियों का देश माना जाता है। भारत में सिर्फ गंगा को ही नहीं बल्कि अन्य नदियों को भी माता के रूप में पूजा जाता है। ये सदा से ही हमारे लिए जीवनदायिनी रही है। नदियाँ धरती पर जीवन के लिए एक आशीर्वाद हैं। हमें अपने जीवन में गंगा नदी की बहती धारा से प्रेरणा लेनी चाहिए। जिस प्रकार वो अपने गंतव्य की ओर पहुंचने के लिए बहुत सारी रुकावटें आने के बाद भी निरंतर आगे बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी बहुत सी रुकावटें आती रहती हैं, लेकिन हमें अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही रहना है। हम गंगा को माँ कहते हैं, लेकिन उसे माँ मानने का हमारा व्यवहार सिर्फ उसकी

ये पूजा मात्र तक ही सीमित है। असल व्यवहार में हमने गंगा को कचरा और मल ढोने वाली मालगाड़ी मान लिया है। इसके कारण गंगा का जल प्रदूषित होता है, वो अपना संतुलन भी खोती है। वर्तमान में जल संकट एक गंभीर समस्या है। हम अपने दैनिक जीवन में जल को दूषित करेंगे, जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा मन भी अशांत होगा और हमारा जीवन भी अशांत होगा। इसीलिए गंगा को प्रदूषण से बचाकर हम अपने मन को भी प्रसन्न और स्वस्थ रख सकते हैं। गंगा की सफाई और स्वच्छता में भी हम अपना सहयोग कर सकते हैं। हमें गंगा के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलकर उसे संवारना होगा और उसे प्राथमिकता देनी होगी, ताकि गंगा का दोहन बंद हो सके। और सही मायने में यही माँ गंगा की सच्ची सेवा और उपासना है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मुलाकात का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स एआई द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए। सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने थाईलैंड ओपन के फाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नीदरलैंड्स में द हेग में एक सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: केवल भारत में हो रहे हैं, और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप थे, आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। और स्टार्टअप की दुनिया में भी 2014 में भारत में सिर्फ 4 यूनिकॉर्न थे, आज भारत में करीब 125 एक्टिव यूनिकॉर्न है। पच्चीस में ही करीब 44,000 और नए स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं। आज एआई, डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारे स्टार्टअप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। समय के साथ रिसर्च और इनोवेशन का एक कल्चर और विराट होता जा रहा है।
0: श्री मोदी ने हेग को भारत नीदरलैंड मित्रता का जीवंत प्रतीक बताया और कहा कि डच नेता भारतीय प्रवासी भारतीयों के योगदान की लगातार सराहना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि नीदरलैंड के समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में प्रवासी भारतीयों की भूमिका पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। प्रधानमंत्री का आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री का राजा विलेम अलेक्जेंडर तथा महारानी मैक्सिमा में से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भारत यूरोप मुक्त व्यापार समझौते के बाद भारत यूरोपीय संघ के व्यापक संबंधों को आकार देने की संभावना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी आधिकारिक नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान शनिवार को भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में रहने वाले भारतीय समुदाय के हजारों लोग इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बता रहे हैं। इस कार्यक्रम से भारत और नीदरलैंड के रिश्तों

0: प्रवासी भारतीयों की भूमिका और दुनिया में भारत की बढ़ती पहचान को भी बल मिलेगा। इस यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है चोल काल की ताम्र पत्रों की ऐतिहासिक वापसी। ये 11वीं शताब्दी के दुर्लभ चोल ताम्र पत्र नीदरलैंड में प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे जाएंगे। ये कदम सिर्फ साझा धरोहर की वापसी नहीं बल्कि भारत और नीदरलैंड के रिश्तों को और मजबूत करने वाला पहल है। यह भारत की सभ्यतागत विरासत को सहेजने और उसके अध्ययन के प्रति नई प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुश्रुत शर्मा, द हेग, नीदरलैंड।
1: भारत और नीदरलैंड के बीच सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। इससे पहले प्रधानमंत्री के नीदरलैंड पहुंचने पर डच विदेश मंत्री ने उनका स्वागत किया। प्रवासी भारतीयों और डच सैनिकों द्वारा सांस्कृतिक और संगीतमय प्रस्तुतियों के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद पूरा स्थल मोदी मोदी और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि स्वागत समारोह उल्लेखनीय था जिसमें कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनी अट्टम नृत्य प्रस्तुतियां शामिल थीं, साथ ही गरबा नृत्य भी था। प्रधानमंत्री मोदी कल दौरे के तीसरे चरण के लिए स्वीडन के गोथेनबर्ग जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना है।
2: पिछले 12 वर्षों में भारत सरकार द्वारा किए गए अनेक सुधारों का प्रभाव आज न केवल भारतीय उद्योगों की प्रगति में दिखाई दे रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों की सफलता में भी साफ नजर आ रहा है। आकाशवाणी से बात में वॉल्वो इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री कमल बाली ने बताया कि पिछले एक दशक में हुए सुधारों ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए भारत के कारोबारी माहौल को किस तरह सकारात्मक तौर पर बदला है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री की स्वीडन यात्रा के दौरान वह स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस दौरान दोनों नेता भारत स्वीडन संबंधों के सगरम आयामों की समीक्षा करेंगे और द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के साथ साथ हरित परिवर्तन, एआई, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, पीपल टू पीपल संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के गोथेनबर्ग पहुंचने से पहले ये सकारात्मक माहौल भारत स्वीडन संबंधों के लिए नई दिशा तय करता दिख रहा है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इस मौके पर स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने उद्योग जगत में आए विश्वास को मजबूत किया है और दीर्घकालिक रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते खोले हैं।
3: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
1: सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि उसे आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ गतिविधियां चलाना बंद करना होगा। नई दिल्ली में सेना संवाद कार्यक्रम में श्री द्विवेदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे एक बड़ा फैसला लेना होगा।
5: If you heard me earlier,
4: अगर आपने मुझे पहले सुना है तो मैंने यही कहा था कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां जारी रखता है तो उसे ये खुद तय करना होगा कि वो भूगोल का हिस्सा बना रहना चाहता है या इतिहास का या किसी का भी नहीं।
1: सेना प्रमुख की टिप्पणी भारत की आतंकवाद के खिलाफ सख्त नीति को दर्शाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच का आदेश दिया है। अधिकारियों ने कहा है कि पिछले 14 वर्ष में इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता और वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। इस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लगभग 1,69,00,000 जाति प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें से कई प्रमाण पत्र दुआरे सरकार योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। राजस्थान में जनगणना 2027 के अंतर्गत घर घर जाकर डेटा संग्रह का कार्य आज से शुरू हो गया है। ये चरण 14 जून तक चलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 की कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद छात्रों

0: के लिए विभिन्न सुविधाओं की घोषणा की है। बोर्ड ने इस बार मूल्यांकन प्रक्रिया को और अधिक सटीक और पारदर्शी बनाने के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली का उपयोग किया है। एक रिपोर्ट।
1: पहले चरण में छात्र अपनी मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियां मांग सकते हैं। ये ऑनलाइन लॉगिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी और समीक्षा के लिए डाउनलोड की जा सकती हैं। जबकि दूसरे चरण में छात्र विसंगतियों के सत्यापन के लिए आवेदन कर सकते हैं या अंकन योजना के आधार पर विशिष्ट उत्तरों के पुनः मूल्यांकन का अनुरोध भी कर सकते हैं। बोर्ड ने कहा है कि सभी आवेदन निर्धारित

0: और शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज से दो दिन के गुजरात दौरे पर हैं। असम, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद वो पहली बार गुजरात गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से दो दिन गुजरात के दौरे पर है। आज सुबह अहमदाबाद में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन साउथ वेस्ट जोन ऑफिस में श्री शाह की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई। श्री शाह ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर और सीनियर अधिकारियों के साथ हरियाली लोकसभा के तहत पेड़ लगाने, विकास के कामों, इंटरलिंकिंग और जिलों के रिनोवेशन पर चर्चा की। आज दोपहर तक होने वाली मीटिंग में श्री शाह सरखेज गांधीनगर हाईवे के मॉडर्नाइजेशन के कामों की प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री जीयूडीसी और गांधीनगर लोकसभा के कामकाज में हुई प्रोग्रेस के साथ साथ मानसा म्यूनिसिपैलिटी से जुड़े दूसरे विकास कामों, गांधीनगर लोकसभा इलाके में पब्लिक हॉस्पिटल के कामकाज में हुई प्रोग्रेस, अखंडानंद और सस्तु साहित्य मुद्रणालय ट्रस्ट के कामकाज का रिव्यू करेंगे। प्रवेश अरियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: भारत की मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने से जुड़ी एजेंसियों ने पहली बार ऑपरेशन रेड स्पिल के अंतर्गत 182 करोड़ रुपए मूल्य की कैप्टेगन ड्रग्स जब्त की हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पश्चिम एशियाई देशों में जा रही ड्रग्स की खेप की जब्ती और एक विदेशी नागरिक की गिरफ्तारी इस दिशा में भारत की कड़ी नीति को दर्शाती है। सिक्किम आज अपना 51वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के रूप में गंगटोक में मनन केंद्र में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हो रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अब से कुछ देर में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन सिक्किम राज्य स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर गंगटोक स्थित मनन केंद्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। समारोह के दौरान उपराष्ट्रपति पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए कई परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। गौरतलब है कि सिक्किम राज्य स्थापना दिवस प्रतिवर्ष 16 मई को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1975 में सिक्किम भारत संघ के साथ औपचारिक रूप से विलय हुआ था। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गंगटोक।
1: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने व्यापारी रॉबर्ट वाड्रा को गुरुग्राम के शिखोपुर गांव में वर्ष 2008 के जमीन खरीदने से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी है। अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी। ये मामला लगभग 3.5 एकड़ भूमि से जुड़े सौदे में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के काकीनाडा जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार टिपरी लॉरी के टक्कर से 6 महिला मजदूरों की मौत हो गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर दिया है। उप मुख्यमंत्री के पवन कल्याण ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बैडमिंटन में भारतीय सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी थाईलैंड ओपन के फाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने मलेशिया के नूरजुद्दीन और गो से फेई को हराया। पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन सहित अन्य भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी टूर्नामेंट से पहले ही बाहर हो गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सरकार ने पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार के एक एडिट हुए वीडियो का खंडन किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि अफगान तालिबान को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पैसे दिए गए हैं और वो भारत की तरफ से लड़ रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कटियार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। इकाई ने बताया कि वीडियो गलत जानकारी फैलाने और भारतीय सेना पर लोगों का भरोसा कम करने के लिए एआई के इस्तेमाल करके बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीफ अली कादिम अल जैदी को इराक के प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत इराक के साथ अपने लंबे समय से चले आ रहे मैत्रीपूर्ण संबंधों को बहुत महत्व देता है और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री मोदी का राजा विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से भी मिलने का कार्यक्रम। सेमीकंडक्टर चिप्स, एआई और द्विपक्षीय व्यापार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की पाकिस्तान को चेतावनी, कहा पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देना और भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां बंद करे। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में वर्ष 2011 से जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों की जांच के आदेश दिए।

0: सीबीएसई ने कक्षा 12वीं के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं के दो चरणों में पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया की घोषणा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

देख कबीरा रोया फिल्म का ये गाना मन्ना डे के स्वर में आपने सुना। राजेंद्र कृष्ण के बोलों को संगीत से सवारा था मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला कालजयी गीत स्कूल मास्टर फिल्म से लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजें हैं, प्रदीप के बोल हैं और वसंत देसाई की धुन।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की रेशमी आवाजों में प्यार बरसाता ये कालजयी गीत आपने सुना स्कूल मास्टर फिल्म से। और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो भाई भाई फिल्म से है। लता मंगेशकर की आवाज है, राजेंद्र कृष्ण की बोल, मदन मोहन की तर्ज।

0: एक बेमिसाल शायर।
1: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
0: एक शानदार शख्सियत।
2: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी।
2: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से।
2: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी का गाया फिल्म जिद्दी का ये गाना, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, शुरू में पिरोया है सचिन देव बर्मन ने।

बोलो कुछ तो बोलो बोलो बोलो बोलो।

0: में मोहब्बत के गा रहा हूँ।
1: चाचा जिंदाबाद, इस फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन बनाई थी मदन मोहन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम में सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और साथियों का गाया हुआ फिल्म आवारा का गाना। शैलेंद्र के बोलों को संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन ने।

ये महकती किलकती शिकायत आरजू फिल्म से हसरत जयपुरी की लिखी हुई लिखे हुए इस गीत में आपने सुनी मोहम्मद रफी की आवाज में। धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब सदाबहार नगमे कार्यक्रम का आखिरी नगमा बंदिनी फिल्म की से सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। संगीत रचा है सचिन देव बर्मन ने।

0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आज बस यहीं तक, दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी।

0: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
1: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
0: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
1: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
2: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें, अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
0: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
1: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
2: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

आपके मनचाहे गीतों के साथ हाजिर हूं मैं राजुल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं फिल्म दाग के इस गाने से, जिसे पसंद किया है शिक्षक नगर दुर्ग छत्तीसगढ़ से राकेश वर्मा, सचिन वर्मा और वाणी वर्मा ने। राजनाथ गांव से नारायण लाल साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, मिलिंद कुमार साहू, कुलवंतिन साहू, नेहा देवी, कुमारी टिकेश्वरी, प्रणय कुमार और रुद्रांश प्रताप साहू ने। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर फिल्म दाग का ये गाना, साहिल लुधियानवी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

मोहब्बत से लिपटा ये दिल का अफसाना आपने सुना फिल्म दाग से। और अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना शंकर हुसैन फिल्म से सुनवा रहे हैं, लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल और खयाम की संगीत रचना है, सुनना चाहते हैं? रामेश्वर नगर रायपुर से प्रियेश गुप्ता, श्रेयांश गुप्ता और शशांक गुप्ता। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश और मुकेश कुमार साहू।

फासलों की खुशबुओं में महकती नज़दीकियों का ये तराना आपने शंकर हुसैन फिल्म से सुना, और अब जो गाना आपको सुनवाने जा रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, हरिपाल कौर और मीनाक्षी तिवारी। सुन रहे हैं फिल्म उलझन का ये गाना किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज़ों में।

गीत में छुपा गुनगुनाता हुआ ये राज, किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित के स्वरों में आपने सुना एमजी हशमत के बोल थे और कल्याण जी आनंद जी का संगीत था। अब जो गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है फिल्म मिस्टर नटवरलाल से। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाजें हैं, इस गाने को सुनना

चाहते हैं। जूना तार फैल अकोला से राजेश वाघमारे, प्रिया वाघमारे, रोहन और नेहा। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर आनंद बख्शी का लिखा और राजेश रोशन का संगीतबद्ध किया हुआ फिल्म मिस्टर नटवरलाल का ये गाना।

ये थिरकता हुआ सा गीत मिस्टर नटवालाल फिल्म से सुना। और अब अगला मनचाहा गीत बड़ी प्यारी सी पसंद चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा की। इसी गाने को सुनना चाहते हैं गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हरदेव मीका बलविंदर बिरक जयतेग बिरक और मीका बिरक। तो सुनते हैं आप सभी की पसंद पर दो चोर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। ये मीठी सी नोकझोंक मजरूह सुल्तानपुरी का गीत बना है और राहुल देव बर्मन का संगीत।

ये मीठी सी नोक झोंक और अब जो गीत आ रहा है वो दिल की हालत बयां करता हुआ सुनते हैं ये गाना जिसे आप सभी श्रोताओं ने पसंद किया है। खकल कोंच जिला जालौन उत्तर प्रदेश से दीपक गुर्जर और सत्यम गुर्जर की फरमाइश है। सांगली जिले के जत शहर से अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे और रेहान शेख ने पसंद किया है ये गीत फिल्म साजन का। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं। समीर के बोलों को संगीत में सवारा है नदीम श्रवण ने। तो सुनते हैं ये मीठा सा गाना।

0: ये है विविध भारती।
1: नाट्य तरंग, आइए सुने महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता हैं राजेश रेड्डी।

0: दिल के इस सुरीले हाल का ये आपने सुना गीत साजन फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में समीर के बोल नदीम श्रवण का संगीत था और यही गीत बना आज के मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। अब दीजिए इस कार्यक्रम से राजुल को इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: चाहेगी।

0: हिरण ने तो हमें थका ही डाला।
1: चिंता न करें महाराज, कुछ ही क्षणों में हिरण आपके बाण की परिधि में होगा।
0: रथ को और तेज चलाओ सारथी।
1: महाराज ये धरातल ही कुछ ऊंचा नीचा है, समतल के आते ही हम हिरण को पकड़ लेंगे।
0: हाँ, रास बिल्कुल ढीली छोड़ दो सारथी।
1: ये लीजिए महाराज, आपका शिकार आपके सामने है।
0: अब इस हिरण के प्राण मेरे बाण से बच नहीं सकते।
1: ये आंखें वर्षों से आपके धनुष कौशल की साक्षी रही है महाराज,
0: तो आज एक बार और देखो इस कौशल को।
2: ये नहीं राजन, नहीं, ये आश्रम का हिरण है, इसे मत मारिए। दया कीजिए इस पर राजन,
1: इस पर दया कीजिए।
0: अरे ये कौन लोग हैं?
1: ये आश्रम के तपस्वी हैं महाराज।
0: रथ को रोको सारथी। हिरण का पीछा करते करते हम किसी आश्रम के निकट आ गए हैं।
3: हाँ राजन, तपोवन की शांत भूमि पर धनुष पर चढ़ा हुआ ये बाण शोभा नहीं देता।
4: आपके शस्त्र तो दुखियों के दुख दूर करने के लिए हैं राजन, निरपराधों को मारने के लिए नहीं।
5: उस निर्दोष हिरण के प्राणों का पीछा छोड़ दीजिए राजन।
0: तपस्वियों का आदेश शिरोधार्य है, लीजिए मैंने अपना बाण लौटा लिया।
4: पूर्व वंश में उत्पन्न आप जैसे श्रेष्ठ राजा के लिए यही उचित है।
5: ईश्वर करे आपको अपनी ही तरह गुणवान, प्रतापी और चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त हो।
0: आशीर्वचनों की वर्षा करने वाले मुनि कुमारों का परिचय जान सकता हूँ?
5: हम कुलपति कर्ण के शिष्य हैं राजन, मेरा नाम शारंग्रव है।
4: और मैं हूँ शारद्वत।
0: महर्षि कर्ण के शिष्य हैं आप लोग?
5: हाँ राजन, मालिनी नदी के तट के समीप ही उनका आश्रम है।
4: यदि आप लौटने की जल्दी में ना हो तो वहां पधारकर आतिथ्य स्वीकार करें राजन।
0: अवश्य, कुलपति कर्ण के दर्शनों के सौभाग्य से कौन वंचित रहना चाहेगा।
5: कुलपति तो अभी आश्रम में नहीं है राजन, किसी काम से बाहर गए हुए हैं।
0: फिर?
4: किंतु आपके आतिथ्य में किसी प्रकार की कमी नहीं होगी।
5: हाँ, इस दायित्व के निर्वाह के लिए वहाँ शकुंतला उपस्थित है।
0: शकुंतला?
4: हमारे कुलपति की कन्या है राजन।
0: कुलपति कब लौटेंगे?
5: उनका लौटना तो निश्चित नहीं है।
4: किंतु आप संकोच ना करें, सारा आश्रम आपकी सेवा के लिए तत्पर रहेगा।
5: आप आश्रम में पधारे राजन, हम अभी समिधा लेकर उपस्थित होते हैं।
0: ठीक है, इस पुनीत आश्रम में कुछ क्षण विश्राम कर हम भी अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहेंगे।
4: हम कृतज्ञ हैं राजन।

0: कितना सुंदर, कितना अलौकिक दृश्य है। वृक्षों के नीचे निश्चिंत पक्षियों की ये मनोहारी क्रीड़ाएं, निर्भय हरिण शावकों का ये सहज विहार, मन में शांति का संचार करने वाली हवन की ये पवित्र सुगंध, नवीन पल्लवों की ये आकर्षक लालिमा। सारथी, रथ को यहीं रोक दो, हम यहां से पैदल ही जाएंगे।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: सारथी, तपोवन की इस पवित्र भूमि में ये धनुष और ये आभूषण बोझ से लग रहे हैं, यहां हमें विनीत भाव से ही जाना चाहिए। लो, इन्हें संभालो।
1: लाइए लाइए महाराज।
0: मैं आश्रम वासियों के दर्शन कर अभी आता हूं, तब तक तुम अपने घोड़ों को विश्राम करा लो।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: अरे, ये मेरी दाहिनी भुजा क्यों फड़क रही है, वो भी आश्रम जैसे शांत स्थान में? यहां इस संकेत का क्या अर्थ हो सकता है? विधाता भी न जाने कैसे कैसे विचित्र खेल दिखाता है। अरे

0: ये मधुर स्वर लहरियां कहां से आ रही हैं? चलो उस वाटिका की ओर चलकर देखूं।
1: यहां तो
0: क्या रूप, क्या सौंदर्य है। आश्रम बालाओं के इस लावण्य के सामने बहलों की महक तो कुछ भी नहीं। वन लताओं का यह अनूठा आकर्षण बड़े से बड़े उपवन में भी कहां दिखाई देता है। कुछ देर यहीं छुपकर इस रूप राशि को निहारना अनुचित ना होगा।
2: प्रियंवदा, इस वाटिका के वृक्षों को तो हमने सींच लिया, चलो चलो अब उधर की लताओं की प्यास बुझाएं।
3: ऐसी भी क्या जल्दी है शकुंतले, इतना काम किया है, कुछ देर विश्राम ही कर ले।
4: प्रियंवदा ठीक ही कहती है शकुंतला।
2: तुम दोनों को तो हर समय विश्राम ही सूझता है। अरे समय पर पानी ना मिले तो लताएं रूठ जाएंगी।
4: लताएं भी रूठती हैं क्या?
2: हाँ, अगर उन्हें आत्मिया की तरह पाला जाए तो रूठती भी हैं और प्रसन्न भी होती हैं, समझी?
3: मैं तो कुछ और ही समझी हूँ।
2: क्या समझी है तू?
3: यही कि पिता कण्व तुझसे भी अधिक इन पेड़ पौधों को चाहते हैं।
2: वो कैसे?
3: तभी तो तुझ जैसी कोमल कन्या से इनकी सेवा करवा रहे हैं।
0: सचमुच कुलपति कण्व कितने विवेकहीन हैं, ऐसे सुकोमल स्वाभाविक सौंदर्य से ऐसी कठोर तपस्या। शमी के वृक्ष को काटने का काम कमल के पत्ते से।
2: अरे अनुसुईया, ओह सरा इस कंचुकी को ढीली तो कर दे, बहुत कस कर बांधी है इस प्रियंवदा ने।
3: ए मुझे क्यों दोष दे रही है?
2: क्यों, तेरा दोष नहीं है क्या?
3: दोष न मेरा है न इस बेचारी कंचुकी का, दोष तो तेरे यौवन का है।
0: सच ही तो कह रही है प्रियंवदा, नए पल्लव की लालिमा लिए हुए आकर्षक अधर, सुंदर शाखाओं से सजी सुकोमल बाहें, पूर्ण पके हुए फल की गरिमा से युक्त उन्मत्त अंग अंग में समाया हुआ यौवन।
2: प्रियंवदा, एक अच्छी बात कहूं?
3: तेरे मुंह से तो बुरी से बुरी बात भी अच्छी लगती है रे।
2: परिहास ना कर।
3: अच्छा नहीं करती, बता।
2: देख वो सामने देख, कलियों से लदी माधवी लता कितनी जल्दी पड़ी हो गई। नहीं
3: तेरी तरह
2: फिर परिहास।
3: अच्छा नहीं करती परिहास। अब मैं भी एक अच्छी बात बताऊं?
2: हाँ बता।
3: जल्दी ही तेरा विवाह होने वाला है।
2: धत, तेरा तो सिर घूम गया है।
3: सच, मैंने अपने कानों से सुना है।
2: अच्छा,
3: पिता कण्व कह रहे थे कि माधवी लता का मुकुलित होना तेरे लिए मंगलकारी है।
4: अच्छा, तभी इतना ध्यान रखा जा रहा है माधवी लता का।
2: क्यों ना रखूं ध्यान, मेरी बहन जो है।
5: अरे
2: भगाओ ना इसे, तुम लोग हंस रही हो, भगाओ ना इसे। अरे अरे मेरा पीछा छोड़, भाग। अरे भाग ना, भगाओ ना इसे। क्या
3: हम लोग तुम्हारी रक्षा करने वाली कौन होती है?
4: इसके लिए तो राजा दुष्यंत का नाम लो।
3: हाँ वही रक्षा कर सकते हैं तुम्हारी।
2: अरे बचाओ, बचाओ ना।
0: अब मुझे सामने आ ही जाना चाहिए।
6: पृथ्वी पर पुरवंशी राजा का शासन चलते शांत सरल तपस्वी बालाओं को कौन भयभीत कर रहा है?
3: भय का कोई कारण नहीं आर्य, हमारी सखी शकुंतला को एक दुष्ट भ्रमर दुखी कर रहा था।
4: आपके आते ही भाग भी गया।
3: आप खड़े क्यों हैं आर्य, विराजिए ना।
4: मैं अभी कुटिया से आपके लिए फल।
6: नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं, आतिथ्य सत्कार के रूप में आपके मीठे मीठे वचन ही पर्याप्त हैं।
3: सप्तपर्ण की इस वेदी पर कुछ देर के लिए विश्राम कर लीजिए आर्य,
4: इसकी घनी छाया आपकी सारी थकान हर लेगी।
6: आप लोग भी तो वृक्षों को सींचते सींचते थक गई होंगी, बैठे ना आप लोग भी।
2: ना तुम लोग बैठो, मैं भी।
3: अब बैठ भी जा।
2: इन्हें देखते ही मेरे मन में आश्रम विरुद्ध विचार क्यों प्रबल हो रहे हैं? और ये मेरे मन को क्या हो रहा है?
3: हम लोग अपनी अतिथि के बारे में जानने को उत्सुक हैं आर्य।
4: किस राजर्षि के वंश को अलंकृत कर रहे हैं आप?

0: क्या बताऊं इन्हें, मैं महाराज दुष्यंत का एक धर्माधिकारी हूं। पवित्र आश्रमों को देखते देखते इस तपोवन में आ पहुंचा हूं।
1: आज यदि पिता कण्व यहाँ होते तो आपका सत्कार कुछ और ही ढंग से होता।
0: और ही ढंग से?
2: हाँ आर्य, अपने जीवन का सर्वस्व सौंपकर वे आपको कृतार्थ कर देते, क्यों शकुंतला?
3: तुम लोग चुप नहीं रह सकती क्या?
0: आपकी सखी का परिचय जान सकता हूँ?
1: क्यों नहीं, इसका नाम है शकुंतला।
2: बहुत मीठा है इसका गला,
1: करती रहती है सबका भला,
2: इसने आज तक किसी को नहीं छला।
1: जितनी सुंदर है उतनी ही संकोची है,
2: कुलपति कर्ण की सबसे लाडली बिटिया है।
0: किंतु कुलपति कर्ण तो शाश्वत ब्रह्मचारी हैं।
1: आपका आश्चर्य अस्वाभाविक नहीं है आर्य, वैसे तो इसके पिता राजर्षि कौशिक हैं, किंतु उनके द्वारा त्याग दिए जाने पर पिता कण्व ने इसका पालन पोषण किया है।
0: त्याग दिए जाने पर? मैं कुछ समझा नहीं।
2: मैं बताती हूँ आर्य, बहुत दिन हुए जब राजर्षि कौशिक अपनी चरम तपस्या में लीन थे तो देवताओं को अपना आसन डूलता हुआ दिखाई देने लगा।
0: फिर
2: क्या, उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वसंत ऋतु के रमणीय समय में उन्होंने एक अप्सरा को वहां भेज दिया मेनका के उस मादक रूप को देखकर।
0: अब समझा इस अलौकिक सौंदर्य का रहस्य। किंतु
1: किंतु क्या आर्य?
0: कुछ नहीं, यूं ही विधि की विडंबना के बारे में सोच रहा था। अप्सरा के गर्भ से उत्पन्न होने के बाद भी आपकी सखी को तपस्विनी के धर्म का पालन करना पड़ रहा है।
1: यह तो कुछ ही समय का अनुष्ठान है आर्य, पिता कण्व तो इसे किसी उपयुक्त वर को सौंपने की कामना रखते हैं।
3: अब मैं जाती हूँ और आर्या गौतमी से कहूंगी तुम्हारी इन ऊटपटांग बातों के बारे में।
1: अतिथि का सत्कार किए बिना ही चली जाओगी?
2: चली कैसे जाओगी, हमारे दो वृक्षों को सींचने का ऋण कौन चुकाएगा?
0: वृक्षों को सींचने का ऋण?
1: हाँ आर्य, हम प्रतिदिन 10-10 वृक्षों को सींचती हैं, किंतु कल इस कोमलांगी ने 8 ही वृक्षों को पानी दिया था।
2: इसके शेष 2 वृक्षों की सेवा हमने की थी, उसके ऋण की बात है आर्य।
0: ठीक है, मैं चुका देता हूँ इनका ऋण।
1: आप
0: ये लीजिए
1: अंगूठी। किंतु इस पर तो राजा दुष्यंत का नाम अंकित है।
2: आपके पास ये अंगूठी?
0: ये अंगूठी मुझे महाराज ने दान में दी थी।
1: तब तो इस अंगूठी को आप ही के पास होना चाहिए।
2: आपको ऋण मुक्त करने के लिए तो आपका कहना ही पर्याप्त है।
0: मैं आभारी हूँ।
4: तपोवन के जीवों के प्राण संकट में है, उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाओ। शिकारी राजा दुष्यंत इस वन में आ चुके हैं, सावधान सावधान।
0: लगता है मेरी खोज में निकले सैनिक तपोवन में घुस आए हैं।
2: हे भगवान, अब क्या होगा?
4: सावधान, वन के जीव जंतुओं के कान के रूप में एक उच्छृंखल हाथी भी उत्पात मचाता आ रहा है।
1: चलो चलो चलो, उस हाथी के यहाँ आने से पहले ही कुटिया में लौट चले।
2: हाँ हाँ चलो, आर्या गौतमी भी चिंतित हो रही होंगी।
0: आप लोग निश्चिंत होकर जाएं, मेरे रहते आश्रम वासियों को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है।
1: चलो शकुंतला।
3: हाँ हाँ चलो
0: चलो, मैं भी सैनिकों को देखूं। किंतु किंतु मेरा मन मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा? शकुंतला की छवि को निहारते निहारते यहीं स्थिर होकर रह गया है। चलो तन से ही चलो, इस संकट का समाधान तो करना ही होगा।

हे भगवान, मैं तो दुखी हो गया इस जीवन से। न दिन को चैन न रात को नींद, बस घूमना घूमना और घूमना। दिन भर तीखी तेज दोपहरी में मारे मारे फिरो, प्यास लगने पर पहाड़ी नदियों का सड़ा हुआ पानी पियो, भूख लगे तो जाने अनजाने पशुओं का पका अनपका मांस खाओ। भगवान, अगले जन्म में मुझे कुछ भी बना देना, गधा घोड़ा बैल मक्खी मच्छर कुछ भी बना देना, किंतु किसी शिकारी

0: राजा का मित्र मत बनाना। और अब तो करेले पर नीम भी चढ़ गया है। शिकार करते करते राजा स्वयं शिकार हो गया है। अब उसके प्रेमी रूप को भी झेलना पड़ेगा।
1: माधव्य,
0: लो, नाम लेते ही प्रकट भी हो गए। चलो मित्र माधव्य, फिर किसी नए जंगल में भटकने के लिए तैयार हो जाओ।
1: माधव्य, अरे इस तरह मुंह क्यों लटका कर बैठे हो?
0: वाह, क्या भंगिमा है! आंखें फोड़कर पूछा जा रहा है कि आंसू क्यों बहे
1: ये तुम क्या कह रहे हो माधव्य?
0: रहे। तुम कैसे समझोगे? अच्छा भला राजकार्य और वैभव विलास छोड़कर बहेलिया जो बन गए हो।
1: हाँ माधव्य, बहेलिए का ये रूप तो अब मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा।
0: भगवान तुम्हें लंबी आयु प्रदान करे।
1: शिकार के लिए जंगल जंगल भटकते भटकते मैं भी थक गया हूं माधव्य। अब तो कुछ समय के लिए यहीं इसी पवित्र तपोवन में विश्राम करना चाहता हूं।
0: भगवान तुम्हें और लंबी आयु प्रदान करे।
1: अब तो प्रसन्न हो माधव्य?
0: अंधे को दो आंखों के अतिरिक्त और क्या चाहिए महाराज?
1: किंतु माधव्य, तुम तो आंखें रहते हुए भी अंधे हो।
0: हैं? वो कैसे?
1: दो बड़ी बड़ी आंखों के रहते हुए भी सबसे अधिक दर्शनीय वस्तुओं को देखने से वंचित जो हो।
0: आपको देख तो रहा हूं।
1: मैं अपनी नहीं, इस आश्रम के अलंकार की बात कर रहा हूं।
0: आश्रम का अलंकार?
1: हाँ, शकुंतला है उसका नाम।
0: किंतु वो तो तपस्वी कन्या है, उसको देखने से क्या लाभ?
1: माधव्य, पूर्णिमा के चंद्रमा को निर्निमेष क्या किसी लाभ के लिए ही देखा जाता है? और एक विशेष बात तो तुम जानते ही नहीं।
0: विशेष बात?
1: हां, शकुंतला तपस्वी बाला है अवश्य, किंतु उसका जन्म एक अप्सरा की कोख से हुआ है।
0: अप्सरा की कोख से और आश्रम में?
1: उसकी भी एक कथा है माधव।
2: महाराज की जय हो। दो तपस्वी कुमार आपके दर्शनों की प्रतीक्षा कर रहे हैं महाराज।
1: उन्हें तुरंत यहां भेज दो।
2: जो आज्ञा महाराज।
3: महाराज की जय हो।
1: हमारा प्रणाम स्वीकार करें मुनिजन।
4: हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं महाराज।
1: मैं आपका आदेश सुनने को उत्सुक हूं मुनिजन।
4: आप तो जानते ही हैं आर्य कि कुलपति कण्व इस समय यहां नहीं है।
5: उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर राक्षस हमारे यज्ञ में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं यार।
4: अब आप ही इस आश्रम को आतंक से मुक्ति दिला सकते हैं आर्य।
1: आप लोग चिंता ना करें। रेवतक,
2: आज्ञा महाराज।
1: सारथी से कहो कि धनुष बाण सहित रथ को यहां ले आए।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: आप लोग निश्चिंत होकर पधारें, मैं अभी आता हूं।
4: आर्य की जय हो।
2: महाराज की जय हो। राजधानी से एक दूत आया है महाराज।
1: राजधानी से? वहां सब कुशल तो है?
2: वहां सब कुशल मंगल है महाराज। माता ने आपके नाम एक संदेश भिजवाया है।
1: माता ने भिजवाया है? उसे तुरंत यहां भेजो रेवतक।
2: जो आज्ञा महाराज।
1: माता का संदेश?
6: महाराज की जय हो।
1: क्या आदेश है माता का?
6: आज से 4 दिन बाद पुत्र पिंड पालन नाम का उपवास होना है महाराज। माता उस दिन आपकी उपस्थिति की आशा रखती है महाराज।
1: इधर तपस्वियों की सुरक्षा की समस्या है और उधर माता की आज्ञा। क्या करूं, कैसे जाऊं, कुछ समझ में नहीं आता माधव्य।
4: बात तो सचमुच दुविधा की है मित्र।
1: एक काम हो सकता है माधव्य।
0: मैं यहां राक्षसों से तपस्वियों की रक्षा करूं?
1: नहीं माधव्य, ये काम तो मुझे ही करना है। मैं तो ये चाह रहा था कि मेरे स्थान पर तुम राजधानी लौट जाओ।
0: मैं तुम्हारे स्थान पर?
1: राजा के स्थान पर नहीं, बेटे के स्थान पर। तुम्हें भी माता ने बेटे के समान ही माना है। उन्हें यहां की व्यवस्थाओं के बारे में समझा कर तुम ही पुत्र के दायित्व पूरे कर देना।
0: ठीक है महाराज, दुष्यंत के छोटे भाई के रूप में जाने में तो सुख ही सुख है।
1: और हां, इन सब सेवकों को भी अपने साथ ही ले जाओ। यहां तपोवन में इनकी कोई आवश्यकता नहीं।
0: वाह, अब तो ठाट से लौटूंगा युवराज बनकर।
1: एक बात का ध्यान अवश्य रखिएगा युवराज।
0: कहिए महाराज।
1: यही कि मैं यहां तपस्वियों की सेवा के लिए ही रुका हुआ हूं, समझे? शकुंतला वाली बात तो मैंने यूं ही मन बहलाने के लिए कह दी थी, उसे सच न समझ लेना।
0: ठीक है, जब तुम झूठ बतला रहे हो तो मैं सच क्यों मानने लगा?

0: मुझे तुमसे यही आशा थी मित्र। जाओ अपने कर्तव्य का पालन करो, मैं भी तपोवन को राक्षसों से मुक्त कराते ही पहुंच जाऊंगा।
1: जो आज्ञा महाराज।
0: जाओ युवराज।

0: प्यारी पवन चल रही है, अब तो कुछ आराम मिल रहा होगा शकुंतला।
1: क्या कह रही हो अंसुया?
2: प्रियंवता, मुझे तो स्थिति कुछ गंभीर दिखाई देती है।
0: हाँ अनुसुया, मुझे भी यही चिंता है। जब से उस राजर्षि के दर्शन हुए हैं, तब से तेरी आशंका बिल्कुल ठीक है प्रियंवदा, तभी से इसकी ये दशा हो गई है।
3: इसी से पूछकर देखें?
2: हाँ, यही उचित रहेगा।
0: शकुंतला, एक बात पूछूं?
1: पूछो, क्या पूछना चाहती हो?
0: अपनी अस्वस्थता का कारण तुम स्वयं जानती हो?
1: कारण तो जानती हूँ प्रेमवदा, किंतु उपचार नहीं।
2: उपचार है क्यों नहीं, तुम बताओ तो। इस तरह दिन रात घुलते रहने से तो उपचार नहीं होगा।
1: जानकर भी क्या करोगी सखी, कष्ट ही होगा तुम लोगों को।
0: अपने लोगों में दुख बांटने से सहना सरल हो जाता है शकुंतला।
2: हाँ शकुंतला, संभव है हम कुछ सहायता कर सकें।
1: सखी, आश्रम की रक्षा करने वाले वो राजर्षि जब से इन आंखों में समाए हैं,
2: हमारा अनुमान सही है प्रियंवदा।
1: उनकी कृपा ही मेरे शरीर में प्राणों का संचार कर सकती है।
0: तुम्हारी कामना तुम्हारे गौरव के अनुरूप ही है शकुंतला।
2: समुद्र को छोड़कर महानदी और कहाँ मिल सकती है?
1: मिलन की कामना तो प्रबलतम होती जा रही है सखी, किंतु कुछ उपाय नहीं सोचता।
0: इसकी दशा तो सचमुच बहुत गंभीर है अनुसुया।
2: हाँ प्रियंवदा, कुछ न कुछ उपाय तो सोचना ही होगा।
0: हाँ, किसी न किसी गुप्त रीति से इसकी अभिलाषा को शीघ्र पूरा करना होगा।
2: गुप्त रीति ही कुछ कठिन है प्रियंवदा, शीघ्र तो बहुत सरल है।
0: वो कैसे?
2: स्वयं राजर्षि भी शकुंतला की ओर कम आकर्षित नहीं है।
0: हाँ जी, पिछले कई दिनों से वो भी खोए खोए से दिखाई देते हैं।
2: मुझे एक उपाय सूझा है।
0: क्या?
2: ऐसा करते हैं कि इसके लिए हम लोग कामलिपि में एक प्रेम पत्र तैयार करते हैं,
0: फिर
2: उसे फूलों में छिपाकर देव पूजा के बहाने से उस राजर्षि तक पहुंचा देंगे।
0: मुझे तो उपाय बहुत अच्छा लग रहा है अनुसुया, एक बार इस शकुंतला से भी पूछ लो।
2: क्यों शकुंतला, हमारे उपाय से सहमत तो हो?
1: अपनी प्रिय सखियों से असहमत हो सकती हूँ भला?
0: तो ठीक है, अपनी अस्वस्थता को आधार बनाकर तुरंत एक सुललित गीत की रचना करो।
1: सुललित गीत? वो तो मैं लिख दूंगी, किंतु
0: क्या शकुंतला,
1: कहीं उन्होंने मेरा तिरस्कार कर दिया तो?
0: अपने गुणों का अपमान क्यों कर रही हो शकुंतला?
2: कौन होगा जो चंद्रमा की शीतल चांदनी को छत्र लगाकर रोकना चाहेगा?
1: ठीक है, जब तुम लोग इतना आश्वस्त कर रहे हो तो मैं प्रयत्न करती हूँ।

0: महाकवि कालिदास लिखित मूल संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतर शकुंतला। रूपांतरकार और प्रस्तुतकर्ता है राजेश रेड्डी।
1: आपको याद दिला दें, कल के नाट्य तरंग कार्यक्रम में आप सुनेंगे इसी नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से। प्रमिला दातार सुनहरी यादें नामक एक ऑर्केस्ट्रा से जुड़ी रही हैं और उन्होंने न जाने कितनी भाषाओं में गीत गाए हैं। ये है कन्नड़ गाना।

0: और ये मराठी लावणी।
1: पाडाला पिकलाय आंबा, आला बाई पाडाला पिकलाय आंबा, हो नीट बघ पाडाला पिकलाय आंबा।
0: और ये हिंदी गाना।
1: ओ, ओ, ओ, पंख होते तोड़ आती रे।
0: तो चलिए सुनते हैं प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत का दूसरा भाग।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं सुनहरी यादें। जी हां, सुनहरी यादें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी जो मेहमान हैं उनके नाम से ही ये शब्द जुड़े हुए हैं, सुनहरी यादें। दोस्तों, याद कीजिए वो जमाना जब फिल्मों के अलावा जब हम घर से बाहर निकलते थे मंचीय मनोरंजन को ढूंढने के लिए, तो मंच पर प्रस्तुत किए जाने वाले फिल्मी गीतों का जो कार्यक्रम होता था जिसे हम ऑर्केस्ट्रा के नाम से जानते थे, ऐसा ही एक नामचीन ऑर्केस्ट्रा हुआ करता था 1975 के जमाने से। और वो जो ऑर्केस्ट्रा था, वो जो वाद्य वृंद था, उसका नाम था सुनहरी यादें। जी हां, आप में से कई श्रोताओं ने इसे पहचान लिया होगा हमारी मेहमान कौन है। तो स्वागत करते हैं सुप्रसिद्ध पार्श्व गायिका और मंच गायिका प्रमिला दातार जी का। प्रमिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: नमस्कार मेरे सब विविध भारतीय सुनने वालों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार।
2: प्रमिला जी, क्यों ना संगीतकारों की बात कर ली जाए।
3: जरूर,
2: अलग अलग संगीतकारों के कॉम्पोजिशन आपने गाए हैं मंच पर। मंच पर किसी संगीतकार के साथ काम करने का मौका मिला हो?
3: अन्ना जी के सिवाय, वसंत देसाई के सिवाय।
2: अच्छा,
3: वो जमाने के और किसी के साथ नहीं गाया। अच्छा, मैंने
2: मंच पर आपने प्रस्तुतियां दी हैं।
3: हाँ, अन्ना जी के गानों का शो करता भुला है ना बने करके,
2: जी जी,
3: उनका
2: जी,
3: उसका नाम था।
2: हाँ, हाँ।
3: तो हम शो करते थे षण्मुखानंद में, बम्बई में किए, पुणे में किए, ज्यादा नहीं ट्रैवलिंग। तो उनका भी, अन्ना जी तो एकदम बहुत कड़क थे स्वभाव के। यही फर्क अन्ना जी और वसंत जी में मुझे नजर आया।
2: हाँ, हाँ।
3: तो एकादी जागा, समझो एक हरकत है कुछ,
2: हाँ।
3: तो आपके घर में नहीं आई।
2: हाँ।
3: तो वसंत जी मतलब ठीक है, आपको ऐसा आता है ना,
2: हाँ।
3: ऐसे गाओ, चलेगा। अन्ना जी नहीं,
2: हाँ।
3: नहीं नहीं, वो वैसा ऐसा ही आना चाहिए, नहीं। अच्छा। तो नहीं तो उनके साथ भुलाए ना बने कार्यक्रम था हमारा।
2: अन्ना जी मतलब
3: श्री रामचंद्र जी। तो षण्मुखानंद में शो था और उनका प्रोग्राम है तो उनके गाने का जाहिर है, लेकिन कोई लोग खास तौर पे ये करने के लिए, तकलीफ देने के लिए, ये गाना वो गाना दूसरों के गाने के फरमाई दे रहे थे।
2: अच्छा।
3: तो थोड़ी देर एनर्जाइजेशन किया, फिर बाद में बोले ये मेरा प्रोग्राम है, दूसरे किसी के गाने इसमें नहीं होंगे, अगर आपको सुनना है तो आप जा सकते हैं।
2: अच्छा।
3: इन्हीं शब्दों में उन्होंने उनको सुना दी, फिर वो लोग चुप बैठे।
2: अच्छा।
3: एक छोटी गायिका थी, मुझे याद है।
2: हाँ।
3: नाम नहीं बताऊंगी, तो गीत गोपाल करके, गीत रामायण के जैसा गीत गोपाल करके मराठी, माडगुळकर जी ने ही लिखा था।
2: जी, जी,
3: वो पूरा रिकॉर्ड भी, रिकॉर्डिंग हुआ है उसका एच एम वी में।
2: अच्छा।
3: तो उसमें वो थी, छोटी थी, तो उसकी आवाज नीचे नहीं जाती थी।
2: Okay.
3: एक समझो काली पास सुर है, तो
2: हाँ।
3: खर्च के जो सुर होते हैं,
2: हाँ।
3: आवाज आती ही नहीं थी गले से। तो उन्होंने ज्यादा ऊंचे ऊंचे सुर में गाना चाहती थी क्योंकि तब, तो उन्होंने अन्ना जी को बोला कि अन्ना ये मेरे आवाज नीचे नहीं लगती, तो मैं जरा सुर ऊपर ले लूं क्या स्केल।
2: हाँ।
3: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं नहीं वो नहीं, तू घर जा, सुबह उठ के खर्च का रियाज कर, फिर तेरे गले में आएगा, फिर वो गाना गाना। तो वो किसी के भी सुन, जो उनको चाहिए चाहिए बस।
2: जी,
3: दोनों में फर्क था, वसन जी और अन्ना जी।
2: अन्ना जी को यानी श्री रामचंद्र साहब को अगर हम याद करें तो इतनी सारी कॉम्पोजिशन है,
3: बहुत,
2: उसमें
3: बहुत।
2: से कौन सा कॉम्पोजिशन आज आप यहाँ चुनेंगी इस मौके पे?

0: आपने बताया कि आप अपनी बेटियों के साथ भी मंच पर प्रस्तुति दिया करती थीं।
1: जी
0: जितने शोज आपने किए हैं अलग अलग देशों में अलग अलग गायकों के साथ,
1: गायकों से,
0: तो मेल सिंगर्स के साथ किसी फीमेल सिंगर का होना और इसके लिए आपको बुलाया जाना, ये हाँ, तो समझ में आता है।
1: हाँ,
0: कभी ऐसा हुआ होगा किसी फीमेल सिंगर के साथ में आपको गाने का मौका मिला हो मंच पे, या आशा जी का शो है?
1: नहीं नहीं, वो तो
0: ऐसा
1: नहीं,
0: कभी हुआ नहीं,
1: वो दुर्भाग्य रहा मेरा। नहीं हुआ। लेकिन आशा जी के साथ मैंने डुएट गाना गाया है फिल्म के लिए।
0: अरे वाह,
1: मराठी फिल्म, बसंत जी का म्यूजिक था और फिल्म का नाम था बयानो नवरे संभाला। उसमें डांस की जुगलबंदी थी, जयश्री टी और एक मधुमती करके डांसर थी, तो उनकी दोनों की जुगलबंदी हुई, दोनों के एक का पार्ट मैंने गाया, एक का पार्ट आशा जी ने गाया। मुझे मालूम था कि वो आशा जी कुछ ना कुछ करामत करेगी उनके सामने, मैं तो, और ये मेरे लिए अच्छी बात हुई कि वो अपना पार्ट आके करके चली गई।
0: अच्छा,
1: उनके साथ मुझे गाना नहीं पड़ा,
0: तो
1: मैं बहुत ये दबती थी। हाँ, ट्रैक रिकॉर्डिंग तो शशांक जी करके थे, उनका एसएल स्टूडियो था शशांक लालचंद तारदेव में, तो वहां पे वो मेरा रिकॉर्डिंग हुआ।
0: हाँ,
1: हमारा तो मेरा पार्ट मैंने अलग गाया, लेकिन उनको मालूम था वसंत जी को कि ये क्लासिकल सीखी हुई है, ये भी कुछ करेगी बीच में अपने हिसाब से, तो उन्होंने मुझे ये कहा था जो मैंने सिखाया वैसे ही गाने का,
0: अच्छा,
1: और कुछ करने का नहीं। बोला अच्छा, आपके हुकुम। आशा जी ने क्या अपना पार्ट गाया है, ओ माय गॉड, वो गाना था वो भी अशी त्रैलोक के सुंदरी, बहुत अच्छा गाना था।
0: अच्छा अच्छा, आशा जी की बात निकली है तो आशा जी को किस तरह से आप याद करेंगी?
1: उनके गानों से ऑफकोर्स, और गानों की वजह से, और हर तरह का गाना, जो मैं बताने की जरूरत नहीं है कहने की,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: हर तरह का गाना उनको, वो गाना मुझे बहुत पसंद है, चैन से हमको कभी आपने जीने ना,
0: प्राण जाए पर वचन जाए, और नय्यर साहब का,
1: नय्यर साहब का,
0: क्या बात क्या बात,
1: बहुत सारे, मतलब ये एक ही गाना सुनना तो नाइंसाफी होगी। लेकिन हर गाना उनका बहुत बहुत,
0: ये गाना सुन लिया।

0: प्रमिला जी, इतने तरह के अलग अलग सिंगर्स के साथ शोज आपने किए हैं, सुनहरी यादें ये तो आपके शो का नाम
1: मेरा
0: था,
1: खुद का बैनर था,
0: मगर कभी अलग अलग थीम पे आपने इस प्रोग्राम को प्रस्तुत किया, जैसे रीजनल गाने भी उसमें इंक्लूड किए होंगे?
1: रीजनल गाने तो होते थे, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में दो लावणी चाहिए ही चाहिए, और उसमें भी एक लावणी पाड़ाला पिकला अंबा, वो अगर पहला गाना हिंदी हुआ पुराना कोई फिल्म का, और सेकंड गाना लावणी,
0: अच्छा
1: हाँ दूसरा गाना लावणी, तो अगर किसी वक्त दूसरा गाना लावणी नहीं गया दूसरे नंबर पर, तो लोग एकदम ऐसे, अभी आज ये होने वाला है कि नहीं, चार पांच मैं भी उनको जरा ज्यादा के भी चार गाने पांच गानों के बाद गाती थी,
0: अच्छा,
1: तो
0: अच्छा, अच्छा।
1: अरे अरे आपने पहले नहीं गाया ऐसे, और वो लावणी सुलोचना चव्हाण जी की है
0: जी, बिल्कुल,
1: तो मेरे शो बहुत ज्यादा हुआ करते थे उस मुकाबले में, तो वो गाना मेरे नाम पे रजिस्टर हुआ कि ये गाना इनका,
0: अच्छा।
1: तो एक बार सुलोचना चव्हाण जी का प्रोग्राम था, मुझे ये कोई नहीं, किसी ने मुझे आके बताया तो मुझे मालूम पड़ गया कि किसी ने बताया वो प्रमिला दत्तर जी की लावणी है ना पाड़ाल पिकला अंबा, वो गाई है, वो बहुत बहुत गुस्सा हो गई, वो उसकी नहीं, वो मेरी है, तो उसकी उसकी नहीं है, तो मतलब इस तरह से कोई कोई गाने इतने, गुजराती में गुजरात में गुजराती, फिर कर्नाटक में गए तो कानड़ी, फिर मलयालम, ऐसे एक ही थोड़ा थोड़ा तैयार करके रखा, तो वहाँ के लोकल लोग बहुत खुश होते थे,
0: अच्छा।
1: उनकी भाषा में अगर थोड़ा सा भी गाया ना, तो बस उनको मजा आता था सुनने में।
0: क्या बात,
1: उसका एक मंदसौर का किस्सा है, मैं आपको बताया कि
0: बिल्कुल,
1: मेरे शो मेरे स्टेज में ऐसा रिकॉर्ड हुआ करता था मेरे पीछे, बड़ा रिकॉर्ड ऐसा पत्रे का फोल्डिंग स्क्रीन नहीं, ऐसा स्टैंड पे हुआ करता
0: अच्छा,
1: था,
0: अच्छा, कटआउट
1: बहुत
0: बड़ा
1: कटआउट बनाया था,
0: हाँ।
1: तो पहले लकड़े का था, बाद में हमने वो बहुत खराब होता था लकड़ा, था पत्रे का बनाया था
0: जी, जी, जी।
1: मेटल का, तो उसके मेरा नाम प्रमिला दत्तर और सुनहरी यादें, वो मेरे जहाँ एडवर्टाइजमेंट में भी पेपर में वही, तो मुझे उसी बदौलत लोग अभी भी याद करते हैं कि वो आपका आगे पीछे रिकॉर्ड हुआ करता था, तो रिकॉर्ड हुआ करता मंदसौर में शो था, इंदौर के पास मध्य प्रदेश में एक गांव है,
0: हाँ।
1: मंदसौर करके, तो हमारा शो खत्म हुआ और एक वो रिकॉर्ड, उसको हम साइक्लोरामा डालते थे,
0: अच्छा,
1: तो ऐसा लगता कि रिकॉर्ड घूम रही है,
0: घूम रहा
1: है, ऐसा
0: अच्छा,
1: लगता
0: अच्छा,
1: था,
0: अच्छा।
1: तो ऐसा भास होता था लोगों को, तो एक आदमी बहुत गुस्सा होकर आया, बोले क्या आप फंसा रहे हैं हमको, लोगों को, ऑडियंस को, मतलब क्या क्या हुआ,
0: हाँ।
1: मेरी मेरी तो जहां तक मुझे मालूम है हम तो ठीक अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं आपको अच्छा गाने की, बोले तो नहीं नहीं वो आप पीछे रिकॉर्ड चला रहे हो और आगे मुंह हिला रहे हो सिर्फ
0: अच्छा।
1: एक तरह से वो कॉम्प्लीमेंट भी था,
0: हाँ,
1: कि उसको रिकॉर्ड जैसा लगा
0: क्या बात,
1: लेकिन मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया, मैंने उसको बताया, उनको स्टेज पे जाके दिखाया कि ऐसा होता है, फिर हम लोग गाना गाते हैं सामने, ऐसा गाना गा, फिर वो शांत हो गया आदमी।
0: श्रोताओं की बात निकली है
1: जी,
0: तो आपने भारत में इतने अलग अलग शहरों में गांव में शोज किए हैं और विदेशों में भी किए हैं
1: जी,
0: हर शहर का श्रोता अलग होता है,
1: बिल्कुल
0: है
1: बिल्कुल, और शुरुआत में नहीं लेकिन अनुभव से आपको मालूम होना चाहिए कि अभी गीतों की रचना भी जो करते हैं
0: जी, जी।

0: वे लोग हाँ करके सबके सामने ये करते हैं।
1: अच्छा
0: फिर दो गाने के बाद ये गाना कोडा सोफाज गाना, फिर ये मुड़ के गाने के बाद ये मुड़, वो अपने आप समझना चाहिए, वो सिखा के
1: अच्छा
0: नहीं आती बात।
1: अच्छा अच्छा
0: और जहाँ तक हम पहली बार भी गए
1: हाँ
0: किसी शहर में, किसी
1: हाँ
0: गांव में, छोटे से गांव में भी,
1: जी जी
0: तो पहले दो गाने में अंदाज आता है कि आज क्या चाहिए लोगों को, किस
1: ओहो
0: प्रकार के गाने चाहिए,
1: अच्छा
0: तो वो होने से ज्यादा अच्छा होता
1: हाँ।
0: था
1: और
0: समझ।
1: भारत के श्रोता और विदेशों में जो लोग हैं वहाँ के श्रोता, कुछ उसमें फर्क आपको मालूम पड़ता है, महसूस होता है?
0: फर्क नहीं, अच्छा लोग पसंद करते थे, ये
1: अच्छा
0: है अच्छा
1: हाँ
0: लोग
1: हाँ
0: पसंद,
1: हाँ
0: क्योंकि ये रफी साहब के साथ मैं गाऊं या उनके बाद मैं गाऊं
1: हाँ हाँ
0: तो वो बिल्कुल मतलब ये था, मुझे याद नहीं लगता, लेकिन लोगों को पसंद आते थे।
1: पसंद आता था
0: पहला पमिला
1: जी
0: भी
1: जी
0: अच्छे गाती है, आपने कभी फिल्मों में गाया है क्या, ये सब
1: जी
0: पूछते
1: जी
0: थे फिर आके।
1: और कोई ऐसा गाना जिसकी फरमाइश बहुत ज्यादा होती थी?
0: और रफी साहब का गाना एक डुगाना है,
1: हाँ हाँ
0: 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था,
1: ओहो
0: हाँ, और उसमें जॉनी विस्की हमारे साथ होते थे,
1: जी जी
0: तो वो
1: जी
0: आगे आके उनको उसको एक मतलब ना, मैं बताती हूँ आपको,
1: हाँ हाँ
0: रफी साहब पहले शुरू करते
1: जी
0: थे,

0: गया फिर जानी विस्की और परसो भी रहेगा और तरसो भी क्या जानी भाई आप इतना के पूना गाने का, लेकिन रफी साहब को भी अच्छा लगता था, मजा आता था, लोग मजे लेते
1: जी जी जी तो चलिए इसी गीत के लिए जगह बनाते हैं, ये गाना सुन लेते हैं।
0: जरूर।

0: प्रमिला जी, इतने सारे शोज करने के बाद कोई ऐसी बात रही होगी आपको लगा कि ये होना चाहिए था मगर हो नहीं पाया?
1: प्लेबैक
0: अच्छा,
1: मतलब रिकॉर्डिंग के लिए गाना और
0: हाँ
1: स्टेज के लिए गाना
0: बहुत फर्क है
1: बहुत फर्क है,
0: जी।
1: बहुत ही फर्क है। तो एक ये मुझे थोड़ी सी मन में ये रह गया कि मुझे मराठी फिल्मों में गाया, लेकिन हिंदी फिल्मों के लिए जिससे नाम होता है,
0: जी जी
1: फिर
0: जी
1: भी आखिर में क्या आप दूसरों के गाने ही गाते हैं ना, ये
0: हाँ
1: होता है,
0: हाँ हाँ
1: ये छपका दोष आता है उनके ऊपर,
0: जी।
1: इसलिए वो अगर होता था। लेकिन मैं मेरे इसमें खुश थी,
0: हाँ
1: मैं लोगों को आमने सामने मेरा मुझे ये दाद मिलती थी लोगों
0: जी
1: की,
0: जी
1: तो मैं खुश थी, वही उसमें ही खुश
0: जी
1: थी।
0: जी जी अब
1: और रसिकों की दुआ से, ईश्वर की दुआ
0: जी
1: से बहुत
0: जी
1: अच्छा चला
0: बिल्कुल
1: और नाम देने लगे लोग कि ऐसा मेरा प्रोग्राम एक मापदंड हो गया
0: हाँ
1: कि ऐसा
0: हाँ
1: होना चाहिए
0: हाँ
1: ऑर्केस्ट्रा।
0: जी जी
1: एक पूना के हमारे ये है, उन्होंने इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया मुझे, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा बोले तो लोगों का ये कॉन्सेप्ट था कि वो धांगड़ धींगा ये वो डांस वो, ऐसे नहीं, अच्छी तरह से भी करो
0: जी
1: तो फिर लोगों को पसंद। तो पुणे के हमारे एक अच्छे जो क्लासेस करके उनके प्रिंसिपल थे,
0: हाँ
1: उन्होंने मेरा शो को देखा तो बोले आपका शो खानदानी लगता है, तो
0: हाँ
1: वो एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए
0: क्या
1: बहुत
0: बात है
1: अच्छी
0: क्या
1: है,
0: बात है।
1: दूसरा कोई कहने की
0: हाँ
1: जरूरत ही
0: बिल्कुल
1: नहीं
0: बिल्कुल, शो
1: है।
0: में आपके प्रेजेंटेशन में शालीनता हो
1: प्रेजेंटेशन शालीनता हो
0: तो
1: जरूर,
0: सवाल ही नहीं, वो
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ऑर्केस्ट्रा बहुत सुंदर होता है। क्या
1: बिल्कुल।
0: बात। ऐसे ही आप नामचीन श्रोताओं को याद करना चाहेंगी कि कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई बहुत बड़े नामी गिरामी लोग हैं और वो शो के लिए आपके आए हैं?
1: आए थे बहुत सारे, मतलब उनकी उनकी कंपनी के लिए ऐसे भी मेरे, लेकिन अभी
0: हाँ
1: ज्यादा नाम मुझे याद नहीं है।
0: प्राइवेट शोज भी होते हैं कई
1: प्राइवेट
0: बार
1: शोज भी
0: जी, कंपनी के लिए
1: होते
0: या
1: थे
0: किसी।
1: कंपनी के लिए, किसी
0: हाँ हाँ
1: कंपनी के लिए बहुत शो हुए,
0: अच्छा
1: मतलब बहुत सारी टाटा इंडस्ट्रियल मुंबई के आसपास और बाहर गांव में भी
0: जी जी
1: बहुत सारी कंपनी, उनके लिए चैरिटी शो बहुत हुए मेरे भी।
0: अच्छा
1: नाम सुन के उन्होंने फिर ये किया, कॉन्टेक्ट
0: जी
1: किया
0: जी जी
1: तो।
0: प्रमिला जी, अलग अलग संगीतकारों के गाने आपने मंच पर प्रस्तुत किए
1: हाँ
0: हैं,
1: जी
0: सबका अपना अलग अंदाज होता
1: हाँ
0: है,
1: जी
0: अपना स्टाइल
1: जी
0: होता है।
1: एकदम
0: ये तो नहीं पूछूंगा कि किसका गाना गाते समय आपको ज्यादा आनंद आया मजा आया, सबका
1: समझ,
0: गाने में अलग उनका अपना ढंग होता है और
1: सही बात
0: उनकी
1: सही बात।
0: विशेषता होती है। फिर भी आप क्या फर्क महसूस करती हैं हर तरह के संगीत, पुराने जमाने के जितने संगीतकार हो गए, आप मुबारक बेगम के गाए गाने प्रस्तुत करती थी,
1: हाँ जी
0: शमशाद
1: हाँ जी
0: बेगम जी के
1: हाँ
0: प्रस्तुत,
1: जी हाँ
0: वो जो एक वहां से पूरा दौर आज तक का है, इनमें से अलग अलग संगीतकारों के कंपोजिशंस गाते हुए आपको कैसा लगा, कैसा फील हुआ,
1: यूं
0: किन
1: कहूंगी
0: कंपोजिशंस में
1: कि
0: ज्यादा चैलेंजिंग लगा?
1: हाँ, यही मैं कहने वाली थी कि
0: जी जी
1: पुराने जमाने के जो कंपोजिशंस थे
0: जी
1: वो चैलेंजिंग थे।
0: अच्छा
1: हाँ, अभी
0: अच्छा
1: आज का जमाने का गाना मतलब उतना नहीं, मतलब ऐसा कोई भी गा सकता है ऐसे आज के जमाने के, ऐसा मुझे लगता है,
0: अच्छा
1: मेरी राय होगी और शायद गलत भी हो सकती है,
0: हाँ
1: लेकिन
0: हाँ
1: पुराने जो गाने थे
0: हाँ
1: उसमें अगर जो म्यूजिक भी था
0: हाँ
1: बीच का,
0: जी
1: वो म्यूजिक भी इतना वो गीतों शब्दों से लग के आता था एकदम, कि वो म्यूजिक का टुकड़ा उधर आना चाहिए नहीं तो वो गाना आगे नहीं बढ़ेगा,
0: जी
1: इस
0: जी
1: तरह का हुआ करता था। और लोगों के कान भी इतने तैयार थे कि वो लोग भले संगीत ना सीखे हो, संगीत में उनकी जानकारी क्यों, लेकिन इधर ये गलत है ये,
0: हाँ समझ में आता
1: ऐसा चिल्लाते थे जरा
0: जी
1: भी।
0: जी
1: मैं इसका एक किस्सा बताती हूँ,
0: जी
1: मेरा
0: जी
1: अशोक खोसला करके बहुत अच्छे गजल गायक है,
0: हाँ हाँ
1: उन्होंने शुरुआत करी कि मेरे शो से की थी,
0: अच्छा
1: तो वो सेमी क्लासिकल रफी साहब कैसे मधुबन में राधिका नाचेरे गाना,
0: जी जी
1: तो वो गाना वो पेश करता था बहुत अच्छा, और उसमें सरगम ये सब है वो ठीक तरह से गाता था, लेकिन गाने के अंत में एक ताने ली हुई है।
0: अच्छा
1: हाँ, तो नंदुरबार करके गांव है छोटा
0: जी
1: सा धुलिया के पास,
0: जी
1: तो वहां पे एक आदमी आया मेरे पास शो, जैसे आते हैं आपका प्रोग्राम अच्छा हुआ ये अच्छा ये गाना क्यों नहीं गाया वगैरह वगैरह, तो आया वो आपके आर्टिस्ट ने वो गाना ठीक गाया लेकिन सही नहीं गाया।
0: हाँ
1: मुझे भी समझ में नहीं आया कि मेरे हिसाब से तो अशोक अच्छा गाता था, उसको
0: हाँ
1: क्लासिकल का ज्ञान
0: हाँ
1: था,
0: हाँ
1: तो नहीं वो लास्ट में जो ताने हैं वो उसने नहीं लिया, वो
0: ओ
1: तो रफी साहब ने भी नहीं गाई थी, वो
0: हाँ
1: आमिर खान साहब की गाई हुई है वो, तो लेकिन रफी साहब गाने सकते ऐसा नहीं था,
0: हाँ
1: लेकिन कैरेक्टर के हिसाब से मुकरी के शायद वो ताने लिए हैं
0: जी
1: मुकरी,
0: जी
1: तो उतना भी उसको मालूम पड़ा,
0: बिल्कुल,
1: म्यूजिक का एक पीस भी इधर उधर हो जाए
0: तो श्रोताओं के
1: भी,
0: समझ में आ
1: पुराने जो
0: जाता है।
1: गाने
0: जी जी
1: बराबर उनको ए
0: बिल्कुल
1: करके चिल्ला देते वहां
0: हाँ
1: से।
0: हाँ क्योंकि श्रोता जो है, दर्शक जो है, वो फिल्म में जो उन्होंने देखा है और उस गीत को बार बार
1: हाँ,
0: सुना है
1: वो
0: तो
1: उनके
0: उन्हें
1: दिमाग
0: वैसा का
1: में
0: वैसा वो सुनना
1: वैसा के
0: चाहते
1: वैसा।
0: हैं।
1: अभी ये
0: जी
1: गाना है तो थोड़ा सा चुप

0: चुप खड़े हो जरूर कोई बात है, टर टर टर, वो आना ही चाहिए ऊपर, नहीं तो आगे नहीं बढ़ेगा गाना। इतना म्यूजिक चिपक के चलता था शब्दों को।
1: जी, ऑर्केस्ट्रा में जो बहुत से म्यूजिशियंस होते हैं,
0: जी
1: उनकी नज़र से एक
0: हाँ,
1: सवाल ये पूछना चाहूँगा, क्योंकि हर म्यूजिशियन को, जैसे हर गायक को गाने का मौका मिलता नहीं है फिल्मों
0: मिलता
1: में,
0: नहीं है, सही बात,
1: तो बहुत से म्यूजिशियंस जो है ऑर्केस्ट्रा में भी अपना बजा करके
0: बजा करते
1: अपना
0: हैं।
1: उधर निर्वाह करते हैं, तो उनके दृष्टि से ये एक सवाल है कि कैसी तैयारी होनी चाहिए, शो की तैयारी कैसी होनी चाहिए?
0: एक तो रिहर्सल, बहुत ही रिहर्सल होनी चाहिए, जिसका से वो एकदम परफेक्ट हो सब जगह से, म्यूजिक के हिसाब से, गाने के हिसाब से। इसका मैं, अब बदलाव किस तरह से आया है अभी मैं एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं जब शो करती थी तो महीने में 20 शो 25 शो हुआ करते थे, वही। और मेरा ये एक था कि जो मेरा ग्रुप है वो ही होना चाहिए, नहीं तो आज ये ढुलकी वाला आया, कर ये कीबोर्ड वाला आया, उनको गाने मालूम रहते हैं लेकिन वो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग नहीं होता गायक का और बजाने वाले का।
1: बिल्कुल,
0: तो मेरा जो ग्रुप रहता था हमेशा वो ही रहता था सालों साल तक। अभी मैंने 2023 को एक शो किया, बहुत सारे लोगों ने मुझे, क्या कर रही है तू, शो करना अभी, तू गा सकती है, क्योंकि मैं गाने भेजती थी ना रोज 4 साल से, तो एक शो करना, तो मैंने कहा चलो करें। तो एक गुड़ी पाड़वा के दिन 23 मार्च 2023 को
1: अच्छा,
0: शो किया, तो एक तो बहुत सारी चीजें नई थी मेरे लिए, म्यूजिशियन का पेमेंट, मतलब मैं उसका ये नहीं करूंगी लेकिन एक काल के हिसाब से एकदम से जो बदली हो जाएगा नाजी, तो जो मेरा पेमेंट फिक्स हुआ था म्यूजिशियन का, उसमें एक रिहर्सल और शो बस, दूसरी रिहर्सल नहीं।
1: ओ
0: हाँ एक ही रिहर्सल, वो मुझे तभी मालूम पड़ी वो
1: क्या
0: बात,
1: बात,
0: नहीं तो ठीक है कि उनको भी सब गाने मेरे पुराने वाले में भी दो तीन थे म्यूजिशियंस, एक संजय मराठे करके है, तो बहुत पहले शुरुआत में करियर मेरे शो से हुई, और आज वो बहुत ही एस्टेब्लिश्ड, उसका खुद का ग्रुप है, तो मैंने उसको ही बोला तुम्हारा खुद ग्रुप लेके आओ मुझे शो करना है, तो
1: अच्छा,
0: ज्यादा रिहर्सल की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन कोई अगर नया सिंगर होता जाता तो उसके लिए तो जरूरत होती थी ना
1: बिल्कुल
0: रिहर्सल,
1: बिल्कुल,
0: तो एक रिहर्सल और शो, लेकिन फिर भी लोगों ने पसंद किया उसको, शो
1: जी।
0: को।
1: आपने अशोक खोसला जी का जिक्र किया, ऐसे और कोई कलाकार जिन्हें आपकी शो से शुरुआत करके और फिर आगे इंडस्ट्री में?
0: विनय मन के बोलूंगी, विनय मन के,
1: विनय मांड
0: विनय
1: के,
0: मन के,
1: जी, मैं श्रोताओं को बता दूं कि बहुत
0: और
1: से विज्ञापनों में विनय मांड के जी की आवाज हम सुनते हैं,
0: जी,
1: तो
0: तो उसको जिंगल किंग ही बोलते थे। हाँ बहुत सारे जिंगल गाए उसने, और
1: अच्छा,
0: स्टेज में जो एक प्रेजेंटेशन होता है, स्टेज परफॉर्म होता है, वो था, बहुत सारे हल्की बुल्की बातें भी करने का बीच में मतलब ऐसे किसी को तकलीफ देने के लिए, लेकिन वो अपने खुद के स्वभाव के हिसाब से उसका चलता था। फिर वो जो कव्वाली अशोक खोसला जी गाते थे नॉट डेट, तो उसमें कोरस था, तो मेरे गायक कलाकार उसको कोरस देने के, तो
1: अच्छा,
0: ये कुछ कुछ कुछ कुछ बीच में, अशोक जी इतने एक दाई, अभी मैं वो कव्वाली नहीं गाऊंगा, फिर मैंने विनय को समझाया, फिर वो मतलब ऐसा वो मजा आया, मजा गया।
1: बहुत अच्छे
0: फिर
1: सिंगर
0: एक
1: हैं
0: गाना था अन्ना
1: जी।
0: जी का, भोली सूरत दिल के खोटे, नए जमाने की ये नारी, नए जमाने की ये नारी, फिर एक लास्ट में लाइन था, हाथ में कंगन कान में बाली, कान में बाली, तो ये बोला ऐसा, हाथ में कंगन कान में बाली, कभी बोला ऐसा योगिता वाली, कभी बोला ऐसा खोटी वाली, कुछ भी मतलब वो ठीक था, लोगों को भी
1: अच्छा,
0: मजा आता
1: मस्ती के
0: था,
1: मूड में
0: मस्ती के
1: हमेशा
0: मूड
1: रहते
0: में।
1: थे वो।

0: कलाकार सब मतलब मेरे हिसाब से अच्छे थे, ठीक
1: जी
0: थे,
1: जी जी
0: लेकिन विनय जो अकेला संभालता शो, कोई भी सिंगर का गाना वो गाता, मुकेश जी का बोलो, रफी साहब का बोलो,
1: जी
0: किशोर कुमार जी का बोलो, अच्छे गाता
1: जी
0: था
1: जी
0: इसका।
1: जी
0: उसे सिखाई वगैरह नहीं था उसने कुछ, लेकिन
1: हाँ
0: उसकी जातिया, उसकी आवाज भी सब
1: जी जी
0: था,
1: जी
0: अच्छा गाता।
1: प्रमिला जी, अब गान सम्राज्ञी जिनको हम कहते हैं, सरस्वती माँ कहते हैं
0: माँ
1: जिन्हें,
0: जी
1: उनकी बात करते हैं। कभी लता जी से मिलने का मौका मिला?
0: मिला, मतलब मैंने क्या हुआ, मेरा जो गुड़ी पड़वा का बड़ा शो होता था हर
1: जी
0: साल,
1: जी जी
0: हर साल, तो मैं कोई इंडस्ट्री का बड़ा कलाकार या तो संगीतकार या तो पॉलिटिशियन कोई, अच्छा सब सीएम जो थे मेरे शो में आके गए हैं, पाड़वा के शो में,
1: ओहो
0: वसंत दादा पाटिल, शंकर राव चौहान और जो कुछ,
1: जी
0: विलास राव देशमुख, सुशील कुमार जी शिंदे, सब आके गए। वो बड़ा शो हुआ करता था, और तो मैं किसी को बुलाती थी,
1: जी
0: या तो फिल्म कलाकार या तो मैं उसके लिए उनके पास गई थी, उनके घर में गई थी प्रभु
1: हाँ
0: कुंज में, तो उसके सामने बैठी थी, तो मुझे लगा मैंने जन्नत पा ली
1: बिल्कुल
0: सामने दर्शन हुआ साक्षात। तो मैंने बता दिया, मुझे बोली कि क्यों आपके आपने कैसे आना किया, कशा कशा काय आला तुम्ही मराठी मध्ये, तो मला दीदी माझा शो असतो दरवर्षी
1: हाँ
0: गुढी पाडव्याला,
1: अच्छा
0: तर आपण यावं अशी खूप इच्छा आहे,
1: हाँ हाँ
0: लेकिन वो बाहरगाव जाने वाली थी,
1: अच्छा
0: नहीं आई।
1: अच्छा
0: फिर मुझे उन्होंने पूछते हैं कि कसं भाव तुम्ही असे प्रोग्राम करता, एवढे प्रवास करायचा, परत गायला उभं राहायचं
1: ओहो
0: कसं करता, म्हटलं नाही अभी आदत हो गई है,
1: हाँ हाँ
0: हो
1: हाँ
0: जाता है मतलब उसने, उसके पास वो नोन थी कि
1: हाँ
0: हम शो करते हैं, महीने में इतने शो होते हैं, पूरा
1: हाँ
0: मालूम आती
1: मालूम था
0: उनको
1: उनको, क्या बात। अब फिर से वही मुश्किल सवाल के लता
0: जी
1: जी का जो गीतों का खजाना है उसमें से गाना चुनना तो बहुत मुश्किल है, मगर अलग अलग समय पे अलग अलग शोज में आपने
0: जी
1: अलग अलग गाने उनके
0: हाँ
1: गाए
0: जी हाँ
1: हैं,
0: जी
1: कौन सा एक गीत आप अभी इस वक्त हमें सुनवाना चाहेंगे?
0: उनका भी एक सजा फिल्म का गीत है,
1: हाँ
0: तो वो मैं शायद

0: प्रमिला जी, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि मराठी लावणियां आपके शो में हमेशा हुआ करती थी, और उसमें से भी सुलोचना जी का गाया हुआ जो गीत है, जो
1: पाड़ाला
0: लावणी है,
1: पिकला
0: पाड़ाला पिकला
1: अंबा,
0: आंबा, इसकी फरमाइश हमेशा होती थी, या
1: हाँ
0: उसका शो में
1: वो
0: शामिल
1: थी,
0: होना बहुत
1: शामिल होना
0: जरूरी होता
1: बहुत
0: था।
1: ही जरूरी था, मस्ट।
0: हाँ,
1: और
0: तो
1: भी
0: एक तो पहले हम उसकी एक झलक सुनेंगे
1: जरूर
0: और
1: जरूर।
0: फिर लावणी की भी बात करेंगे।
1: हो मसला बगुन तुम्ही जाना हो पाऊन, नमुना बगुन तुम्ही जाना हो पाऊन, हो पाऊन पाऊन पाऊन जरा थांबा, हो पाऊन जरा थांबा, पाडाला पिकलाय आंबा।

0: वैरायटी होती
1: हाँ
0: थी,
1: हाँ
0: पर
1: हाँ
0: फिर ये गाना तो वंस मोर होता ही था,
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: मैं लोगों को थोड़ा सा उनका भी पार्टिसिपेशन, तो मैं बोली अभी अगली बार मैं गाऊंगी कि
1: हाँ
0: बहुत थक गई हूँ, तो
1: हाँ
0: पाड़ा पिला मैं बोलूंगी अम्बा बोलेंगे। हाँ, तो वो
1: अच्छा
0: लोग पहले शुरुआत में जरा शर्मा के अम्बा बलकर, अरे क्या कर रहे हो आप, अम्बा ऐसा जोर से आना चाहिए कि छत ही पूरा उड़ जाना चाहिए, इतना
1: जी
0: जोर से, फिर जोर से एकदम जोर जोर लगा के अम्बा
1: क्या
0: आता था सामने से, मजा
1: बात
0: आता था उनको भी थोड़ा सा, हमने भी कुछ किया
1: वाह वाह वाह
0: उनको भी शायद।
1: जी। प्रमिला जी, आपकी बातों में हमने जिक्र किया अलग अलग जगह आप शोज करती थी, तो जिस प्रदेश में जाएंगे वहां का कोई गाना आप उन्हें
0: हाँ
1: जरूर
0: जी
1: सुनाया करती
0: गाते
1: थी
0: थे। हाँ,
1: और अपनी
0: तो
1: लिस्ट
0: एक
1: में
0: कन्नड़ा
1: जरूर।
0: गाना थोड़ा
1: हाँ
0: सुनाती हूँ,
1: जी जी जरूर
0: मेरी
1: जरूर
0: लड़की बैठे ना वो तो खुश हो जाएंगी।

0: क्या बात है, कर्नाटक के श्रोताओं को आपने खुश कर दिया। अब गुजरात के श्रोता सोच रहे हैं
1: कोशिश
0: कि भाई
1: की।
0: क्या
1: अरे बाप रे,
0: हमारा नसीब।
1: गुजराती तो वो एक गाना था।
0: हाँ,

0: ये गाना बहुत उधरे ज्यादा। और उधर गुजरात की एक मैं खास बात बताती हूँ, गुजरात में जाते हैं तो नए फिल्म के गाने उनको बहुत चाहिए।
1: अच्छा,
0: नए गाने, दो गाने लाइन से अगर पुराने गाए तो एकदम रेस्टलेस होते थे। हाँ। तो उधर एक एरिया है सूरत में, वहां जब सब काठियावाड़ी ने वो झिबला पहनते हैं, हाँ, हाँ, शॉर्ट, हाँ। वो पहन वाला बैठे थे तो एक आदमी पहले ही रो में ऐसा एक पाव ऊपर ऐसा बीड़ी पी रहा था, तो बीड़ी पी रहा था तो पाव ऊपर करके अपने घुटने पे हाथ रख के, तो दो गाने पुराने हो गए। ए प्रेमिला बेन, नवो पिक्चर लो गाएं गाओ, नए पिक्चर के गाने गाओ।
1: जी,
0: तो
1: जी,
0: मैंने
1: जी।
0: उसकी तरफ देखा और बोला तेरा पग पहला नीचे कर।
1: ओ।
0: इतना कॉन्शियस हो गया और आजू बाजू के लोग भी सब हंसने लगे उसमें। तो ऐसी थोड़ा सा स्पॉन्टेनियस कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए, तुम्हें भी जवाब देना या कुछ बोलना।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल। 1975 में जो शुरुआत हुई उस वक्त पहली बार आपने जो गानों की फेहरिस्त बनाई,
0: हाँ
1: होगी,
0: जी,
1: लिस्ट
0: हाँ
1: बनाई
0: जी,
1: होगी,
0: हाँ जी,
1: है ना, और आखिरी शो जब किया,
0: हाँ जी,
1: तब की जो उस प्रोग्राम, उस शो की जो लिस्ट थी।
0: बहुत सारे गीत कॉमन थे उसमें जो
1: अच्छा
0: लोग पसंद करते थे,
1: अच्छा
0: हमारे लिए नहीं।
1: हाँ
0: लेकिन एक तो गांव के हिसाब से गाने बदली होते थे इधर
1: हाँ
0: उधर,
1: हाँ
0: लेकिन बेसिकली जो मेरे गाने मेरी पसंद के या लोगों की पसंद के
1: हाँ
0: पहले से थे
1: अच्छा

0: में बहुत सारे गाने रिपीट थे। अच्छा, नए गाने भी गाने पड़ते थे कुछ लोगों के लिए, लेकिन एक एक अवारी जो मैंने बोली, निगाहें मिलाने को जी चाहता है, पे पाड़ाला पिखला अम्बा, फिर मैं जो मेडली थी पांच गायिकाओं की, वो लोगों को बहुत पसंद आती, वो वही थी।
1: अच्छा।
0: उनके गाने अलग अलग थे, लेकिन नहीं, वो ही गाने चाहिए लोगों को।
1: वाह वाह वा।
0: बहुत मजा आता था।
1: बहुत मजा रहा है आपकी बातों में और आपके अनुभव सुन
0: हाँ जी,
1: करके।
0: हाँ जी,
1: प्रमिला जी, अगर विविध भारती के श्रोताओं के लिए एक गाना आपको गाने के लिए कहा जाए, तो वो कौन सा
0: ओहो
1: गीत होगा आज के कार्यक्रम का, हमारे इस प्रस्तुति का अंतिम गाना?

0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इस गीत के साथ जो है कार्यक्रम का समापन हो रहा है। वक्त ने किया क्या हंसी सितम,
1: जी
0: मगर हम कहेंगे कि वक्त ने बहुत अच्छा, ऊपर वाले का ये करम है
1: करम,
0: कि आज आप यहाँ पधारी,
1: बिल्कुल बिल्कुल, और मेरे लिए भी
0: और इतनी सारी बातें हमसे की, इतने अच्छे अनुभव हमसे साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे विविध भारती की ओर से, विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से हम आपको धन्यवाद देते हैं।
1: मैं भी धन्यवाद दूंगी आप सबका, आपका जो बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल आपने पूछे, जो मैं चाहती थी कि आप पूछे, और सब श्रोताओं का कि उम्मीद करती हूँ जो मैंने थोड़ा सा जो पेश किया है आप पसंद करेंगे, और वैसे ही मुझे चाहेंगे जिससे आज पिछले कई सालों से चाहते आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती का।
0: धन्यवाद।

अभी आपने सुनी जानी मानी गायिका प्रमिला दातार से जयंत पात्रीकर की बातचीत। ये इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग था। रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन रीमा जोशी, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

0: पर है अपना बॉम्बे टॉकी।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चढ़ से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से
3: मैंने पढ़ा, जाने कितनी उड़ान बाकी इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत जी म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 20 मई शाम 4 बजे और 21 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जान

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ।

नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर

0: आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के वाड्रफ नगर, रामानुजगंज और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये मिंडारी, प्रेमनगर, भगवानपुर, नवापारा, चिनिया, महावीरगंज, रामपुर, कनक कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, बदौली, जवा खांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के उदयपुर, सीतापुर और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 19 है। ये लक्ष्मणगढ़, जगन्नाथपुर, सायर, ससकालो, मुड़ापारा, सुखरी भंडार, सरगा, ढोढ़ा गांव, बोड़ाझरिया, घासीडी, गढ़गांव, बैगहवा, बरडाण, कंडराजा, चोरकी, पानी के क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वन मंडल के कुनकुरी, पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 35 है। ये नारायणपुर, जामचुआ, चरईमारा, रानी कोम्बो, खड़ा माचा, कुकुर गांव, कुदराझरिया, साजा पानी, तीता पाकेर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, बाकारुमा, कापू और बोरो में हाथियों की कुल संख्या 136 है। ये गिरसा, पोटिया, आमगांव, रुपुंगा, तेजपुर, बेहरामार, बनहर, औरानारा, पुरुंगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 3 है। ये कलमी टिकरा, गिरारी, गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वन मंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 5 है। ये बंगूरसिया, नवागांव, चक्रधरपुर, जुनवानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वन मंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये आमाकोनी, नवापारा, सरायपाली, गंधरा चुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, पकरीत, ताल दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड, अमलोर, ताराजय, डडई पानी, बुडार, सिहार, छिंदौला, लूठापारा, नारी पानी, डूमर घाट, कोदोमाली, मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे अमर हाथी अमर गोठ।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, गीत और संगीत मानव आत्मा की सबसे गहरी भाषा है, जो बिना कहे भावनाओं को व्यक्त करते हैं। संगीत न केवल मन को सुकून देता है, बल्कि यह जीवन के उतार चढ़ाव में सहारा भी बनता है। ये तनाव कम करता है, रचनात्मकता बढ़ाता है और मूड को सकारात्मक रूप से बदलता है। श्रोताओं, गीत और संगीत वो जादुई तत्व हैं जो उदासीनता में भी खुशी का रंग भर देते हैं, जिससे ये जीवन जीने की कला का एक अनिवार्य हिस्सा बन जाते हैं।

तो श्रोताओं, देर किस बात की, चित्रपट संगीत में कुछ बहुत ही खूबसूरत गीत लेकर आज हम हाजिर हुए हैं। तो सुनते हैं कार्यक्रम का ये पहला खूबसूरत सा गीत, जिसे हमने लिया है आखिर क्यों फिल्म से। इस गीत को आवाज दी है मोहम्मद अजीज ने, इंदिवर के बोल हैं और राजेश रोशन का संगीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म आखिर क्यों से मोहम्मद अजीज का गाया ये गीत, और आइए अब सुनते हैं फिल्म मिली से किशोर कुमार की आवाज में ये गीत। गीत के बोल योगेश के हैं और धुन बनाई है SD बर्मन ने।

श्रोताओं, चित्रपट संगीत का आनंद आप ले रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। तो आइए अगला गीत सुनते हैं, फिल्म मजबूर से किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और तर्ज बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

आइए सुनते हैं अब फिल्म लावारिस से आशा भोसले और किशोर कुमार के युगल स्वरों में ये गीत। गीत के बोल अनजान के हैं और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

आइए सुनते हैं अब फिल्म नाम से पंकज उदास और साथियों का गाया ये गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:35 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ऐश्वर्य का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं फिल्म दिल एक मंदिर से। लता मंगेशकर की आवाज है, हसरत जयपुरी का गीत है और संगीत शंकर जयकिशन का। और इस गीत को सुनने के लिए हमारे पास इन श्रोताओं ने ईमेल से फरमाइश भेजी है। मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत गवाणकर, सरिता, प्रिंस एकांश गवाणकर। सेक्टर 69 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टी मल्होत्रा, डी ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमन देव। कालका से हैं शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। अंबागढ़ चौकी से हैं रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस और रेहान। छत्रपति संभाजी नगर से हैं राजेश साबले।

पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल राजेश। पोटिया कला दुर्ग से हैं संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू। लच्छनपुर से हैं रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। डुमराव से हैं वलीउल्लाह अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत मोदी और इफ्साल ताज। कोटवा नारायणपुर बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, उषा, अमित राय, हैप्पी राय। नरवेल महाराष्ट्र से हैं पी एस नवहारकर, निर्मला, विशाल नवहारकर। सौगा मगर लोट से हैं फनीश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी, रानी चंदन, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन। कुम्हार गली श्रीरामपुर से हैं अशोक दले, सविता, अनिकेत दले, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका दले। कर्मा चौक लोहारडी जिला कवर्धा से हैं अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशांत और निशान साहू। रोहासी से हैं मुकेश साहू, नंदिनी, मनीष, मयंक, जानकी साहू। गांव नथाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। चिरमिरी कुरासिया कालरी से हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे और कालिंद्री लहरे। तो आइए आप सभी की फिल्म पसंद पर सुनते हैं दिलेक मंदिर फिल्म से लता मंगेशकर का गाया ये गीत।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म दिल एक मंदिर से लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। और आइए अगला गीत हम सुनते हैं फिल्म लावा से आशा भोसले की आवाज़ में। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और धुन बनाई है आरडी वर्मा ने। इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा। सरगांव से हैं राजेश वर्मा, हिरोमन पल्लवी, राजेश्वरी वर्मा। पटियाला से हैं मुकेश बत्ता और नीलम बत्ता। यवतमाल से हैं राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन रोशनी, प्रियांशी मनवर। दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका भानु। पाखुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद। कालेगांव जाफराबाद से हैं सुधाकर राजेश यादव, प्रशांत राजे यादव, संचित वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख और सर्वत देशमुख। दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन, वीना, चैतन्य मस्किन और मेगा मस्किन। वडिंग खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा। नरगोड़ा से हैं कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा मस्किन। गाँव फ्रांसी हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी। महसौल सीतामणि बिहार से हैं मुसर्रत जहानास, तलत फरहत, रितअत और नुजहत, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। हिंगोली महाराष्ट्र से हैं शाहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान उत्तम जामदाड़े। भूचो कैनचिया बठिंडा पंजाब से हैं प्रेम सिंह जौड़ा, मंजीत कौर जौड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप सीमू, एकम दामन और अभिजोत। भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल छिम्पा और पूजा परिहार। रायगढ़ बिहार से हैं उमा राज, पवन, संजय, दीपक और कमल उमा। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म लावा से आशा भोसले की आवाज़ में ये गीत।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में फिल्म आशा से ये गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। और इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मोहराज जहाँ की। अडार नांदघाट से हैं माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा। पिपरिया से हैं कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता,

समडेल नवापारा से हैं मुकेश गुप्ता, श्रद्धा अदिति, राधे, दीपक, अंकुर, राघव गुप्ता। राजकोट से हैं राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी। सरगुजा मेनपाट से हैं अजीता पॉल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा। छोटी बलिया करजत मुंबई से हैं अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन। पीपरलोट सरगांव से हैं दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा। पहदा पलारी से हैं नितेश कुमार, तनुजा दिवांगन, ईशांत, लखनलाल, सावित्रीबाई दिवांगन। खमरिया से हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। बलौदा से हैं दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल। नेपानगर मध्य प्रदेश सुदर्शन से हैं सुदर्शन शाह पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। राजकोट से हैं जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी। रघुवीर नगर से हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा, नायाब और लड्डू। हांसी से हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। जगराव से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक। धुर्रा बांधा भाटापारा से हैं प्रमोद साहू, देव, नवीन और युवराज साहू। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म आशा से ये गीत।

श्रोताओं आइए अगला गीत सुनते हैं फिल्म राजा हिंदुस्तानी से कुमार शानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में। गीत के बोल समीर के हैं और संगीत नदीम श्रवण का। और इस गीत को सुनना चाहा है दतरंगी भाटापारा से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा ने। और इसी गीत के लिए फरमाइश भेजी है धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संगीत बाठे और अमूल बाठे ने। पलारी से हैं प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल और यशस्वी वर्मा। देवरी भाटापारा से हैं गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश राम मिस्त्री। टोरोवाल जिला नवांशहर पंजाब से हैं गगनदीप थांती, तृप्ता प्रियंका, प्रशांत प्रियंका थांती और वामिका वाणी थांती थांदी। पंजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से हैं सत्येंद्र कुमार चौंसलिया, आदर्श सार्थक, अलौकिक चौंसलिया। नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा। बठेना पाटन दुर्ग से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, यश, प्रयाण, शिवम, रेखा, धनेश्वरी वर्मा। रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। भिलाई से हैं अशोक, श्याम कुंवर, प्रमीला, आसमा, श्याम कुंवर। गंडई टिकरी पारा से हैं जोगेश्वर देवांगन, कचरीबाई, दीपक, जय श्री ऋषभ, ऋचा देवांगन। कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम। सनावत से हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अल्तमश खत्री, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद रमेश गोड़, मोहम्मद शावदाब खत्री। लूथरा खमरिया से हैं अकरम अमीन और अर्श अतिका। लोहगढ़ ठाकुरावाला से हैं स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर गुरनाल सिंह, अविराज सिंह। रिंगनी से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। नवागढ़ कटई से हैं नारायण प्रसाद वर्मा और चंद्रकांत वर्मा। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम। कार्यक्रम का शेष भाग हम लेकर आएंगे शाम 6:20 पर। और आइए श्रोताओं, अब शाम के 6:05 होने वाले हैं। आइए मुख्य कार्यक्रमों की, आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की सूचना आपको दे दें कार्यक्रम विवरण में।

अब से कुछ देर बाद शाम 6:20 पर और 7 बजे श्रोता सुनेंगे ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का शेष भाग। अब से कुछ देर बाद 6:10 पर छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार और शाम के साथ 6:45 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार रायपुर से रिले किए जाएंगे। शाम 7:20 पर ग्राम सभा का प्रसारण किया जाएगा। इसमें बेरा के गोठ का विषय होगा प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना और साथ ही चर्चा होगी मौसम ऐप और किसान पर। शाम 7:30 पर किसानवाणी

0: कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसमें आज की बात में चर्चा होगी पुष्प विकास कार्यक्रम पर। भेंटवार्ता क्रम में टिश्यू कल्चर केले की उन्नत खेती विषय पर कार्यालय उपसंचालक उद्यान सरकंडा बिलासपुर की ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी श्रीमती वंदना एक्का से कजरी बहिनी के बातचीत, साथ ही सुनिए गीत संगीत और मौसम मंडी की जानकारी। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत में शंकर महादेवन के गाए कुछ गीत आप सुनेंगे। रात्रि 8:15 पर रजनीगंधा कार्यक्रम का प्रसारण होगा। रात्रि 9:15 पर विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे। ये तो थे आज के शेष कार्यक्रम। और अब कल के मुख्य कार्यक्रम। कल प्रातः 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम होगा आराधना। 6:30 पर खेती की बात में सामयिक सुझाव दिए जाएंगे ग्रीष्मकालीन करेला की उन्नत खेती पर। वाचन स्वर होगा त्रिलोकी सिंह का। रामचरित मानस गान का प्रसारण होगा प्रातः 6:35 पर और 6:45 पर चिंतन आप सुनेंगे। विषय होगा मनुष्य अपने विचारों से जाना जाता है, आलेख श्री हरि प्रकाश वत्स का। आकाशवाणी की 90 वर्ष की स्वर्णिम यात्रा पर कार्यक्रम हम रिले करेंगे रायपुर केंद्र से सुबह 7:10 पर। सुबह 7:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की बात में चर्चा करेंगे त्वचा रोग पर। सदाबहार नगमों का आनंद आप लेंगे सुबह 7:40 पर। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का फरमाइशी कार्यक्रम माटी के स्वर आप सुनेंगे सुबह 8:30 पर। सुबह 10 बजे आओ बच्चों कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसमें सामयिक चर्चा होगी विश्व मधुमक्खी दिवस पर और अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस, चाय का इतिहास और इसके महत्व पर। नए तरानों का आनंद आप लेंगे सुबह 10:30 पर। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 9 बजे से 9:55 तक, सुबह 11 बजे से 11:55 तक और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। शाम 5:35 पर और शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुनें। शाम 5:05 पर चित्रपट संगीत आप सुनेंगे और शाम 6:05 पर जिले की चिट्ठी और 6:30 पर कानून की बात में जेलों में निरुद्ध विचाराधीन एवं दंडित बंदियों के विधिक अधिकार विषय पर असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल दुर्ग के अधिवक्ता श्री सौरभ शेंद्रे से जानकारी हम रायपुर केंद्र से रिले करेंगे। ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण होगा शाम 7:20 पर। इसमें बेरा के गोट का विषय होगा आकाशवाणी के 90 वर्ष, साथ ही आप आनंद लेंगे फरमाइशी लोकगीतों के कार्यक्रम आप मन के गीत का। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत में सुनिए सपना अवस्थी के गाए कुछ गीत और रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रजनीगंधा। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने वाले हैं। कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ी में समाचार रायपुर से रिले किए जाएंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग स्मिता शर्मा के जय जोहार। अब आप सुनो आज के प्रमुख समाचार। वित्त विभाग हा शासकीय खर्चा में मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन निश्चित करे के उद्देश्य ले निर्देश जारी करे है। केंद्रीय गृह मंत्री काली ले 3 दिन के दौरा में छत्तीसगढ़ आवत हैं। ये दौरान उमन हा मध्य क्षेत्रीय परिषद के 26वां बैठका के अध्यक्षता कर ही और प्रदेश के जनजातीय गांव मन में अवैया 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाए। अब समाचार विस्तार ले। वित्त विभाग हा शासकीय खर्चा में मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन निश्चित करे के उद्देश्य ले निर्देश जारी करे है। एकर अनुसार सबो विभाग संभागीय आयुक्त कलेक्टर और विभागाध्यक्ष मनला सरकारी संसाधन के बने उपयोग और गैर जरूरी खर्चा ऊपर नियंत्रण राखे बर कहे गए है। वित्त विभाग के सचिव डॉक्टर रोहित यादव डहारले जारी ये निर्देश ला तत्काल प्रभाव ले लागू कर दे गए है। ये निर्देश अवैया 30 सितंबर तक प्रभावी रही। निर्देश के अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, निगम मंडल और आयोग के पदाधिकारी मन हा अपन काफिला मा सिर्फ जरूरी गाड़ी मन के ही उपयोग कर सकी। एकर अलावा सबो सरकारी गाड़ी मन ला इलेक्ट्रिक गाड़ी मा बदले के निर्देश दे गए है। पेट्रोल और डीजल में होवैया खर्चा ला कमती करे बर और एक दिशा में जाने वाला अधिकारी मन बर वाहन पुलिंग व्यवस्था

0: लागू करे बर कहे गे हे। उन्हें जरूरी काम के अलावा राज्य सरकार के खर्चा में शासकीय सेवक मन के विदेश यात्रा ऊपर पूरा रोक लगे रही। जरूरी होए में मुख्यमंत्री के मंजूरी लेबर पड़ी, वर्चुअल और ऑनलाइन बैठका ला ज्यादा बढ़ावा दे जाही। उन्हें शासकीय भवन में ऊर्जा की बर्बादी ला रोके बर जरूरी उपाय करे जाही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह काली ले 19 मई तक छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरा में आवत हैं। यह दौरान उमन 19 मई के बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद के 26वां बैठका के अध्यक्षता करही। बैठका में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय संग्रह, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल होही। बैठका के तैयारी के बारे में मुख्यमंत्री श्री साय काली मंत्रालय में उच्च स्तरीय और समीक्षा बैठका करें और अधिकारी मन ले जरूरी निर्देश दें। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरा के बारे में उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा पत्रकार मन ला बतायें कि डायल 112 आपातकालीन सेवा के विस्तार करे जावत थे। एकर तहत केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह 18 मई के रायपुर में 400 नवा गाड़ी के शुरुआत करी। ये दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राजला एक नवा फॉरेंसिक लैब और जांच भर 33 सर्व सुविधा युक्त वाहन के सौगात घलो देही। श्री शर्मा बतायें कि बस्तर के नेतानार सुरक्षा केंद्र रहा पहले ऐसा जगह है जिला जन सुविधा केंद्र के रूप में बदले जावत थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपन बस्तर प्रवास के दौरान ये केंद्र के उद्घाटन करही। ये केंद्र में अस्पताल, स्कूल, बैंक और आंगनबाड़ी जैसा जरूरी सुविधा दे जाही। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा आज जगदलपुर में कार्यक्रम स्थल में जाके तैयारी के जायजा लीन और अधिकारी मंडला जरूरी निर्देश दीन। सुशासन तिहार के तहत आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जांजगीर चांपा जिला के कोसला गांव पहुंची नौ चौपाल लगाईन। ये दौरान उमन लोगन ले सीधे चर्चा करीन और सरकार के आने आने योजना में हुए काम के जानकारी लीन। उमन ग्रामीण मन के समस्या सुनी नौ अधिकारी मनला उखर निपटारा करे के निर्देश दीन। ये मौका में मुख्यमंत्री कहिन कि सुशासन तिहार के उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना और योजना मन के फायदा आखिरी मनखे तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री आज कोरबा जिला के लेमरू गांव घलो पहुंची नौ प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही उनके नवा बने आवास के उद्घाटन करीन। ये दौरान उमनहा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हितग्राही मनला अंशदान के राशि के चेक घलो दिन। राज्य सरकार ग्रामीण महिला मंडला ऊर्जा के क्षेत्र में सशक्त बनाए बर बछर 2026 ले 2031 तक के अवधि बर द्वीप्ति योजना ला मंजूरी दे दे हैं। ये योजना के तहत गांव मन में सोलर दीदी तैयार करे जाही जौन मंडला सौर ऊर्जा के प्रणाली के स्थापना, संचालन और रख रखाव के प्रशिक्षण दे जाही। ये माइलोगिन मनहा सोलर मिल, कोल्ड स्टोरेज और सिंचाई जैसन ऊर्जा सुविधा के संचालन करही। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मैं आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचा थन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़ो बाचे समाचार कोती। प्रदेश के जनजातीय गांव तक सरकारी योजना के फायदा पहुंचाए बर अवैया 18 ले 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाए जाही। ये अभियान प्रदेश के 8,000 ले ज्यादा गांव मन में चलही। आदिम जाति विकास विभाग के ये अभियान में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान ले जुड़े गांव मनला शामिल करेगी है। रायपुर जिला ला छोड़ के प्रदेश के सबो जिला में स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा, पोषण और पेयजल योजना के फायदा पात्र लोगन तक पहुंचाए जाही। अधिकारी मन गांव गांव जाके जन सुनवाई करही और आदि सेवा केंद्र में मामला के निपटारा होही। ये दौरान सिकल सेल और टीबी जांच बर स्वास्थ्य शिविर घलो लगाए जाही। IPS अधिकारी अरुण देव गौतम ला छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। गृह विभाग के प्रमुख सचिव निहारिका सिन्हा ये

0: बंद मा आदेश जारी कर दिन हे। राज्य सरकार ह करीब 1.5 साल पहली ओमन ला प्रभारी डीजीपी के जिम्मेदारी दे रहीन। आईपीएस अरुण देव गौतम ला संयुक्त राष्ट्र पदक के अलावा सराहनीय सेवा बर भारतीय पुलिस पदक और विशिष्ट सेवा बर राष्ट्रपति पुलिस पदक ले सम्मानित करे जा चुके हैं। ओमन हा छत्तीसगढ़ कैडर के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हावे। राज्य शासन दहारले स्पष्ट करे गए है कि प्रदेश में ईंधन के पर्याप्त स्टॉक हवे और पेट्रोल डीजल के वितरण में सरकार दहारले सरलग निगरानी राखे जावत थे। यही बीच रायपुर कलेक्टर हा पेट्रोल के ब्लैक मार्केटिंग ला रोके बर एक ठन हेल्पलाइन नंबर जारी करे हैं। उन्हें शक्ति जिला में कलेक्टर हा पेट्रोल डीजल के बिक्री के बारे में सख्त आदेश जारी करे हैं। अब पेट्रोल और डीजल के बिक्री सिर्फ संबंधित वाहन में ही करे जाही। कलेक्टर के आदेश ला नहीं माने मा पेट्रोल पंप संचालक मन ऊपर कार्रवाई करे के चेतावनी देगी हवे। रायपुर में सफाई व्यवस्था देखैया कंपनी के कर्मचारी मन के आंदोलन आज तीसर दिन घलो जारी रहिस। हड़ताली कर्मचारी मन हा आज दलदल सिवनी में उग्र प्रदर्शन करिन। ये दौरान पुलिस के जवान और हड़ताली कर्मचारी मन के बीच झूमा झटकी घलो होइस। कंपनी के आरोप है कि नगर निगम डहारले करीब 78 करोड़ रुपया के भुगतान नहीं करे गए है। ये हड़ताल में कचरा गाड़ी चलैया चालक मन घलो शामिल हैं, जौन मन हा वेतन बढ़ाए के और सही बेरा में भुगतान करे के मांग ला लेके प्रदर्शन करत हैं। ये कर्मचारी मन के हड़ताल में जाए शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के व्यवस्था में घलो बाधा पड़े है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर डहारले प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी के प्रसारण काली संझा 6:05 ले 6:10 तक करे जाहि। ये कार्यक्रम ला छत्तीसगढ़ के आकाशवाणी के सबो केंद्र रिले करही। ए वखत के अंक मा खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला के संबंध मा जानकारी दे जाही। अब पेश है मौसम के हाल। प्रदेश में तेज गर्मी के संगे संग आंधी और हल्का वर्षा के दौर शुरू हो गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अवैया कुछ एक दिन तक प्रदेश में धूप और छांव की स्थिति रही। अवैया 24 घंटा के दौरान एक दो जगह में हल्का वर्षा होए के या गरज चमक के संग छींटा पड़े के संभावना है। उन्हें कुछ एक जगह में अंधर चले के और आकाशीय बिजली गिरे के आसार है। यह बीच मानसून आज अंडमान सागर निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पूर्वी बंगाल के खाड़ी में प्रवेश कर चुके हैं। एकर 26 मई तक केरल पहुंचे के उम्मीद है। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। वित्त विभाग हा शासकीय खर्चा में मितव्ययिता और वित्तीय अनुशासन निश्चित करे के उद्देश्य ले निर्देश जारी करे है। केंद्रीय गृह मंत्री काली ले 3 दिन के दौरा में छत्तीसगढ़ आवत हैं। ये दौरान उमनहा मध्य क्षेत्रीय परिषद के 26वां बैठका के अध्यक्षता करही और प्रदेश के जनजातीय गांव मन मा अवैया 18 ले 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाही। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन इन्हें सिरावत है। जय जोहार।
1: अभी छत्तीसगढ़ी में समाचार रायपुर से रिले किए जा रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं ईमेल करेंगे सुने कार्यक्रम का शेष भाग। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म चित्चोर से यसुदास का गाया ये गीत। गीत के बोल और संगीत रविन्द्र जैन के हैं और इस गीत के लिए हमारे पास सुनने की फरमाइश की है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया नमन अपार ढिंगिया ने। लूथरा खमरिया से हैं नकुल श्याम मोहम्मद अकरम मोहम्मद अजीज। तिवर्ता डबरी पारा कोरवा से हैं महेंद्र प्रताप मरकाम जया जागेंद्र गजेंद्र जयंती ममता मनीषा मंजू मानसी सुरेंद्र मोहन सिंह सहोदरी बाई मनमोहन सिंह गिरजाबाई मरकाम चंद्रपाल मरावी। और लक्ष्मी थदवानी बघेरा दुर्ग से हैं संतोष नामदेव सार्थक समर्थ नामदेव और शौर्य नामदेव। बुड़गहन से हैं राम दुलारी प्रजापति रामशरण चंद्रेश कुमार और चंद्रकला शशिकांता प्रजापति। पुतकी कला कवर्धा से हैं राधेश्याम पांडे वीणा विनय शंकर पांडे। महाराष्ट्र से हैं नासिर शेख नाजिया नासिर साजिद शाहिद। नानघाट कातल बोर्ड से हैं भाग सिंह राजपूत भाग्यश्री टिकेश्वर रितु राजपूत। डोंगरगांव से हैं राष्ट्रपाल गजभिये राधिका अनिष्का और तन्मय गजभिये। कुरा

दिल्ली से हैं अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत, सोनम वर्मा। बक्सर बिहार से हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरित रमेश साहू। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म चिच्चोर से यशुदास का गाया ये गीत।

श्रोता सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने और आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। सदमा फिल्म से सुरेश वाडकर का गाया ये गीत है, गीत के बोल गुलजार के हैं और इस गीत के लिए हमारे पास फरमाइश आई है कैदी मुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह उषा ऋषभ सिंह की। इस गीत को सुनना चाहा है और हमारे श्रोताओं ने पूना जंक्शन मस्तानापुर से हैं अनंता भगत, अरुणा सुलोचना भगत और चेतन भगत, सादुल शहर राजस्थान से हैं रामकुमार रिवाड़ चंद्रकला रिवाड़, दिल्ली शहर से हैं आसमा परवीन आमना परवीन और वली भाई अंसारी, संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव ज्योति और ओजस्वी यादव, बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी निगहत परवीन शाहनवाज सरफराज फरदीन सुहान अरजान अब्बासी और अब्बान अब्बासी, गिरिडीह झारखंड से हैं मोहम्मद यासीन अनजान साइमा नवाज नवाज हसन नवाज अहद मिकफरा नवाज और चाहत, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास अनीता पुष्पा अंजू योगिता श्रीवास रज्जन साहू हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, देवरी भाटापारा से हैं के आर साहू आकाश कमलेश गन्नूलाल रजक और मुरली छत्री, सावतपुर से हैं ऋषि सेन रितेश कंचन माही सेन। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म सदमा से सुरेश वाडकर का गाया ये गीत।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म मुकद्दर का सिकंदर। फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में गाया ये गीत। गीत के बोल अनजान के हैं और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। और इस गीत को सुनना चाहा है जमशेदपुर से हरजेंद्र सिंह भाटिया, एंजल सोनू पप्पी भाटिया। मुंबई से हैं अदीबा नाज, फातिमा नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी। जालंधर से हैं संदीप जटोलिया। तेलंगाना भोंगर से हैं मोहम्मद बुरहानुद्दीन। देवलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे। वैशाली शैलेश गवाणकर, टुक टुक प्रिंस एकांश, सुमित गवाणकर, ध्वनि गवाणकर हैं बहादुरा नागपुर से। जालंधर से हैं मीना कौर और मन्नत नूर। यवतमाल से हैं पंजाब रामटेके, यशोधरा श्रव्या रामटेके। भाटापारा से हैं बचका मल, मोतीलाल यादव, सियाराम चौवा राम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, भुवन कुमारी। अवेठी पारा भाटापारा से हैं अनीता साहू, वीणा नेहा मोनिशा साहू। खंडवा से हैं अब्दुल गफ्फार डावर, खुशनसीब अब्दुल हक, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे। गांव जाखोद से हैं शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश दीपक और पूजा खटक। आप सभी ने सुनना चाहा है मुकद्दर का सिकंदर फिल्म से ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म गुप्त से उदित नारायण और सुमिता चौहान साथियों का की आवाज़ में ये गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत वीजू शाह का। इस गीत के लिए फरमाइश आई है लगान पंडरिया से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल। जमानिया गाजीपुर यूपी से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल। गांव हीरा वाली फजिका पंजाब से हैं सुभाष गोदारा, विमला इंदु, पार्वती हिमांशु गोदारा। जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित गर्वी, हिमाक्ष

रामगढ़ कैंट से हैं महेंद्र मोदी, डबवाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया नारंग, बुल्ढाणा वर्षिंगी महाराष्ट्र से हैं अमोल मानकर, शोभाताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार, जनकपुरी सहारनपुर से हैं जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल विलिस डिकेस्ट्रो, बठेना से हैं परमेश्वर साहू, राजबत्ती टोप सिंह, काजल पूर्वी, हेजल और राजेश रेशमा साहू, नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं वेद मिट्टा, अलका मिट्टा, बोरसड़ा नैला से हैं प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

0: श्रोताओं, ईमेल करेगी सुनी कार्यक्रम का शेष भाग हम लेकर आएंगे प्रादेशिक समाचारों के बाद शाम के 7 बजे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र शाम के 6:45 होने वाले हिंदी में प्रादेशिक समाचार कुछ ही देर।
1: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
2: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
3: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
2: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
3: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
2: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
3: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
1: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
4: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की

0: नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
1: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
2: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
1: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
0: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
1: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
0: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
1: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
3: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। राज्य शासन ने सरकारी खर्चों में कटौती के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा पर लगा प्रतिबंध। मंत्रियों के काफिलों की गाड़ियों में की जाएगी कमी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से 3 दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। जगदलपुर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के साथ ही अनेक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रदेश के जनजाति गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा। और राजधानी रायपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सफाई व्यवस्था हुई प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। वित्त विभाग ने शासकीय खर्चों में मितव्ययता और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार सभी विभागों, संभागीय आयुक्तों, कलेक्टरों तथा विभाग अध्यक्षों को सरकारी संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। वित्त विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव द्वारा जारी इन निर्देशों को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। ये निर्देश आगामी 30 सितम्बर तक प्रभावी रहेंगे। निर्देशों के अनुसार मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, निगम, मंडल और आयोगों के पदाधिकारी के काफिले में केवल जरूरी वाहनों का ही उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा सभी सरकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही वाहन पूलिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर राज्य शासन के खर्च पर शासकीय सेवकों की विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक होने पर मुख्यमंत्री की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। भौतिक बैठकों के स्थान पर वर्चुअल और ऑनलाइन बैठकों को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं शासकीय भवनों में ऊर्जा की बर्बादी रोकने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से 19 मई तक छत्तीसगढ़ के 3 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे 19 मई को बस्तर में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सहित मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बैठक की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री श्री साय ने कल मंत्रालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे को लेकर उप मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि डायल 112 आपातकालीन सेवा का विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत केंद्रीय मंत्री श्री शाह 18 मई को रायपुर में 400 नए वाहनों का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री राज्य को एक नई फोरेंसिक लैब और जांच के लिए 33 सर्व सुविधा युक्त वाहनों की सौगात भी देंगे।
5: 112 की सुविधा थी वो अब तक 16 जिलों में लागू थी और इसको पूरे प्रदेश में लागू किया जा रहा था। वो पूरे प्रदेश में 18 की सुबह प्रारंभ हो जाएगा। 400 गाड़ियां पूरे प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर पहुंचेंगी। हमारे ही पुलिस लाइन से इसको माननीय अमित शाह जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्रारंभ कर दिया जाएगा।
4: श्री शर्मा ने बताया कि बस्तर का नेतानार सुरक्षा केंद्र पहला ऐसा सुरक्षा शिविर होगा जिसे जन सुविधा केंद्र के रूप में बदला जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने बस्तर प्रवास के दौरान इस केंद्र का उद्घाटन करेंगे।
5: हमारे जो सुरक्षा के कैंप हैं, उन कैंपों को अब सुविधा के केंद्रों में बदल दिया जाए। नेतानार वो पहला स्थान है जहां केंद्रीय गृह मंत्री जी स्वयं उपस्थित होकर के सुरक्षा के कैंप को सुविधा के केंद्र में बदलने जा रहे हैं। हमारे सुरक्षा के कैंप जितने हैं वो सारे सुरक्षा के कैंप आने वाले समय में पंचायत के भवन, स्कूल के भवन, आंगनबाड़ी के भवन, चिकित्सालय हो सकते हैं।
4: उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री शाह के बस्तर प्रवास को लेकर आज जगदलपुर में कार्यक्रम स्थल पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों

0: को आवश्यक निर्देश दिए। राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। ईंधन की वितरण व्यवस्था पर प्रशासन लगातार निगरानी रख रहा है। इस बीच रायपुर कलेक्टर ने पेट्रोल की ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। वहीं सक्ती जिले में कलेक्टर ने डिब्बा और बोतलों में पेट्रोल डीजल की बिक्री पर रोक लगा दी है। सुशासन तिहार के तहत आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जांजगीर चांपा जिले के कोसला गांव पहुंचे और चौपाल लगाई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कोसला गांव के महतारी सदन और हायर सेकेंडरी स्कूल भवन निर्माण की घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है।
1: सुशासन तिहार का उद्देश्य यही है कि पूरी सरकार लोगों के बीच में जा रही है। हमारे सभी मंत्रीगण, हमारे सांसदगण, हमारे विधायकगण, हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों के बीच में जा रहे हैं और क्लस्टर बनाकर इस तरह से समाधान शिविर का भी आयोजन हो रहा है और उसमें जनता की जो समस्याएं हैं उसको आवेदन पत्र के रूप में ले रहे हैं और जो भी तत्काल में समाधान हो सकता है तत्काल समाधान कर रहे हैं। बाकी को एक महीना के अंदर में समाधान करेंगे और इससे बहुत लाभ भी हो रहा है।
0: मुख्यमंत्री आज कोरबा जिले के लेमरू गांव भी पहुंचे और प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही के नवनिर्मित आवास का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हितग्राहियों को अंशदान की राशि का चेक भी प्रदान किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश के जनजातीय गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए आगामी 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान प्रदेश के 8000 से अधिक गांवों में संचालित होगा। आदिम जाति विकास विभाग के इस अभियान के तहत प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान और धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान से जुड़े गांवों को शामिल किया गया है। रायपुर जिले को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों में स्वास्थ्य शिक्षा सामाजिक सुरक्षा पोषण और पेयजल योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाया जाएगा। अधिकारी गांवों में जन सुनवाई करेंगे और आदि सेवा केंद्रों में शिकायतों का निराकरण होगा। इस दौरान सिकल सेल और टीबी जांच के लिए स्वास्थ्य शिविर भी लगाए जाएंगे। राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को ऊर्जा क्षेत्र में सशक्त बनाने के लिए वर्ष 2026 से 2031 तक की अवधि के लिए द्वीप्ति योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत गांवों में सोलर दीदी तैयार की जाएंगी जिन्हें सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये महिलाएं सोलर मिल कोल्ड स्टोरेज और सिंचाई जैसी ऊर्जा सुविधाओं का संचालन करेंगी। योजना में क्लस्टर लेवल फेडरेशन को महिला ऊर्जा सहकारी समितियों के रूप में विकसित किया जाएगा। महासमुंद और बस्तर के कुछ समूह पहले ही विक्रेता के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम बताया है। रायपुर में सफाई व्यवस्था संभाल रही कंपनी के कर्मचारियों का आंदोलन आज तीसरे दिन भी जारी रहा। हड़ताली कर्मचारियों ने आज दलदल सीवनी में उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस के जवानों और हड़ताली कर्मचारियों के बीच झूमाझटकी भी हुई। कंपनी का आरोप है कि नगर निगम द्वारा करीब 78 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। इस हड़ताल में कचरा गाड़ी चलाने वाले चालक भी शामिल हैं जो वेतन बढ़ाने और समय पर भुगतान करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इन कर्मचारियों के हड़ताल पर चले जाने से शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था बाधित हुई है। बलरामपुर रामानुजगंज जिले की विशेष अदालत ने वाड्रफ नगर के विकासखंड शिक्षा अधिकारी को रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा उन पर 10,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। ये फैसला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सुनाया गया है। आरोपी को एंटी करप्शन ब्यूरो की अंबिकापुर शाखा ने 12,000 रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का प्रसारण कल शाम 6:05 से 6:10 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। इस बार के अंक में खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिले की गतिविधियों के बारे में जानकारी दी जाएगी। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान एक दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने के आसार हैं। इस बीच मानसून आज अंडमान सागर निकोबार द्वीप समूह और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर चुका है। इसके 26 मई तक केरल पहुंचने की उम्मीद है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। राज्यपाल रमन डेका ने कबीरधाम प्रवास के दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में आम का पौधा रोपित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने नागरिकों से अधिक से अधिक पौधरोपण करने और

पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की। आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम को छत्तीसगढ़ का पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। गृह विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने करीब 1.5 साल पहले उन्हें प्रभारी डीजीपी की जिम्मेदारी दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने जांजगीर चांपा जिले के बमनीडीह नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए रमेश कुमार डटसेना और सूरजपुर जिले की शिवनंदनपुर नगर पंचायत के लिए रितेश जायसवाल को अपना उम्मीदवार घोषित किया है और राजनांदगांव जिले के माड़ीतराई गांव में प्रशासन ने छापामार कार्रवाई कर करीब 2,300 बोरी खाद जब्त किया है। अधिकारियों ने खाद गोदाम को सील कर दिया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य शासन ने सरकारी खर्चों में कटौती के लिए दिशा निर्देश जारी किए। सरकारी अधिकारियों की विदेश यात्रा पर लगा प्रतिबंध। मंत्रियों के काफिलों की गाड़ियों में की जाएगी कमी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से 3 दिन के छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। जगदलपुर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के साथ ही अनेक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रदेश के जनजाति गांवों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए 18 से 25 मई तक जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले अभियान चलाया जाएगा और राजधानी रायपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से सफाई व्यवस्था हुई प्रभावित। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

अभी प्रादेशिक समाचार रायपुर से रिले किए जा रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बजे हैं, हम एक बार फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम ईमेल करेगी सुने का शेष भाग लेकर। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत जिसे हमने लिया है मैं हूं ना फिल्म से। इस गीत को आवाजें दी हैं अभिजीत और श्रेया घोषाल ने और संगीत लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत है अनु मलिक का। इस गीत को सुनना चाहा है राजकोट से जुली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी। गुमला झारखंड से हैं नजमुल होदा, एस एम जावेद, शगुफ्ता अंजू। तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना। तखतपुर से हैं मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा। पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा। लोरमी चचेड़ी से हैं कमल कांत मरावी, प्रमिला, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ मरावी। सोंगा जिला धमतरी से हैं कोमल सेन, तोषण सेन, विनायक सेन। कुम्हार गली कोलगांव से हैं पांडु चंदन, उषा, प्रतीक्षा, प्रथमेश चंदन, पांडुरंग कुमार। रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति, रितेश, राजेश्वरी, उत्कर्ष चौहान। आदर्श नगर मालोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरभ, शाइना शर्मा, मैडी शर्मा। नाभा जिला पटियाला पंजाब से हैं सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर और मनु। जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और नियमित आहूजा। धनौरी तेलीवाला से हैं निसार सलमानी, नौशाद सलमानी और आलिया आयान। करनाल से हैं सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा और माया कुमार। निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से हैं जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। गंडई पंडरिया से हैं पवन कुमार सेन, प्रभा देवी सेन, लक्की विक्की नानू और रविंद्र रौनक सेन। रसेड़ा से हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डिकेश, वासु, डाली, पूर्वेश साहू। इंदौर मध्य प्रदेश से हैं नारायण खर्चे, ललिता, गणेश, कार्तिक, परी खर्चे, स्वाति और प्रयाग चौधरी। बागबहरा भदरसी से हैं पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा कौशल। फजिलका पंजाब से हैं भूषण खेरा, विशाल, विशु, लाडी, सालिनी, ट्वेंसी वानी और आरबी खेरा। पांडर कौड़ा से हैं अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री बुरांडे। धोकला उदयपुर सरगुजा से हैं जीवन धन सिंह पैकरा, गुरनी, करिश्मा, सुमार साय, कलेश्वर सिंह।

सुखराम हीरामणि और ऐश्वर्या पैकरा। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म मैं हूं ना, फिल्म से अभिजीत और श्रेया घोषाल के युगल स्वरों में ये गीत।

आइए श्रोताओं आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं काला पत्थर से, फिल्म लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी महेंद्र कपूर के युगल स्वरों में ये गीत। गीत के बोल साहिर के हैं और धुन बनाई है राजेश रोशन ने। इस गीत को सुनना चाहा है भाटापारा से प्रेम लाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत राघवेंद्र साहू ने। दिल्ली से हैं लाल बाबू दीवाना, उमर राज और दिव्या भारती। छत्तीसगढ़ से हैं प्रभा जाटव, डॉली, कबीर जाटव और देवशंकर जमादार। भूत कछार लोरमी से हैं दुर्गेश मरकाम, निर्मला, दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम। राजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं उदय भान पाल, जय सिंह, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश पाल और दिव्यांश बघेल। अकोला से हैं सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद, गौरव मंदूरकर, आरव और अर्पिता। पैठण से हैं सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, सिया जाधव। पौड़ी भाटा अकलतरा से हैं दिलीप चंदन, चोवाराम यदू, निखिल चंदन, वसुंधरा और प्रांजल चंदन। जालंधर से हैं संदीप माकर, ज्योति मन्नत, भरत माकर और कमाल साहनी। मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश राजपाल, पंकज काजल, सीमा मानवी, तन्वी लक्ष्य, सोनी मोहनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं फिल्म काला पत्थर से ये गीत।

और कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनते हैं फिल्म कालिया से किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत के बोल मजरू के हैं और धुन बनाई है आर डी बर्मन ने। इस गीत के लिए फरमाइशें आई हैं हमारे पास सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु नारंग, सोनाली नारंग के। बाराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। पुरानी भिलाई 3 चरौदा से हैं नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून जिशान अहमद सिद्दीकी, शहनवाज अहमद सिद्दीकी। दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा, सीटी दीवाना। जनकपुरी से हैं पिंटू दीवाना, राजेंद्र सिंह ओबराय। झज्जर हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया। जमशेदपुर से हैं पूर्व सिंह, अनुपम, राकेश कुमार। नागर कोहरा राजनांदगांव से हैं बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और आराध्या साहू। महाराष्ट्र से हैं रूपेश संगई, महेश संगई, प्रज्ञेश संगई, प्रीतेश संगई। भागलपुर से हैं कमल किशोर साहू, अश्विनी, अमरदीप, पशुपति साहू, टीकू, मुस्कान। दतरेंगी से हैं भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा। कतियापारा जूना बिलासपुर से हैं सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रियांश, कान्हा, आदित्य देवांगन। मदनपुर से हैं श्रवण कुमार साहू, योगेश साहू, राहुल साहू। जलगांव जंक्शन से हैं दिनेश काले, वंदना, आदेश कुमार काले, वसुधा, वज्रसेन। ग्वालियर से हैं सुरेश खुराना, किरण लव्या, आरव खुराना, एस के पप्पी। सहारनपुर से हैं आशु मोची। कस्बा गुनौर से हैं नसीमुल इस्लाम गुनौरी, फरहीन अब्बासी और दानिश गुनौरी। रायपुर से हैं विनोद वडलकर, वीणा वडलकर और विविधा वडलकर। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं कालिया फिल्म से ये गीत।

इस गीत के साथ ही ईमेल करें, गीत सुने कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा कार्यक्रम के सुनैया जम्मो संगवारी मल्ला मंगू भैया के राम राम जय जोहार। संगवारी हो, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना पीएम किसान भारत सरकार की एक प्रमुख किसान कल्याण योजना है। एकर अंतर्गत पात्र किसान मल्ला हर बछर 6,000 के आर्थिक सहायता दे जाते, जौन हर 2,000 के 3 किस्त मा सीधा बैंक खाता मा डीबीटी के माध्यम ले भेजे जाते। योजना के मुख्य उद्देश्य की अगर बात करबो ता छोटे और सीमांत किसान के आय मा ये सहायता होते। किसान मन ला हर बछर 6,000 दे के उनखर आर्थिक स्थिति ला मजबूत करनाई, खेती की लागत मा मदद, बीजा खातू कीटनाशक सिंचाई जैसन कृषि कार्य के खर्चा मा सहयोग देना, किसान मन ला साहूकार के निर्भरता ले बचाना, समय मा सहायता मिले ले किसान कर्जा ले लेके मजबूरी ला कम कर सकत हमें, कृषि उत्पादन ला बढ़ाना देना यह बहुत जरूरी है। एकर उद्देश्य आर्थिक सहयोग

पहले ले किसान बढ़िया खेती तकनीक और साधन के उपयोग करते और कर सकत घला हवे। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी ला बढ़ावा देना, सहायता राशि सीधा किसान मन के बैंक खाता में भेजे के पारदर्शिता सुनिश्चित करते, यह एकर मुख्य उद्देश्य। किसान भाई हो, संगवारी हो, एकर पर ई केवाईसी कराना बड़ जरूरी होते। सरकार हर ई केवाईसी और कतको राज्य मन में तो फार्मर आईडी ला जरूरी बताते। ई केवाईसी अधूरा होए मा शिकायत जो आते कि किस्त नहीं मिला था वह, तो एकर कारण प्रमुख कारण यह हो सका थे कि ई केवाईसी अधूरा हुई। अभी मार्च में देखो तो 2026 के 22वां जो किस्त है जारी हो करे गई, जेमा 9.32 करोड़ किसान मल्ला लाभ मिले हवे। ये प्रकार ले समय समय में जोन भी किस्त मिलते और ये किसान सम्मान निधि के लाभ हमारे किसान भाई मन मिलते, ये बड़ा लाभकारी है। आगू गोट बात तो करबेज करबो, आवा होना ये संदेशाला सुन ले जाए।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करे। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: हमन गोट बात करत रहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की। ये योजना बड़ लाभकारी है किसान भाई मन बर। जउन एक समय रही समय जब किसान भाई मन पपरा बीजा खातिर कहूँ जुताई फंदाई खातिर तो कहूँ रोपाई खातिर खातू माटी जुताई फंदाई सब बूता मा पैसा के आवश्यकता पड़ते। जेमें किसान ला शुरूच ले कहे जाए तो हाथ फैलाए के बात आ जात रही समय और कोनो न कोनो साहूकार सो वो फंस जात रही समय पैसा लेके बपुरा अपन खेत के खेती ला करत हवे और बाद में का होते कि वो परेशानी धीरे धीरे करके कटाई ढोराई मिजाई सब के खर्चा लगे में फिर दोबारा तिबारा वही पैसा के मांग। किसान मजबूरी में दो चार पैसा फिर मांग मांग के ऐसे करके अपन खेती करत रही सब है। वो समय रही जब किसान ला लगे कि खेती करे मा आखिर में जौन भी उत्पादन हो थे ओला बेच के फिर वही कर्जा के अदायगी करे जाए फिर कुछ कर्जा बच गए तो फिर अगू साल भर ऐसे करके किसान साहूकार के चुंगल में फंस जात रही सब है। अब वो बात कम से कम कुछ तो सहायता ए प्रकाले देखे जाए तो किस्त के आधार में अगर मिलत हवे किसान ला तो बड़ सम्मान के बात है और ओकर जोन कर्जा नहीं होते कहे जाए। खेती किसानी में समय समय में बीजा खातू माटी सब बर मिल जात हवे ये बड़ा सहायता राशि है। तो ये किसान भाई हो गुड बात हम करें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के। अब अगर बात करबो हम मौसम की तो भाई मौसम का देखो तो ये समय तो बड़ा जरूरी है किसान भाई मन ला मौसम ला जानना। अब मौसम जानना किसान मन बर तो अतका जरूरी है कि खेती किसानी बर बड़ जरूरी है। किसान आज के समय में कहे जाए तो मौसम एक घला किसान मन बर बहुत उपयोगी साधन बन गया हवे। सही मौसम के जानकारी मिले ले किसान खेती के कतको महत्वपूर्ण निर्णय ला

समय मा ले सकत हवे। किसान मन बर मौसम ऐप के महत्व, बुआई के सही समय पता कर सकत हवे मा, बारिश के अनुमान और जो उन्हें तापमान है जो एकर जानकारी, किसान भाई मन समय मा बोनी कर सकत हवे, सिंचाई प्रबंधन कर सकत हवे, मौसम पूर्वा अनुमान देख के आवश्यकता अनुसार सिंचाई करे जा सकत हवे, जेखर ले

घला ये कर माध्यम ले मिलते, पहले ले मिल जाते तो किसान का होते सावधान हो जाते, अब फसल ला बचाए के उपाय हमार किसान भाई मन कर सकत हमें। ऐसा नहीं कीट और रोग के नियंत्रण पर नमी और तापमान के जानकारी ले रोग और कीट प्रकोप के अनुमान लगा के समय में अगर दवाई के छिड़काव करे जाए तो कटाई और भंडारण में घला ये उपयोगी है। कटाई ले पहली मौसम के जानकारी मिले ले अनाज भिजे नहीं, अनाज खराब नहीं हुए, ओकर से बचाया जा सकत हवे। ए प्रकार ले कहे जाए तो किसान मन पर उपयोगी है मौसम ऐप। ये जोन मौसम ऐप है ये कतका उपयोगी है इला आप जानते छो, एकर कतको प्रकार से आप उपयोग कर सकते हो। जैसे कि भाई मेघदूत है, कृषि मौसम आधारित सलाह ये मदद है, किसान सुविधा और मौसम मंडी भाव कृषि के जानकारी उपलब्ध कराते, मौसम जो उन्हें भारतीय मौसम विभाग के द्वारा आधिकारिक यह ऐप है मौसम ऐप है। ये जो हमारे सामान्य तौर पे मौसम पूर्वानुमान के जो उपयोगी हवे एकर बर हमारे किसान भाई मन एकर उपयोग करके ऐप के किसान भाई मन अपन खेती किसानी बढ़िया ढंग से कर सकत हवे। और किसान भाई मन ला अगर कहूँ ये मौसम ऐप ले जानकारी मिल जाते तो समय में कब बोनी करना है, कब कटाई करना है, कब दवाई डालना है, कब सिंचाई करना है, ये सब बात के अनुमान किसान भाई मन कर सकत हवे अगर मौसम के जानकारी हो जात हवे तो ये तो हो से आज के हमारे ग्राम सभा कार्यक्रम जाए के बिरा होत हवे हमारे मायारू कार्यक्रम किसानवाड़ी में। तो आवा चली किसानवाड़ी कार्यक्रम ला सुन ले जाए।

किसानवाड़ी कार्यक्रम में जम्मो संगवारी मन के स्वागत हवे। महंगू भैया के राम राम, जय जोहार। किसान भाई हो, पुष्प विकास कार्यक्रम चलत हवे और ये पुष्प विकास कार्यक्रम के उद्देश्य हवे किसान मन ला पारंपरिक खेती के साथे साथ फूल के व्यवसायिक खेती बर प्रोत्साहित करना है। एखर ले उनकर आय हर बढ़ सकत हवे और रोजगार के नवा अवसर घला मिल सकत हवे। सामान्यतः ले देखे जाए तो फ्लोरिकल्चर विकास कार्यक्रम इला घला ये कहे जा सकत हवे। पुष्प विकास कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य कर बात करबो तो फूल के उन्नत खेती ला बढ़ावा देना है, किसान मन के आय में वृद्धि करना, निर्यात जो उन्हें योग्य फूल के उत्पादन ला बढ़ावा देना है, ग्रामीण युवा है, माई लोगन है, ए मल्ला बढ़िया ढंग से रोजगार देना, उद्यानिकी क्षेत्र के विकास ला करना, प्रमुख लाभ अनुदान और सहायता के अगर बात करबो तो सरकार द्वारा पौध सामग्री, पोली हाउस, ड्रिप सिंचाई, सेड नेट बर अनुदान घला दे जाते। कम भूया मा ज्यादा लाभ जैसे गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा, जरबेरा जैसन फूल मा कम क्षेत्र मा घला अच्छा आमदनी प्राप्त हो सकत हवे। रोजगार के अवसर फूल उत्पादन, सजावट है, माला निर्माण है और बिक्री ले रोजगार बढ़ते। ये प्रकार ले देखे जाए तो पुष्प विकास कार्यक्रम बड़ अच्छा चलत हवे, चलाए जात हवे कहे जाए तो। एकर लाभ हमर किसान भाई मल्ला लेना चाहिए। आज सुगर असन हम भेंट वार्ता लाए हैं, नवा नवा ढंग ले खेती किसानी के बात आते तो केरा की खेती तो बहुत पहली ले होते छवे, फिर टिशू कल्चर केला के उन्नत खेती किस ढंग ले करे जा सकत हवे ए विषय में जानकारी देवत हमें श्रीमती वंदना एक्का, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी, कार्यालय उपसंचालक, उद्यान सरकंडा बिलासपुर के मन।

0: अब इनकर मन सो गुड़ बात करत हमें हमार कजरी बहनी मन, तो आवा सुनन ये भेंट वार्ता ला।
1: माटी के खुशबू ले महके गांव, अब मेहनत ले सस्ते किसान के ठाव, नवा तकनीक अपनावा संगवारी, खेती बनही खुशहाली के सवारी। जम्मो किसान संगवारी मन और हमर रेडियो श्रोता मीत मितान मन के आज के कार्यक्रम में स्वागत है। झोंकाओ अपन कजरी दीदी के मैं प्रीत भरे राम राम संगवारी हो। आज के दिन है शनिवार और आज के भेंट वार्ता के क्रम में हम अपन आकाशवाणी के स्टूडियो में पहुना बुलाए हैं ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी कार्यालय उप संचालक उद्यान सरकंडा बिलासपुर से श्रीमती वंदना एक्का जी मल्ला। दीदी आपके स्वागत है आकाशवाणी बिलासपुर के स्टूडियो में। राम राम जय जोहार।
2: जी राम राम कजरी दीदी जय जोहार।
1: संगी हो आज हम बात करबो एक ऐसन आधुनिक तकनीक के बारे में जेकर उपयोग ले किसान भाई मन कम समय में बढ़िया उत्पादन और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे विषय हवे टिश्यू कल्चर से केले की उन्नत खेती। ये महत्वपूर्ण विषय में जानकारी देबर आज विषय विशेषज्ञ श्रीमती वंदना एका जी हमारे बीच में हवे। दीदी शुरू करी ना आज के कार्यक्रम।
2: हाँ जी कजरी दीदी।
1: तो दीदी पहली तो हमारे श्रोता संगी मल्ला ये बतावा जिसे की बात करत हन टिश्यू कल्चर से केले की उन्नत खेती, तो ये टिश्यू कल्चर होते?
2: देखिए हमारे जो किसान भाई बहन हैं जो केले की खेती करते हैं वो पहले जो है पारंपरिक खेती करते आ रहे हैं। देखिए टिश्यू कल्चर जो है वो एक तरीके की जिसको कि हम बोलते हैं उत्तक संवर्धन तकनीक, जो कि प्रयोगशाला में उच्च गुणवत्ता वाले केले के पौधे तैयार किए जाते हैं जो कि रोग मुक्त होते हैं, एक समान वृद्धि होती है और अधिक पैदावार देने वाले होते हैं। इस विधि की एक खास बात यह है कि इसमें जो भी स्वस्थ पौधे की जो उत्तक है उसका हम उपयोग करके उसको एक नियंत्रित वातावरण में एक साथ लाखों पौधे उगा सकते हैं। तो ये जो है पारंपरिक खेती की तुलना में 13 से 14 महीनों में ये जो है तैयार हो जाती है।
1: अच्छा कितना अच्छा देख लेवा संगी हुआ। और दीदी एक बात आओ जानबो कि सामान्य पौधा की तुलना में टिश्यू कल्चर के पौधा का फायदा?
2: देखिए अगर हमारे किसान भाई बहन केले की पारंपरिक खेती करते हैं तो उसमें कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, जैसे रोग मुक्त या एक समान अंकुरों की अनुपलब्धता, अत्यधिक सिंचाई के कारण कभी कभी क्या होता है रोपण के दौरान पौधों की उच्च मृत्यु दर हो जाती है, लंबा विकास काल होता है और कम उपज होते हैं। इन सबसे जो किसान हैं हमारे आधुनिक कृषि पद्धतियों के बारे में उनको जागरूकता कम होती है।
1: अच्छा।
2: तो अगर मान लो हमारे किसान भाई या बहन जो हैं टिश्यू कल्चर रोपाई कर रहे हैं तो पहली बात तो उन्हें कीट व रोग मुक्त विकसित पौधे मिलेंगे, उन पौधों में एक समान बढ़वार होगी, अधिक पैदावार देंगे, कम समय में फसल की परिपक्वता जो बोलते हैं फसल अवधि जो है वो कम होती है, फसल की कटाई में आसानी होती है और प्रति पौधा जो है वो 30 से 35 किलोग्राम अधिक उपज देता है।
1: अच्छा मतलब अधिक उत्पादन होते के द्वारा टिश्यू कल्चर से। दीदी जैसे कि आज के विषय है केला के उन्नत खेती, तो सामान्य केला के खेती और टिश्यू कल्चर से केला के खेती ये अलग अलग कैसे माने जाते?
2: देखिए आप टिश्यू कल्चर पौधे जो रहते हैं वो प्रयोगशाला से डायरेक्ट जो है उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं। एक तो पहली बात टिश्यू कल्चर के जो पौधे होंगे वो रोग मुक्त होंगे, दूसरा उनमें एक समान बढ़त होगी, जो सामान्य केला है वो प्रति पौधा जो है 30 से 35 किलोग्राम जो है उपज देता है, जबकि जो टिश्यू कल्चर पौधा होता है वो 40 से 50 किलोग्राम या कभी कभी एक टन, मतलब ये समझिए एक एकड़ में वो 40 से 50 टन भी देता है।
1: अच्छा।
2: जो सामान्य केला है हमारा उसमें एक बंच का जो वजन होता है वो 15 से 25 केजी का होगा। अच्छा। परंतु अगर किसान हमारे किसान भाई बहन अगर टिश्यू कल्चर केला उपयोग में ला रहे हैं तो उसके एक बंच का जो वजन होगा वो कम से कम 30 से 35 किलोग्राम होगा और उसमें फसल परिपक्वता भी कम, मतलब जल्दी होती है, एक समान गुणवत्ता होती है, तो हमारे किसान बहन इससे जो है उच्च गुणवत्ता प्राप्त कर सकते हैं, अधिक मुनाफा भी होता है, इससे
1: ज्यादा फायदा है कई दवा। अच्छा दी मैडम एक और बात बता, केला की जैसे खेती करा था तो कौन कौन उन्नत किस्म लगाई जो टिश्यू कल्चर पर उपयोग?
2: देखिए केले की टिश्यू कल्चर का उपयोग करते हैं जैसे कि ड्वार्फ कैनवेस, रोबास्टा, लाल केला, करथली, G9 जो परंतु जो बहुत से कृषकों द्वारा व्यवसायिक पर्पस के लिए उपयोग कर रहे हैं वो G9 यूज कर रहे हैं जिसको कि ग्रैंड नैने भी बोलते हैं। इस

0: का बहुतायत रूप से खेती किया जा रहा है, क्योंकि इसमें सीधे और बड़े आकार के फल होते हैं और फल में आकर्षण होता है। एक समान पीला रंग होता है, इसका बंच साइज भी बड़ा होता है और इसमें जो एक बंच में 30 से 50 किलोग्राम जो है वो एक बंच होता है। और इसमें जो बनाना की लीफ भी होती है, जो उसकी पत्ती होती है, वो भी काफी बड़ी होती है।
1: अच्छा, तो एक किस्म सबसे उपयुक्त है कई दवा। देखा संगी हुआ, चेत करके सुनिया भाई। अच्छा दीदी, केला के बढ़िया उन्नत खेती करना है यदि, तो एक बार कैसनहा भुइयां और कैसनहा जलवायु उपयुक्त माने जाते हैं?
0: देखिए, केला जो है वो एक मूलतः उष्णकटिबंधीय फसल है। अगर उसमें माने तो 13 डिग्री से 38 डिग्री तापमान जो रेंज है और 75 से 85% की जो सापेक्षिक आर्द्रता है वो अच्छी मानी जाती है। और एक केले की सामान्य वृद्धि के लिए अब 18 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड का एक अनुकूल तापमान होना चाहिए। हम केले की बात करें तो केले के लिए जो है खेती के लिए गहरी चिकनी बलुई मिट्टी, जिसका पीएच जो है वो 6 से 7.5 हो, उसके बीच जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, ये सबसे उपयुक्त मानी जाती है।
1: और खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए?
0: देखिए, केले की खेती का जो समय होता है वो 15 जून से 15 जुलाई सबसे उपयुक्त माना जाता है।
1: अच्छा, गर्मी के दिन मतलब।
0: और ये फसल जो है वो सितंबर में तैयार हो जाती है। हाँ। मतलब इस तरीके से जो केले की फसल की जो अवधि बोलते हैं हम, वो 13 से 14 महीनों की होती है।
1: अच्छा,
0: वही हम बात करें अगर पारंपरिक खेतों में तो इसकी जो फसल अवधि होती है वो 15 से 16 महीनों की होती है। तो अगर मान लो टिश्यू कल्चर के पौधे लगा रहे हैं तो ये पारंपरिक केले की तुलना में अधिक सशक्त, तेजी से विकास करने वाले, जल्दी फल लगने वाले और अधिक उपज देने वाले होते हैं।
1: अच्छा, देखा संगी हुआ, खेत की तैयारी कैसे करना चाहिए?
0: देखिए, जो केले की खेती का उपयुक्त समय होता है वो 15 जून से 15 जुलाई सबसे उपयुक्त माना जाता है। ये फसल जो है सितंबर में तैयार हो जाती है। मतलब इस तरीके से जो केले की फसल की अवधि होती है वो 13 से 14 महीने की होती है। मतलब पारंपरिक पौधों की फसल अवधि जो होती है वो 15 से 16 महीनों की होती है।
1: हाँ।
0: तो ये 3-4 महीने जो है वो जल्दी पक जाती है।
1: अच्छा।
0: देखिए, भूमि तैयारी के लिए सबसे पहले हमारे किसान भाई बहनों को ये ध्यान रखना चाहिए कि केला रोपने से पहले लोबिया जैसी जो हरी खाद है उसकी फसल उगाएं और उसे जमीन में गाड़ दें।
1: अच्छा।
0: जमीन में रोटावेटर या हैरो का उपयोग करके 2-4 बार जोत कर आवश्यकता अनुसार उसको समतल कर ले। सामान्यतः जो है 45-45 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे की आवश्यकता होती है। एक गड्ढे में 10 किलोग्राम गोबर खाद, 250 ग्राम नीम खली व 20 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन मिट्टी में मिलाकर उसको भर लेते हैं।
1: अच्छा।
0: फिर पौधों की रोपाई कर दी जाती है। इसमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि पौधों से पौधों की दूरी जो है वो 1.5 मीटर या 6 फीट के करीब का
1: होना चाहिए।
0: हाँ, हाँ। और पौधे चयन करते समय हमेशा ये ध्यान रखें हमारे किसान कि वो जिस भी प्रयोगशाला से पौधे, टिश्यू कल्चर के पौधे उठा रहे हैं, वो कम से कम 30 से 45 दिन पुराने होने चाहिए और कम से कम जो है 5 उसमें पत्ती, स्वस्थ पत्ती जो है वो होनी चाहिए,
1: निकले रहना चाहिए।
0: हाँ, हाँ। और पौधों को जैसे ही प्रयोगशाला से लेके आए उन्हें तुरंत नहीं लगाना चाहिए, 3-4 दिन छाए में रख देना चाहिए।
1: अच्छा।
0: छाव में रखने के बाद, ताकि उसमें हार्डनिंग हम लोग बोलते हैं उसको, सख्त हो जाए, वो थोड़ा सा कड़ा हो जाए, उसके बाद ही खेत में रोपण करना चाहिए।
1: मतलब मजबूती पहले माटी में होकर जड़ थोड़ा बहुत फैल जाए तो कले फिर खेत में लगावा। देखा संगी हुआ, इतना सार गर्भित तो इतना मस्त जानकारी आप मतलब मिला था वह केला के खेती के। दीदी, आगे बात करबो भुइयां के बाद सिंचाई की, तो ड्रिप सिंचाई से केला के खेती में का महत्व है?
0: देखिए, हमारे किसान भाई बहन जो केले की खेती लगा रहे हैं और जो नहीं लगाए हैं, उनको ये पता है कि केले के अधिकतम उत्पादन के लिए पानी की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। तो ड्रिप सिंचाई से के माध्यम से जब हम केले की खेती करते हैं तो उसमें 56% जो जल की बचत है और उसकी पैदावार में जो है 23 से 32% की वृद्धि हो जाती है। हमेशा सिंचाई करते समय, जैसे सर्दियों के टाइम में, सर्दियों में 12 से 15 दिन व गर्मियों में 4 से 5 दिन के अंतराल में पानी जो है वो देते रहना चाहिए।
1: आगे बात करबो टिश्यू कल्चर जो खेती करथन केला के, ओमा प्रमुख रोग का हो रखते, का कीट व्याधि लगते जेकर से नुकसान होते पौधा?
0: देखिए, टिश्यू कल्चर केले में जो है हानिकारक कीट हैं, जैसे कि फल की भुंडी, मतलब इसमें इसके रोग के रोकथाम के लिए तने की जो चारों तरफ की जो मिट्टी है उसमें कार्बोरिल डाल देना चाहिए, 10 से 20 ग्राम प्रति पौधे के हिसाब से। और दूसरा जो है राइजोम की भुंडी, जिसको कि घुन भी बोलते हैं, वो भी केले के फसल में आती है। अच्छा। तो उसमें जो भी सूखे पत्ते हैं उनको निकाल देना चाहिए, और राइजोम को रोपाई से पहले जो है फंजीसाइड से या इंसेक्टिसाइड से इसको धो लेना चाहिए।

0: चाहिए। और एक आता है केले का चेपा जिसको कि एफिड भी बोलते हैं, तो उसके लिए डाइमेथोएट 30 EC 2 ml पर लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए खेत में।
1: और हमन के ये कहना है दीदी कि कोई भी कीट रोग व्याधि आवा थे आपके कोई भी खेती में, तो जो भी दवाई डाला हुआ वो चेत करके ध्यान से और अपन विशेषज्ञ मन से सलाह लेके जानकारी लेके
0: जी बिल्कुल,
1: ताकि नुकसान कम हुआ है आप मल्ला है ना भाई। तो ध्यान दे के सुनो के कैसे दवाई डालना है रोग और कीट नियंत्रण पर।
0: देखिए इसमें जो मुख्य रूप से रोग आते हैं वो आता है पनामा विल्ट, ये एक तरीके का फफूंद नाशक है जैसे कि जो मिट्टी से फैलता है, क्योंकि जो टिश्यू कल्चर पौधे हमारे किसान भाई बहन लेके आते हैं प्रयोगशाला से वो तो स्वस्थ रहता है, गुणवत्ता युक्त रहता है, परंतु मिट्टी में जो फफूंद है उसके कारण ये जो बीमारी है उसमें फैलती है। तो इसके लिए जो भी प्रभावित पौधे हैं तो उनको उखाड़ के फेंक देना चाहिए, खेत से दूर जाके नष्ट करना चाहिए।
1: अच्छा।
0: और उसके बाद उस गड्ढे में चूना जो है 1 से 2 किलोग्राम चूना जो है उस गड्ढे में डालना चाहिए। उसके बाद अगर मान लो इस चीज को ध्यान रखने के लिए कि विल्ट ना आए, क्योंकि विल्ट जो है वो एक प्रमुख रोग है इसमें।
1: अच्छा।
0: तो रोपाई के पहले जो जड़ें हैं उनको कार्बेंडाजिम जैसे कि 2 ग्राम प्रति लीटर के पानी से डुबाना चाहिए, और रोपाई के 6 महीने के बाद कार्बेंडाजिम का छिड़काव भी कर देना चाहिए।
1: मतलब
0: माटी में ही कर लेना चाहिए। एक जो बीमारी आती है वो है एंथ्रेक्नोस बोलते हैं उसको। तो वो क्या करती है, जो भी हमारे फल जो है पक जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं फल, वो काले पड़ के सड़ने लगते हैं। तो उससे बचने के लिए जो है वो हमारे किसान भाई बहन कॉपर ऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं 2.5 ग्राम, या बोरेक्स मिक्सचर जो आता है उसका 10 ग्राम उपयोग कर सकते हैं। कार्बेंडा जिम जो है वो 1 ग्राम मतलब पर लीटर पानी में मिलाकर इन सबको जो है स्प्रे करना चाहिए। तीनों में से कोई सा भी पद्धति जो है किसान भाई बहन अपना सकते हैं।
1: तो से आप मन के वो रोग लगे के संभावना बहुत कम हो जाएगी। दीदी और आगे के सवाल हमारा हवा है कि सामान्य रूप से ये विधि ले जो केला लगाते हैं वो फसल तैयार हो में,
0: रोपाई के जो बाद ये फसल है वो 11 से 12 महीनों में तुड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। जैसे हमारे जो लोकल मार्केट है उसमें जैसे तुड़ाई कर रहे हैं तो वो पकने की अवस्था तक हमको इंतजार करना चाहिए। और मान लो निर्यात के लिए एक जगह से हमको दूसरी जगह भेजना है तो उसके लिए जब हमारे जो केले हैं 75 से 80% जो पक जाएं, थोड़े कच्चे टाइप के रहें, उस अवस्था में 1 दिन पहले तुड़ाई करके उसको जो है उसकी तुड़ाई करनी चाहिए।
1: वही पूछते रहे प्रश्न कि फसल की कटाई कब करना चाहिए, जैसे सामान्य विधि से जो केला लगाता और टिश्यू कल्चर विधि से जो खेती करता है ओकर उत्पादन में कितना अंतर आते
0: है। देखिए किसान भाई अगर एक सामान्य विधि से केला लगाता है, देसी केला लगाता है, तो उससे औसतन जो है 25 से 30 किलोग्राम पर पौधा उत्पादन होता है।
1: अच्छा,
0: मतलब आसानी से उत्पादन लिया जा सकता है। पर अगर हमारा किसान भाई बहन टिश्यू कल्चर केला लगा रहा है तो उसमें 40 से 50 किलोग्राम
1: मतलब।
0: डबल उत्पादन जो है उनको मिल रहा है। जैसे 1 एकड़ में हमारे जो है 1200-1400 पौधे आते हैं, तो उसके हिसाब से 30 से 40 टन प्रति एकड़ जो है किसान उत्पादन मिलता और फायदा होता है उपज में।
1: देखा भाई, डबल फायदा कमाना है तो टिश्यू कल्चर से केला की खेती करना है। आगे सवाल ये है दीदी कि जलवायु परिवर्तन मतलब कभी भी मौसम तो बदलते रहते, देखा था गर्मी के दिन में भी कभी भी ओला पड़त है या पानी गिरत है, तो यदि जलवायु परिवर्तन हो थे तो एकर से केला के खेती में क्या प्रभाव पड़ी।
0: देखिए जलवायु परिवर्तन जो होता है केले का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है जलवायु परिवर्तन से। जैसे कि मान लो अचानक बारिश हो गई, अचानक आंधी तूफान आया, बरसात हो गई, ज्यादा बारिश हो गई, जैसे कि केले की फसल में जल निकास जो है वो अच्छे से होना चाहिए। अगर मान लो जल का भराव होगा तो उससे केले के जो फसल है रूट जो है उनकी जो जड़ें हैं वो सड़ती हैं। और उसी प्रकार से केले में बहुत सारी गतिविधियां होती है, जैसे कि हम पत्ती को काटते हैं ताकि उसके जो फल हैं वो अच्छे से ग्रोथ कर जाएं, उग जाएं। हम जमीन को बीच बीच में मिट्टी को खोदते रहते हैं, जैसे जमीन खोदने का जो कार्य है वो रोपाई के 3 से 4 महीनों के बाद हम करते हैं ताकि जो आसपास की मिट्टी है उसको हम 10 से 12 इंच जो है मिट्टी के स्तर को बढ़ा सके
1: और केला के पौधा पर सुरक्षा तैयार करते
0: हैं। तो ये सब अगर मान लो जलवायु परिवर्तन होता है तो केले के पौधे गिर जाते हैं, उनसे किसानों भाई बहनों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाते हैं।
1: तो सुरक्षा भर या उकस भर सावधानी भर ये चीज विधि अपनाते के द्वा। आगे सवाल हमले क्या है, उद्यान विभाग में खेती से जुड़े कुछ योजना है का, और यदि हवा है तो किस तरह से हमारे कृषक भाई मन वो योजना से लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
0: देखिए हमारे उद्यान

0: विभाग में शासन की एक राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना चलती है। अच्छा। उसके अंतर्गत फल क्षेत्र विस्तार केले के तहत जो है जिसमें हमारे किसान भाइयों का न्यूनतम रकबा मतलब 0.25 हेक्टेयर और अधिकतम रकबा 2 हेक्टेयर तक हो सकता है, मतलब 5 एकड़ तक हो सकता है, जिसमें हम उनको लाभान्वित कर सकते हैं। इसमें जो टोटल इकाई लागत है वो 1,75,000 की है, जिसमें 40% हम किसान को अनुदाय दे की पात्रता है, उनको प्रावधान है।
1: अच्छा।
0: और ये भी जिसमें 1,75,000 मतलब 70,000 की अनुदान की पात्रता है, 1 हेक्टेयर के पीछे मतलब 2.5 एकड़ के पीछे किसान को 70,000 की पात्रता है, वो भी 2 किस्तों में दिया जाएगा। पहला किस्त जो है 42,000 रुपए के रूप में पौधों में, और दूसरा जो है रख रखाव के लिए 28,000 के रूप में दिया जाता है। अगर हमारे कोई किसान भाई बहन केले की खेती करने हेतु इच्छुक है या लेना चाहते हैं, तो हमारे जो भी मैदानी स्तर पर कार्यरत ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी हैं या हमारे बिलासपुर जिले के अंतर्गत 4 नर्सरियां हैं, मस्तूरी, कोटा, तखतपुर और बिल्हा, तो चारों नर्सरियों में जो उद्यान अधीक्षक हैं उनके माध्यम से जो है आप संपर्क कर सकते हैं और इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
1: देखा भाई, लाभ ले रहे हैं, काबर के सरकार हर हमर किसान भाई मन के उन्नति और प्रगति पर हर विभाग से कुछ न कुछ योजना चलाते। अब योजना के जानकारी हम रेडियो के माध्यम से आप मन तक देथन, परंतु एकर लाभ कैसे लेना है ये तो आपे मन के ऊपर है। तो जैसे दीदी बतात है कि ऐसे ऐसे योजना है एकर आप लाभ ले सका था, तो निश्चित रूप से आप लाभ लेवाओ। दीदी आखिरी माह यही पूछबो कि जैविक तरीका से टिश्यू कल्चर केला के खेती कर सकथन का और करथन तो कितना सफल हो?
0: देखिए, अगर मान लो जैविक तरीके से हमारे किसान भाई बहन टिश्यू कल्चर केले की खेती करना चाहते हैं, तो वो रासायनिक उर्वरकों के बजाय जो है गोबर की खाद, कंपोस्ट या जैव कवकनाशियों जैसे कि ट्राइकोडर्मा, इसका उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता या पौधों का स्वास्थ्य जो है वो सुनिश्चित कर सकते हैं। जैविक तरीके से टिश्यू कल्चर खेती करने के लिए बहुत सी बातों को ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि एक तो पौधे का चयन। हमारे किसान भाई बहन जो है अगर जैविक तरीके से केले की खेती करेंगे तो प्रमाणित लैब से ही स्वस्थ व उन्नत किस्म जैसे कि G9 के पौधे ही खरीदें। मिट्टी तैयार करने के लिए अच्छे तरीके से जुताई कर लें और प्रति एकड़ 20 से 30 टन वर्मी खाद या सड़ी हुई गोबर की खाद मिलाएं, और जैसे रोपण के पहले जो पौधे की जड़ों हैं उनको ट्राइकोडर्मा या सुडोमोनास से उपचारित कर लें ताकि जो भी मिट्टी में होने वाला रोग है उससे बचा जा सके। और जैविक खेतों में जीवामृत कवकनाशी के रूप में या इंसेक्टिसाइड के रूप में जीवामृत का उपयोग करना फायदेमंद रहता है।
1: जैविक विधि से भी केला की खेती कर सका था और बढ़िया लाभ ले सका था कई दवा। मैडम अब आखिरी माह किसान भाई मन पर आप संदेश के रूप में क्या कहना चाहते?
0: देखिए किसान भाई बहन को मैं यही बोलना चाहूंगी, कोई भी खेती है जो हम पारंपरिक खेती करते हैं और हम किसी आधुनिक खेती करते हैं, दोनों खेती में थोड़ा अंतर रहता है, पर पारंपरिक खेती करने में कई तरीके की समस्याएं आती। आप उसी खेत में उसी जगह पे अगर पारंपरिक खेती को छोड़ के टिश्यू कल्चर केले से खेती कर रहे हैं तो उसमें आपको 2 से 3 गुना लाभ हो रहा है। फसल की जो अवधि होती है, जो समय होता है, वो 13 से 14 महीनों का बस होता है, जबकि पारंपरिक विधि में ये जो है 15 से 16 महीनों की हो जाती। खेती में बम्फर उत्पादन लेने की एक ये बेहतर तकनीक है और आपको इससे लाभ भी जो है वो अधिक मात्रा में होगा। तो इन सभी फायदों को लेते हुए जो टिश्यू कल्चर केले की खेती है वो व्यवसायिक पर्पस से जो है बहुत ही अच्छी और लाभदायक है।
1: ता किसान संगी हुआ, आज के कार्यक्रम में हम जाने टिश्यू कल्चर ले केला के खेती से कैसे अधिक उत्पादन और बेहतर आमदनी पाए जा सके थे। हमर संग जुड़ के बहुमूल्य जानकारी देवर ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी कार्यालय उप संचालक उद्यान सरकंडा बिलासपुर से श्रीमती वंदना एक्का जिला बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करत हन आज के जानकारी आप मन पर बहुत उपयोगी साबित होही और आप मन आधुनिक खेती अपना के अपन खेती ला समृद्ध बनाओ। दीदी आप अपन बहुमूल्य समय निकाल के आज हमारे स्टूडियो में आया और हमारे किसान भाई मन ला इतना अच्छा जानकारी दिया, ओकर पर बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद कजरी दीदी।
1: राम राम जय जोहार।
0: जी राम राम जय जोहार।
1: संगी हुआ, जाय के पहली यू शुभकामना देबो कि धरती माता के सेवा कर, मेहनत ले सपना साकार कर, नवा सोच नवा तकनीक अपना के खेती ला खुशहाल कर। देवाज के कार्यक्रम ले विदा, कजरी दीदी के राम राम जय जोहार।
2: अभी सुनिन भेंट वार्ता, विषय रही सब है टिश्यू कल्चर केला के उन्नत खेती। विशेषज्ञ रहीन श्रीमती वंदना एक्का ग्रामीण उद्यान

0: विस्तार अधिकारी कार्यालय उप संचालक उद्यान सरकंडा बिलासपुर और इनकर सो गोट बात करते रहने हैं हमार कजरी बहिनी मन। तो अब सुन ले जाए प्रोमो एफसीटी ला।
1: अरे सुन तो
2: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनो मेरी सौतन को।
1: किसको?
2: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं।
1: अच्छा ये बात है?
2: हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या?
1: अब तो झट से बात हो जाती है।
2: ऐसा क्या?
1: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है, और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
2: अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
1: हाँ
2: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
3: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
4: इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
5: पुतला बोल रहे?
4: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
5: मतलब?
4: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
5: पर हम तो सभी डाले हैं।
4: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
5: सच है?
4: रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
5: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
6: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
1: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
2: ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, उन्हीं रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के ले जाते हैं।
3: किसान के सम्मान में आवा सुन लेते हैं ये सुगर संगीत, जिला गावत हमें जनक राम साहू और राम प्यारी मन। तो लियो सुनो ये गीत।

तहियन धन के उपजैया भैया भूया के भगवान ये सुघर सन गीत लगावत रहिन जनक राम साहू और राम प्यारी मन ई संग महंगू भैया लदा विदा किसान वाड़ी कार्यक्रम सुनिया जम्मू संगवारी मल्ला महंगू भैया के राम राम जय जोहार।

अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाई बहनों का कार्यक्रम किसान वाणी। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। पेश है कार्यक्रम सुगम संगीत का। आज हम आपको सुनवाएंगे शंकर महादेवन के गाए कुछ गीत। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं समीर का लिखा और शंकर एहसान लॉय का संगीतबद्ध किया ये गीत।

और आइए आइए आप सुनते हैं हबीबा का लिखा, शंकर एहसान लॉय का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत।

0: इस गीत के साथ ही आज का सुगम संगीत का कार्यक्रम समाप्त होता है। आज आपने शंकर महादेवन के गाए कुछ गीत सुने।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
3: देश की सुरीली धड़कन
4: विविध भारती,
2: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
3: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
2: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
3: वीर सैनिकों की जय माला
2: और हंसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
3: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
5: सखी सहेली,
3: बॉम्बे टॉकीज
6: और सेल्यूलॉइड के सितारे,
3: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
5: मुझे याद सब है जरा जरा,
2: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
3: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
2: मन का सुकून, दिल की आरती,
3: सुरीली संदली।
0: ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम रजनी गंधा।

रजनीगंधा कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को ऐश्वर्य का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, रजनीगंधा कार्यक्रम में हम उनकी बातें करते हैं जिन्होंने हमारे हिंदी सिनेमा को अपने खूबसूरत अभिनय से, दिल को छू लेने वाले गीतों से, मधुर संगीत से, रोमांटिक कहानियों से और श्रेष्ठ निर्देशन से हिंदी सिनेमा को समृद्ध बनाया। आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे एक ऐसे अभिनेता की जिन्होंने बहुत कम समय में अपने अभिनय से दर्शकों के दिल में खास जगह बनाई है और हिंदी सिनेमा में अपनी पहचान बनाई है। उस अभिनेता का नाम है श्रोताओं विक्की कौशल।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि विक्की कौशल ने राजीव गांधी प्रौद्योगिकी संस्थान से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद अनुराग कश्यप के सहायक के रूप में क्राइम ड्रामा गैंग्स ऑफ वासेपुर 2012 में काम करके अपने कैरियर की शुरुआत की और इस फिल्म में उन्होंने एक छोटी सी भूमिका निभाई थी।

श्रोताओं, 2015 में आई फिल्म मसान में उनकी पहली मुख्य भूमिका थी, जिसके बाद उन्होंने अनुराग कश्यप की मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म रमन राघव

2.0 में अभिनय किया। 2018 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में राजी और संजू में सहायक भूमिका से अपनी खास पहचान बनाई।

2021 में आई बायोपिक सरदार ऊधम में ऊधम सिंह के किरदार को निभाने के लिए उन्हें खूब सराहना मिली और इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला। श्रोताओं, 2023 में रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जरा हट के जरा बच के, बायोपिक सैम बहादुर और कॉमेडी ड्रामा फिल्म डंकी में उन्हें व्यावसायिक सफलता मिली। इनमें से आखिरी फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का एक और फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 2025 में आई ऐतिहासिक एक्शन फिल्म छावा, जिसने उन्होंने संभाजी का किरदार निभाया था, उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म साबित हुई। श्रोताओं, विक्की कौशल ने अपने अभिनय कैरियर के अलावा अवार्ड फंक्शनों में भी को होस्ट की भूमिका निभाई है।

श्रोताओं, 2019 में आई युद्ध फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में एक सेना अधिकारी के रूप में उनकी भूमिका में विक्की कौशल को एक प्रमुख अभिनेता के रूप में स्थापित किया और उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दिलाया।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि आज विक्की कौशल का हैप्पी वाला बर्थडे है। विक्की कौशल का जन्म आज के दिन यानी कि 16 मई 1988 को मुंबई में भारतीय फिल्मों के एक्शन डायरेक्टर श्याम कौशल और वीणा कौशल के घर हुआ था। उनका परिवार एक पंजाबी परिवार है। विक्की कौशल फिल्म अभिनेता के अलावा बहुत सी ऐसी संस्थाओं से जुड़े हैं जो सामाजिक कार्य करते हैं, जो पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं की सुरक्षा और बच्चों के लिए कार्य करते हैं। विक्की कौशल को आकाशवाणी परिवार उनके जन्मदिन पर उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रजनीगंधा। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही देर में समाचार संध्या और अंग्रेजी में समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। 5 देशों की अपनी यात्रा के अंतर्गत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये दशक आपदाओं का दशक बन गया है। उन्होंने कहा कि दुनिया पहले कोविड महामारी, फिर युद्ध और अब ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है।
2: पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं, अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई।

0: एएसएमएल उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया कि इस साझेदारी के तहत एएसएमएल गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी को आज नीदरलैंड्स में लिडेन विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने 11वीं शताब्दी की ऐतिहासिक चोल ताम्रपत्र भेंट किए। इन अमूल्य कलाकृतियों की वापसी दोनों देशों की सांस्कृतिक सहयोग और विरासत बहाली के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर है। ताम्रपत्रों के इस संग्रह में 21 बड़े और 3 छोटे ताम्रपत्र शामिल हैं। ये चोल राजा राजेंद्र चोल प्रथम की मोहर लगी एक कांस्य अंगूठी से बंधे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते तथा उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती आने की उम्मीद है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारत के राजदूत श्री अनुराग भूषण ने कहा कि यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और नवाचार के नए द्वार खुलेंगे।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र मामले के कथित मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को आज 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की प्रस्तुत दलीलों के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है। कार्रवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। सीबीएसई ने स्पष्ट किया कि कक्षा 10वीं में तीसरी भाषा R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी और R3 के लिए सारा मूल्यांकन पूरी तरह से विद्यालय आधारित और आंतरिक होगा। शिक्षा मंत्रालय ने देश में बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले विशेष रूप से 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों की बढ़ती संख्या पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। स्कूल शिक्षा और साक्षरता सचिव संजय कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान

0: द्वारा प्रस्तावित एक नई पहल की कार्यान्वयन रणनीति की समीक्षा की गई।
1: मंत्रालय में सचिव संजय कुमार ने स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ने वाले बच्चों की गंभीर समस्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार कक्षा एक में दाखिला लेने वाले हर 100 बच्चों में से केवल 62 बच्चे ही कक्षा 12 तक पहुंच पाते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि नवीनतम अनुमानों के अनुसार 14 से 18 आयु वर्ग के 2 करोड़ से अधिक बच्चे इस समय स्कूल नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक मजबूरियां, घरेलू जिम्मेदारियां और आजीविका से जुड़ी चुनौतियां उन मुख्य कारणों में से हैं जिनकी वजह से बच्चे स्कूली शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर देते हुए सचिव ने इस बात पर बल दिया कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा मिलनी चाहिए। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है।
2: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि न्यायालय की कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। श्री जायसवाल ने कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का भारत का निर्णय अभी भी लागू है। सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच सितंबर 1960 में हस्ताक्षर हुए थे। ये सिंधु नदी के जल बंटवारे और उपयोग को नियंत्रित करती है। भारत ने पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित कर दिया था। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
0: महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला नक्सल मुक्त हो गया है। नक्सल विरोधी अभियान अंतिम प्रहार के अंतर्गत 8 नक्सलियों की गिरफ्तारी और 5 अन्य के आत्मसमर्पण के बाद ये घोषणा की गई। पुलिस अधीक्षक एम नरेश ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 38 लाख रुपए का इनाम था। तेलंगाना में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR 15 जून से शुरू होगा। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी 25 जून से 24 जुलाई तक घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। आपत्तियां और दावे 30 अगस्त तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची 1 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्च में मितव्ययिता सुनिश्चित करने और वित्तीय अनुशासन बनाए रखने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इनका उद्देश्य राज्य के वित्तीय संसाधनों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना और सार्वजनिक व्यय में अधिक अनुशासन लाना है। इस बीच सरकार ने आज चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे पहले कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाया गया था। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम में से मढ़ी हुई चांदी को तत्काल प्रभाव से मुक्त आयात से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 19 मई से चीन की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात करेंगे। श्री पुतिन की यात्रा चीन रूस मैत्री संधि की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों तथा आर्थिक सहयोग पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन की इस यात्रा की घोषणा अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा समाप्त होने के 24 घंटे से भी कम समय में हुई है। मौसम विभाग ने कल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। और अब कुछ खेल खबरें।

गुजरात के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की संजना ने महिलाओं के 77 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। संजना ने स्नैच में 96 किलो, क्लीन एंड जर्क में 124 किलो और कुल 220 किलो का वजन उठाकर 3 कांस्य पदक अपने नाम किए। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता में गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक कोलकाता ने 17 ओवर में 2 विकेट पर 199 रन बना लिए हैं। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और नीदरलैंड्स मिलकर भविष्य की विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला तैयार करने पर काम कर रहे हैं। 21वीं सदी के भारत को अवसरों की भूमि बताया। भारत में सेमीकंडक्टर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और डच कंपनी ASML के बीच समझौते पर हस्ताक्षर। दिल्ली की अदालत ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले के मुख्य आरोपी PV कुलकर्णी और सह आरोपी मनीषा बागमारी को 10 दिन की CBI हिरासत में भेजा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 9वीं और 10वीं कक्षा के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य किया। भारत ने सिंधु जल संधि पर मध्यस्थता न्यायालय के फैसले को अवैध करार देते हुए खारिज किया। और भारत की संजना ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महिला वर्ग के 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: महबूब की मेहंदी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इसी के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो से की ममता सिंह के साथ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती आपका जीवन साथी।

दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। आज के फनकार कार्यक्रम में जिस शख्सियत की आज बातें हो रही हैं, उनकी कहानी शुरू होती है हिंदी सिनेमा के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर के साथ। वो एक्शन डायरेक्टर जिसने स्लमडॉग मिलियनियर, थ्री इडियट्स और बजरंगी भाईजान जैसी फिल्मों के स्टंट्स का डायरेक्शन किया।

कलाकार हैं इनके बेटे। हमने बात की जिस एक्शन डायरेक्टर की, उनका नाम है श्याम कौशल और आज के फनकार हैं इनके बेटे जाने माने अभिनेता विकी कौशल।

0: चल बेटा सेल्फी ले ले रे।
1: फिल्मी दुनिया में बड़े सम्मान के साथ नाम लिया जाता है इस एक्शन डायरेक्टर का, लेकिन ये नहीं है हमारे आज के फनकार। हमारे आज के फनकार

विकी कौशल मुंबई के एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए। वैसे तो इनका परिवार पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला था, लेकिन विकी कौशल मुंबई के मलाड उपनगर में पैदा हुए, वहीं पर पले बढ़े। और असल में उनके पिता ने 70 के दशक से आगे कड़ा संघर्ष किया और वो फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े एक्शन डायरेक्टर बन गए थे। जाहिर है घर में फिल्मों का माहौल था और इसीलिए विकी कौशल को फिल्मों का माहौल गुट्टी में मिला था।

विकी कौशल की माँ वीणा एक गृहिणी है और इसके अलावा परिवार में एक भाई भी है सनी कौशल, जो कि एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और माय फ्रेंड पिंटू और गुंडे जैसी फिल्मों में वो काम कर चुके हैं। बहरहाल बातें विकी कौशल की हो रही हैं, उनके बचपन की हो रही हैं। हमने आपको बताया कि विकी का जो परिवार है वो मलाड में रहता था और बचपन से ही फिल्मों का माहौल मिला क्योंकि पिता थे एक्शन डायरेक्टर। बचपन से ही विकी कौशल के शौक थे फिल्में देखना और क्रिकेट खेलना। मुंबई में उनकी स्कूली शिक्षा जब हो रही थी तो वो छोटी छोटी स्किट्स करते थे, ड्रामा में पार्टिसिपेट करते थे और इसके अलावा फैंसी ड्रेस और डांस कॉम्पिटिशन में भी हिस्सेदारी किया करते थे। पिता ये सोचते थे कि बेटा टेक्नोलॉजी की दुनिया में जाए, एक अच्छा इंजीनियर बने। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद विकी कौशल ने आगे दाखिला लिया एक इंजीनियरिंग कॉलेज में और इस तरह से अपने पिता की इच्छा के मुताबिक वो बन गए एक इंजीनियर। एक आईटी कंपनी में विकी कौशल काम कर रहे थे, जिंदगी अच्छी चल रही थी लेकिन मन में कहीं एक बेचैनी थी। बेचैनी का एक उबाल आया, उन्होंने ये महसूस किया कि ये वो काम नहीं है जो वो जिंदगी भर करना चाहते हैं, उन्हें तो फिल्मों में करियर बनाना है। थोड़े दिन उन्होंने अपनी नौकरी जारी रखी और इसके बाद अपने पिता से कहा कि वो फिल्मों के सेट पर जाना चाहते हैं। थोड़े दिन ये भी किया और आगे चलकर मुंबई में किशोर नमित कपूर की एक्टिंग एकेडमी में उन्होंने अपना एडमिशन करवा लिया ताकि अभिनय की बारीकियां सीख पाए। आगे चलकर विकी कौशल ने अनुभव हासिल करने के लिए नसीरुद्दीन शाह और मानव कॉल के थिएटर ग्रुप्स के साथ ड्रामा भी किया, रंगमंच पर भी सक्रिय रहे और फिर उनकी मुलाकात हुई अनुराग कश्यप से। गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्म बन रही थी और इस फिल्म की यूनिट में विकी कौशल बतौर सहायक निर्देशक शामिल हो गए।

साल 2012 चल रहा था। गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 में विकी कौशल ने न केवल सहायक निर्देशन किया बल्कि छोटी मोटी भूमिकाएं भी की। इसके बाद हुआ ये कि अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक नए निर्देशक नीरज गायवान को मौका दिया, जिसने बनाई फिल्म मसान। और इस फिल्म के जरिए विकी कौशल रुपहले पर्दे पर बतौर हीरो आए। एक ऑफबीट कला फिल्म में, बिल्कुल अलग तरह की फिल्म में, और उन्होंने अपनी जबरदस्त पहचान कायम की।

साल 2015 में मसान आई और साल 2016 में आई विकी कौशल की फिल्म रमन राघव। आज लोग इस फिल्म में उनके अभिनय की बहुत तारीफ करते हैं। साल 2015 में उन्होंने फिल्म बॉम्बे वेलवेट में भी एक छोटा सा किरदार निभाया था।

वैसे एक दिलचस्प बात आपको बता दें, साल 2012 में अनुराग कश्यप की फिल्म कंपनी ने एक फिल्म बनाई लव शव ते चिकन खुराना, इसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। 2016 में विकी कौशल की एक फिल्म आई जुबान।

2018 में विकी कौशल ने एक रोमांटिक फिल्म की जिसका नाम था लव पर स्क्वायर फुट। अब तक एक संवेदनशील अभिनेता के तौर पर विकी कौशल की अच्छी खासी पहचान बन चुकी थी। फिर यूं हुआ कि एक जाने माने लेखक हैं हरिंदर सिंह का, जिनका नॉवेल कॉलिंग सहमत पढ़ा मेघना गुलजार ने, जो अपनी नई फिल्म के लिए कहानी की तलाश कर रही थी। मेघना गुलजार ने कॉलिंग सहमत पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था राजी। राजी में विकी कौशल ने एक पाकिस्तानी सेना के अधिकारी का किरदार निभाया था और आलिया भट्ट ने सहमत का किरदार निभाया था। सहमत और इकबाल की शादी हो जाती है और उसके बाद घटनाक्रम कितना नाटकीय बन जाता है, इसी की कहानी थी राजी।

फिल्म संजू के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला था। ये पुरस्कार उन्होंने अभिनेता गजराज राव के साथ शेयर किया था, जिन्हें फिल्म बधाई हो के लिए सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता माना गया था। साल 2018 में विकी कौशल ने काम किया फिल्म मन मर्जियां में।

साल 2019 विकी कौशल की एक फिल्म आई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इस फिल्म में विकी कौशल ने विहान सिंह शेरगिल का किरदार निभाया था। फिल्म उरी न केवल कमर्शियल सक्सेस की तरफ बढ़ती चली गई बल्कि इसने विकी कौशल का झंडा भी बहुत ऊंचा बुलंद किया।

इसके बाद विकी कौशल सरदार ऊधम सिंह पर बनी फिल्म सरदार ऊधम में नजर आए। साल था 2021। इस फिल्म के लिए विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर क्रिटिक्स अवार्ड मिला था। साल 2022 में विकी कौशल की एक फिल्म आई गोविंदा नाम मेरा। इस फिल्म में उनकी सह कलाकार थी भूमिका पेडनेकर और कियारा अडवाणी। साल 2020 में विकी कौशल ने एक फिल्म में काम किया जिसका नाम था भूत पार्ट वन द हॉन्टेड शिप। साल 2021 में विकी कौशल ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ से ब्याह रचा लिया।

0: विक्की कौशल एक बहुत प्रभावशाली अभिनेता हैं। बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो उन्हें बहुत पसंद करते हैं और उन्हें विक्की कौशल की फिल्मों का इंतजार रहता है।
1: कांधे पे सूरज

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता विकी कौशल पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

प्रस्तुत है कार्यक्रम छाया गीत। श्रोताओं को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। गीतों की महफिल सजेगी, हम साथ साथ कुछ वक्त गुजारेंगे, मेरी बातों के संग महसूस करेंगे प्यार का एहसास। रेशमी चुनर से ढका तेरा चांद सा चेहरा, न जाने कब से तेरे दीदार की ख्वाहिश लिए बैठा हूँ। काश हवाओं का एक झोंका एक पल को चुनर हटा दे, तो जरा मेरे बेचैन दिल को करार आ जाए।

अंतराल के बाद छाया गीत का सफर आपके संग सभी का स्वागत है। तुम्हारा साथ गर जरा सा मिल जाता तो तमाम शामें हसीन हो जाती, न कटती रातें तन्हाइयों में, चांद को यूं निहारते हुए बातों ही बातों में गुजर जाता वक्त और रात का मदहोश आलम।

उनकी उल्फत में जरा सी शोकियां हैं, नादानियां हैं, कुछ शिकवे हैं, कुछ शिकायतें भी हैं, मगर जरा मेरे दिल की मजबूरियां देखिए, ये मोहब्बत भी उन्हीं से बार बार करता है।

0: लगा दो।
1: एक हसीन मुलाकात के लिए जरा पैगाम भेज दूं, उम्मीद है बहुत तेरे आने की। यूं मेरे खत को किताबों में न रख देना, जरा उसमें लिखे जज्बातों को दिल से महसूस कर लेना। यकीनन लबों पे मुस्कुराहट तैर जाएगी और मुझे भी दिल में जगह मिल जाएगी।

0: अपने दिल को समझाओ ना।
1: मचल उठा ये दिल ना।

0: समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने पर साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की अपनी यात्रा के तहत आज नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि इन चुनौतियों का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वैश्विक विकास प्रभावित हो सकता है और बड़ी आबादी गरीबी की ओर बढ़ सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की धरती बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से भी मुलाकात की। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और नीदरलैंड्स की सेमीकंडक्टर उपकरण निर्माता कंपनी ASML ने भारत में चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की है। इस समझौते की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीदरलैंड्स यात्रा के दौरान की गई। ASML उन्नत और छोटे आकार के सेमीकंडक्टर बनाने में इस्तेमाल होने वाले विशेष लिथोग्राफी उपकरणों के क्षेत्र में अग्रणी कंपनी मानी जाती है। संयुक्त बयान में कहा गया है कि इस साझेदारी के तहत ASML गुजरात के धोलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की आगामी 300 मिलीमीटर सेमीकंडक्टर फैब परियोजना की स्थापना और संचालन में सहयोग करेगी। बयान में कहा गया है कि यह सहयोग सेमीकंडक्टर जैसी महत्वपूर्ण तकनीकों के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड्स के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशों की अपनी यात्रा के तीसरे चरण में कल स्वीडन जाएंगे। स्वीडन के औद्योगिक केंद्र गोथेनबर्ग की यात्रा से भारत और स्वीडन के बीच द्विपक्षीय संबंधों, विशेष रूप से व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी जैसे उभरते और उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में और मजबूती मिलने की उम्मीद है। दिल्ली की अदालत ने आज नीट पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी पीवी कुलकर्णी और एक अन्य आरोपी मनीषा वाघमारे को 10 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय गुप्ता ने जांच एजेंसी की दलील सुनने के बाद कुलकर्णी और वाघमारे को सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने कहा कि जांच के लिए दोनों को राष्ट्रीय राजधानी से बाहर ले जाना आवश्यक है और इस बड़े षड्यंत्र की जांच करनी होगी। विशेष लोक अभियोजक नीतू गुप्ता सीबीआई की ओर से पेश हुई और दोनों आरोपियों से पूछताछ के लिए 14 दिनों की रिमांड की मांग की। कार्यवाही के दौरान सीबीआई ने कहा कि कुलकर्णी विषय विशेषज्ञ थे और 2026 के नीट स्नातक प्रश्न पत्र को तैयार करने में शामिल थे। सीबीआई ने कहा कि सह आरोपी धनंजय लोखंडे ने मनीषा वाघमारे से लीक सामग्री एकत्र की थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 1 जुलाई से कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने एक वक्तव्य में कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और राष्ट्रीय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रम 2023 के अनुरूप इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। भारत ने अवैध रूप से गठित मध्यस्थता न्यायालय COA के सिंधु जल संधि पर हालिया तथाकथित फैसले को खारिज कर दिया है। भारत इस न्यायालय के पहले के भी सभी निर्णयों को सख्ती से अस्वीकार कर चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि तथाकथित COA ने कल अधिकतम जल भंडारण क्षेत्र से संबंधित एक फैसला जारी किया था। उन्होंने कहा कि इसके द्वारा जारी कोई भी कार्यवाही या निर्णय अमान्य है। गुजरात के

0: Raising a target of 248 runs, Gujarat Titans were 177 for 1 in 16 overs against Kolkata Knight Riders in Kolkata when reports last came in. Put into bat first, Kolkata Knight Riders posted 245 for 2 in the stipulated 20 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: अभी समाचार दिल्ली से रिले किए जा रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारा आज का प्रसारण अब समाप्त होता है। कल प्रातः 5:51 पर हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दें। जय हिंद।